हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आज शनिवार है, शक समत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक

0: को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे स्टेशन अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में चौथे स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 5 मिनट हुए हैं, आइए सुनते हैं चिंतन।

जीवन है। हम देख रहे हैं कि कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिखमंगे। आज समूचे विश्व में दैहिक, दैविक, भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रांतियों के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। देखते देखते हाल ही में अनेक देशों के अति संपन्न शक्तिशाली महानायक अपने देश से निर्वासित हो गए हैं। अनेक ने अपने परिवार से लेकर अपनी जान तक गंवाई है। कारण यह है कि उन्होंने युग परिवर्तन की पुकार नहीं सुनी, जबकि परिवर्तन की लहर अटल सत्य है। ये तभी होगा जब हमारी जीवन शैली में युगानुरूप परिवर्तन और परिशीलन हो। यहां प्रश्न ये उठता है कि हम किसी व्यक्ति की जीवन शैली का मूल्यांकन क्या उसके खान पान, रहन सहन के आधार पर कर सकते हैं? पर यह तो एक महत्वपूर्ण लेकिन छोटा घटक है। व्यापक घटक है व्यक्ति की सोच, जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया। तात्पर्य यह है कि आप अपने प्रति क्या सोचते हैं, औरों के प्रति आपका नजरिया क्या है, समाज और प्रकृति को किस दृष्टि से देखते हैं। जीवन शैली के मुख्यतः तीन आधार हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार। यदि चिंतन में क्रांति बीज गहरे जम जाएं, तो स्वतः चरित्र और व्यवहार को बदल सकते हैं। आज के युग में इंसानियत का यह दुर्भाग्य ही है कि व्यक्ति जंगली पेड़ पौधों की तरह उगता है और बेतरतीब ज्यों त्यों बढ़ जाता है। इन्हें संवारने वाला कोई माली नहीं है। यही कारण है कि जीवन शैली के बेढंगेपन का अभिशाप दुनिया भोग रही है। अशांति, अवसाद, मानसिक रोग, बढ़ती आत्महत्याएं, शारीरिक रोग, पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन आदि मनुष्य की विकृत जीवन शैली के ही परिणाम हैं। लेकिन यह स्थिति अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की तरह यह स्थिति भी बदलेगी ही। हम जानते हैं कि पीड़ा का चरम ही क्रांति की जननी है। सारे विश्व में आज योग, लिव पॉजिटिव थॉट रिवॉल्यूशन जैसे कई आंदोलन शुरू हो गए हैं। बौद्ध साहित्य में स्वयं बुद्ध का जीवन इस सत्य का प्रमाण है कि चिंतन की उथल पुथल से जीवन शैली बदलती है। स्वयं बुद्ध ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल डाला। यहां तक कि खतरनाक दस्यु अंगुलीमाल भी उनका भिक्षु बन गया। एक अकेले व्यक्ति में घटित इंसानी क्रांति सारी मानव जाति के भाग्य को बदल सकती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यदि हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता आ जाए तो सुखद वातावरण अवश्य निर्मित होगा और व्यक्ति का जीवन पहले से अधिक सुखमय और बेहतर होगा।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे चिंतन सुबह 10 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे।

0: आप जरूर और साथियों के गए इस साथी जनाब संपन्न होता है।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: चर्चा वर्तमान है डॉक्टर जी आर राठिया।
2: राम राम कृषक भाईवन, आज आप लोग को मैं क्या बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व सुने होंगे आप लोग, लेकिन मुख्य पोषक तत्व के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी महत्व उसकी कमी के लक्षण कैसे पौधे में पहचानेंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसे क्या बोलते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है ये मुख्य आता है, इनको ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक है।

रिक सल्फेट है, ये सब रासायनिक रूप है, इनको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं बात आती है कि इसको हमको भूमि में कब अप्लाई करें, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि सल्फर है, जिंक है, कॉपर है, इसको हमको भूमि में अप्लाई करना प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा बोरान है, बोरान को हमको भूमि में या फिर जो पानी छिड़काव पत्ता में छिड़काव करना चाहिए। और आयरन है, मैंगनीज है, इसको हमको इसको भी पत्ता में छिड़काव करना प्रीफर करना चाहिए सोयल की अपेक्षा। और मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, इसको हमको बीज उपचार के रूप में उपयोग कर सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं ये पत्ती छिड़काव में। तो इस प्रकार से क्या बोलते हैं ये जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है इस प्रकार से हमको भूमि में या पत्ती छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेस्ट बना के भी हमको इसको उपयोग कर सकते हैं या फिर मिट्टी में क्या बोलते हैं लई बना के इसको उपयोग कर सकते हैं। इसको हमको पौधा की जब यंगर अवस्था है उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सा अप्लाई कम करना चाहिए। जब मेच्योर पौधा उसमें अप्लाई की मात्रा उसको कंसंट्रेशन ज़्यादा रख सकते हैं। अगर यंगर है पौधा, यंग है, तो उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन जाने तो उसको जलने की संभावना रहती है। तो ये सब बात को हमको पौधा की अवस्था के बारे में जानना है। लोहा के क्या बोलते हैं कमी के लक्षण छोटी अवस्था में प्रकट होती है। एक इसमें जो हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो इसका जो लक्षण है पत्ती की जो सीरा होती है, जो नस होती है, वहाँ पास हरापन गायब हो जाता है और अग्रभाग जो मृत्यु हो जाता है। जैसे टमाटर में अधिक दिखता है, या धान की फसल की बात करें तो नर्सरी अवस्था में आयरन की कमी के लक्षण ऊपरी की पत्ती में पीलापन पड़ने लगता है, ठीक है। पीलापन पड़ने के बाद सफेद होने प्रकट हो जाता है। तो इस समय हमको अगर उर्वरक को छिड़काव करते हैं तो उसको हमको कमी आयरन की जो कमी है, लोहा कमी, उसको दूर कर सकते हैं। इसके लिए फेरस सल्फेट 0.2 से 0.3% का उपयोग करना चाहिए, या फिर हमको क्या बोलते हैं 200 से 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है मैंगनीज है। मैंगनीज का कार्य है जो हमारा एंजाइम है, एंजाइम का क्या बोलते हैं सक्रियता को बढ़ाता है। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण है उसको भी बढ़ाता है और क्या बोलते हैं पौधों में चमक लाता है। इसके कमी के लक्षण पहचाने का तरीका है कि जो नई पत्ती है उसमें जो हल्का हरापन क्या बोलते हैं नोक का जो हरापन है वो गायब होता है और सीरा के बीच में क्या बोलते हैं पीला दिखाई देता है और बीच बीच में टिश्यू है जो ऊतक है मर जाता है और धान में फसल खास करके जो भूरापन दिखाई देता है। इस प्रकार से हम देखें तो जो सब्जी और ये फसल है, आलू है, टमाटर है, पालक है, पत्ता गोभी है, सेम है, इसमें जो ऊतक है उसका वो गलना प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा जिंक है, जिंक की बात करें तो धान में खैरा रोग होती है और पूरा कत्थाई कलर दिखाई देने लगता है। इसके लिए हमको रोपाई के समय 20 से 25 दिन बाद सामान्यता प्रकट होती है, उस समय हमको 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम चूना प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए।

थे वार्ताकार थे डॉक्टर जी आर राठिया। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर 35 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली के अनुसार प्रसारण हम करेंगे रात्रि 9:25 पर। विविध भारती कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा 12 बजे के आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम प्रसारित करेंगे। सुनिएगा 8:40 पर सुबह समय होगा देश कान के प्रसारण का। सुबह जब सुनेंगे कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड पर सुन लीजिएगा सुगम संगीत का और करेंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम

0: संगीत। महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार हम लेकर आएंगे संध्या 5:30 पर। आपस की बात का विषय होगा सहेली शहरी नारी। ये दिवस 21 जून के संदर्भ में इसके आप सुनेंगे चर्चा। अवसर को समझें गीत सुनेंगे आप आज की वनिता विहार में। किसान लेकर आएंगे संध्या 7:20 पर। आज की बात का विषय होगा फसल की पहली सीढ़ी है सही बीज का चुनाव अंकुर परीक्षण। रोगों से बचाने के लिए कराएं रहे थे हम आकर मेरे से बोल रहे हैं पर।
1: अरे गोपाल जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले खाने के लिए नहीं दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल लाइव टीवी ऑन डिमांड फिल्में आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम डिजिटल रेडियो गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: FM 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 40 मिनट हुए हैं आइए सुनते हैं रामचरितमानस का भाग 48। कलाकार हैं ए हरिहरण।

अभीष्ट बता रहे हैं। जब नाश होता है और अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर करके देव स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर है वो ऐसा नहीं कहा जा सकता, हेतु अनेक हो सकते हैं और सकते हैं जिनता शिव जय और जो हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्य मनुष्य योनि में पैदा हुए थे।

रामचरितमानस का भाग 48 अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे ई हरिहरन। सुबह के 6:50 हुए हैं। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है रामकिशन चंदेसरी और साथियों के स्वर में देशगान। रचना है जहां कदर झुकतेगी।

देशों में भी आप सुन रहे थे एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह 55 मिनट होने को है, कुछ समाचार होंगे।

आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवास भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अष्टषष्टितमे जन्मदिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकालपूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां सम्बोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यास उद्घाटनं च विधास्यति। प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य चतुः कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 कोटि रूप्यकाणि

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार

0: योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026 कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव है। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके बाद ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फ्रेश वॉलीबॉल।

इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम के सुर में, गीत आमिर का, अमन मलिक और प्रीतम का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से इसमें आप सुन रहे कार्यक्रम फ्रेश वॉलीवुड।

0: कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

यासिर देसाई के स्वर में अभी अपने फिल्म दो अजनबी का गीत सुना। गीत संगीत था दीपक गुप्ता का। आई की विद्या का वाला वीडियो फिल्म का गीत विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक के स्वर में। गीत है सोम का, संगीत सचिन जिगर का।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
5: रायगढ़ केंद्र से समाप्त सुने कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड।

अनिल देवान और राजा सिन्हा के स्वर में अभी अपने फिल्म बंदूक और गुलाब का गीत सुना। गीत लिखा था दिलीप बर्मन ने, संगीत था शशि कुमार एस का। इसके साथ ही कार्यक्रम फ्रेश बॉलीवुड अब संपन्न होता है। सुबह की 7:35 में है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

कार्यक्रम झरोखा सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आप मित्र सुशील का नमस्कार। एक प्राणी है और हम सबका वजूद हमारे सामाजिक ताने बाने के इर्द गिर्द ही है, नहीं रह सकते। बस कोई ऐसा व्यक्ति है जो जैसे किसी है और

है, उसे सहायता की जरूरत है। सही।

0: के सहयोग की आवश्यकता है।
1: Thank you.

ही है।

प्रश्न अपने आप से होना चाहिए कि जीवित है, ऐसी परिस्थितियों से हम होंगे, हम अंदर का इंसान जीवित है या मर चुका है, माता जीवित है और फर्ज निभाना होगा कि तू मानव हाथ बढ़ाना ही होगा। हम हाथ बढ़ाएंगे।

विचारों के साथ अनुमति दीजिए अपने रेडियो में तो सुशील को आज के कार्यक्रम झरोखा से। नमस्कार।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
7: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से भी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा, 45 मिनट हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मंदर।

0: चलते इस मानिक परी और अनुसुईया के स्वर में अभी अभी लोग गीत सुन रहे थे।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: डोंगा मां नदिया बुड़ जाही, डोंगा मां नदिया बुड़ जाही, सुनो सुनो।

0: अच्छा, चाटी चढ़े पहाड़ में किनो मन का जरिया जाए, ऊंट वाल मार के बगल मदाबे हाथी लनरी में उरमाए। ये ऊंट वाल मार के बगल मदाबे हाथी लनरी में उरमाए।
1: फिर का होई जी
0: हे डोंगा मा।

0: ये साच कहैया मारे जावे यो झूठ ल जगपतिया है।
1: अच्छा
0: ये दे साच कहैया मारे जावे झूठ ल जगपतिया है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: औ गली गली मा गोरस गिंजरे बैठे मंद बेचाए। ये गली गली मा गोरस

गए इस लोकगीत के साथ ही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात्रि 9:25 पर हम प्रसारित करेंगे वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति थीम पर विशेष कार्यक्रम। यहीं से विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा सुबह 9:00, दिन के 11:00, दिन के 12:00 और रात्रि 9:00। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आज सुबह 8:30 पर हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। सुगम संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे आज सुबह 10:10 पर। सुबह 30 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम पॉप टाइम में संध्या 5:10 पर। केंद्र से आज आप सुनेंगे संध्या 6:20 पर। संध्या 7:00 और रात्रि 8:30 पर का समय होगा गैर फिल्म गीतों के प्रसारण का। रात्रि 10:00 और रात 10:30 पर हम लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यमिनी। आज संध्या 5:00 हमारे केंद्र से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। संध्या पर हम लेकर आएंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार। आपकी बात का विषय होगा सहेली और सेहत की बारी, योग अपने शहरी नारी। ये चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में। वर्क फ्रॉम होम फ्रीलांसिंग अवसर को समझे। इसके अलावा सखी अपने पसंद के गीत सुनेंगी। सुनेंगे संध्या 7:20 पर। आपकी बात का विषय होगा फसल की सफलता की पहली सीढ़ी है सही बीज का चुनाव, बुआई पूर्व अंकुरण परीक्षण। सुनेंगे चर्चा पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं।

0: कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: प्रतिशत छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह आप समाचार होंगे

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाए।

राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए, एक दिन नहीं हर दिन योग और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
4: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे।

0: और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काश्मीर महार, आकाशवाणी कोलकाता।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर $40 से $45 अरब तक पहुँचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, ऑब्जर्वेशन, ऑटोनॉमस सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
1: धन्यवाद फरहत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
0: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47

0: खुश रहकर भी शरीर बहुत कुछ कहता है। हर बदलाव कोई संकेत जरूर देता है। जरूरत है उस बदलाव को समझ पाए, क्योंकि सेहत जरिया है खुद से जुड़ने का। कभी बिना वजह वजन बढ़ना, कभी पीरियड्स की अनियमितता, कभी चेहरे पर अनचाहे बाल या मुहासे, या कभी मां बनने को लेकर चिंता। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बदलती जीवन शैली और बढ़ते तनाव के बीच महिलाओं में ये समस्या तेजी से सामने आ रही है। PCOS, ये क्या है, क्यों होता है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ा जाए, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आंचल अग्रवाल, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए।
0: तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे PCOS क्या है।
1: जी, PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। लेकिन जैसे कि आज आपको पता भी होगा, अब इसका नाम चेंज हो गया है
0: जी।
1: हम पहले भी जब इसकी बात

0: ये सीधे दिमाग से लेकर के ओवरी तक जो साइकिल चल रहा है हमारा, ये सबको इफेक्ट करती है। तो अब इसके नाम में ही हमें पता चल जाता है कि ये बीमारी कितनी बड़ी है।
1: जी।
0: बड़ी बीमारी का इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैंसर की तरह है, इससे घबराना नहीं है, बस कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें सही टाइम पे पहचानना है और उसके बाद हमें उसका ट्रीटमेंट लेना है।
1: जी, तो डॉक्टर साहिबा, पीसीओएस के मुख्य लक्षण जो हम, जैसा आप कह रहे थे सिम्टम्स होते हैं, तो मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पीसीओएस कितना कॉमन है। पहले के जमाने में अगर हम देखें, जैसे कि हमारी मम्मी जो हुआ करती थी, मम्मी, दादी, नानियां, उनके जमाने में पीसीओएस शायद ही किसी ने सुना होगा या किसी ने अनुभव किया होगा इस चीज को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता था और हम सबको ही को अभी पता है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। तो पीसीओएस का मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है पीरियड्स अनियमित होना, यानी कि कभी 15 दिन में पीरियड्स आ जाना या कभी 1.5 महीने में 2 महीने में पीरियड्स आना। दूसरा होता है कि अनचाहे बाल उगना, मेल पैटर्न ऑफ हेयर ग्रोथ हम इसको बोलते हैं, जहां हमें बाल चाहिए तो वहां से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और अनचाहे ग्रोथ चेहरे पे, जैसे मेल्स का बियर्ड होता है, दाढ़ी होती है, उस जगह पे हमारे बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाती में, पेट में, बगलों में, ये सब जगह पे बाल एक्सेस में आते हैं और बहुत मोटे होते हैं वो बाल। दूसरा होता है बहुत सारे मुहासे आने, चेहरे पे पिंपल्स होना। तीसरा होता है कि स्किन जो है बहुत ब्लैक हो जाती है हमें, हमारे गले के पीछे में, इसको एकिंथोसिस नाइग्रेंस बोलते हैं। हिर्सुटिज्म होना, हमारी आवाज जो है वो मोटी हो जाती है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि हमारा वजन काफी बढ़ने लगता है, मोटापा। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बच्चे करने में दिक्कत होती है, पर ऐसा नहीं है कि ये बांझपन लेके आता है, लेकिन हाँ जरूरी है, बच्चे करने में ये दिक्कत होती है, सही टाइम पर ट्रीटमेंट से बच्चे हो भी सकते हैं इसमें। ये सब तो हुआ हमारा एडोलेसेंट और रिप्रोडक्टिव के टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है, बट पीसीओएस सिर्फ इसी में सीमित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी है, तो फ्यूचर में जाकर के हमें डायबिटीज होने का खतरा होता है इसकी वजह से, हाइपरटेंशन होने का खतरा होता है, डिसलिपिडीमिया, लिपिड्स में प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ एंडोमेट्रियल कैंसर, बच्चेदानी के अंदर की परत का कैंसर होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है इसमें।
1: जी, तो बहुत सारे लक्षण आपने बताए, तो हमें लगता है कि अगर किसी भी महिला में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर के पास जाकर सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, अब हम जानना चाहेंगे कि पीसीओएस होता क्यों है, क्या वजहें हैं इसके?
0: जी, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है एक जेनेटिक है, ये अनुवांशिक होता है, तो जीन्स के कारण में आने वाले जेनरेशंस में ये पीसीओएस दिखाई देता है। और दूसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो सेडेंटरी हो गई है तो हमारे अंदर मोटापा पहले से ही बढ़ रहा है, हमारा खान पान चेंज हो रहा है, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, जो सबको पता भी होता है लेकिन कोई उस पर वर्क नहीं करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण ये पीसीओएस भी होता है और वजन भी हमारा बढ़ता है। और बाकी है, आजकल बहुत सारे टॉक्सिन्स, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे टॉक्सिन्स होने लग गए हैं हर चीजों में, फलों में मिलावट हो रही है, हम इतने केमिकल्स यूज करते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, पाउडर्स यूज करते हैं, सब में एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे नॉर्मल हार्मोनल मिल्यू जो होता है उसको चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और ये हार्मोनल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, एक एंडोक्राइनो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जो हम सिंपल सी चीज है कि हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो ये चीज बैलेंस हो जाएगी, सिम्टम कम हो जाएगा, इसको कभी हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, तो वो जीन तो आपकी बॉडी में आ चुके हैं तो वो तो रहेगा ही, लेकिन हाँ बस ये है कि हम अगर इसको मेंटेन करें, सही टाइम पे जो दवाइयां हमें डॉक्टर ने बताया गया है वो ले और अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली सुधार के रखे तो ये चेक में रह सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम गर्भ में होते हैं अपनी माँ के, तो उस समय अगर प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कोई प्रॉब्लम हुआ है, या कि IUGR हम वर्ड यूज करते हैं, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब फीटस का जो बच्चा भ्रूण होता है उसका वजन अगर बहुत कम है या वजन अगर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी उसको पीसीओएस होने के चांसेस होते हैं। अगर मदर को डायबिटीज हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान में, या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी से पहले मदर डायबिटिक थी, तब भी बच्ची को पीसीओएस, अगर लड़की है तो उसको पीसीओएस होने के चांसेस

0: हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें भ्रूण में भी डिसाइड हो जाता है कि आपको फ्यूचर में जाकर के ये प्रॉब्लम्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। अगर फर्स्ट रिलेटिव मम्मी पापा के साथ में आपके मामा मामी या दादा दादी किसी को भी किसी को भी शुगर है या कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, तब भी उस बच्ची को पीसीओएस हो सकता है।
1: जी, बहुत सारी जानकारी आपने दी कि पीसीओएस क्यों होता है। वैसे हर चीज के लिए अगर हम सोचें तो संगीत की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो मानसिक शांति देता है। किसी भी समस्या का एक हल्का सा हल जो है वो संगीत में भी छुपा हुआ है। तो हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं ये बताइए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।
0: जी, जब कोई बात बिगड़ जाए।
1: हम आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: ईद के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर की सलाह में। और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आंचल अग्रवाल, जिनसे बहुत ही रोचक बातचीत हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर डायबिटिक है तो बच्ची को, अगर बच्ची होती है तो उसको ये समस्या हो सकती है
1: जी।
0: तो जिनकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा है, वजन थोड़ा ज्यादा है, जो थोड़ी सी मोटी है, क्या उनको ये समस्या ज्यादा होती है?
1: ये जरूरी नहीं है कि जिनका वजन ज्यादा है ये उन्हीं को हो। पीसीओएस जो है, लीन पीसीओएस भी, मतलब पतले लोगों में भी पीसीओएस देखा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि ये मोटापा बढ़े तभी उनको पीसीओएस होगा। पतले लोगों में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है या एंडोमेट्रियम कोई प्रॉब्लम आई है तो उनको भी ये पीसीओएस हो सकता है।
0: तो पीसीओएस होने के बाद क्या गर्भ धारण करना संभव है?
1: बिल्कुल संभव है। मैंने जैसे कि बताया थोड़ी देर पहले, थोड़ी दिक्कतें आती है क्योंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, महीना जो है समय से नहीं आ रहा है। और समय से नहीं आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडे नहीं बन रहे हैं अच्छे। जो हम पहले बात करते थे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, तो हम यही कहते थे कि आपकी बॉडी में सिस्ट नहीं है, ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं जो कि मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तभी वो अंडे में फूटते हैं, तो वो अंडा बन ही नहीं रहा है, इसीलिए उनका मासिक धर्म जो भी है वो अनियमित हो रहा है। तो हमें पहले उनको ऐसी दवाइयां देनी होती है जिससे उनका मासिक धर्म नियमित हो। उनको लाइफस्टाइल के बारे में सजेस्ट करते हैं हम, वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। अगर वजन ज्यादा है तो उनको वजन कम करने की सलाह हम देते हैं, या फिर अगर पतले लोगों में ये पीसीओएस है तो उनको भी एक्सरसाइज करना होता है क्योंकि उससे उनका मेटाबॉलिज्म सही होगा। तो आसपास में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होगा, एंड्रोजन हार्मोन कम होगा उनकी बॉडी में, तो अंडे अच्छे से बनेंगे, ओव्यूलेशन प्रॉपरली होगा, फिर ऑटोमेटिकली उनके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में वो खुद से भी कंसीव कर सकती है बिना कोई सहायता के, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल सुधार ले और कुछ मेडिसिन ले दो। अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो हमारे पास और भी दूसरे तरीके होते हैं, जैसे कि अंडे बनने की दवाइयां देना, ओव्यूलेशन इंडक्शन से उनको प्रेगनेंसी धारण करवाना, या आईयूआई करना, तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक यूज करना बेसिकली उनके में
0: जी। पीसीओएस का निदान कैसे किया जा सकता है?
1: जी, अभी तक मैं हर बार ये बात कर रही थी कि लाइफस्टाइल, तो मेन इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है, बट ये कहना बहुत आसान होता है कि आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए तो आपका पीसीओएस सुधर जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें पेशेंट से बात करना है कि उनका दिनचर्या कैसा है, वो सुबह से उठ करके रात तक क्या करते हैं, कितने बजे उठते हैं, और उनकी हॉबीज क्या है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पीसीओएस है, आप जाकर के ये एक्सरसाइज करिए, आप हो सकता है कि हफ्ते दो हफ्ते मेरी बात माने, फिर आप नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका बिजी लाइफ शेड्यूल है।
0: ऐसा बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि कोई भी सलाह अगर डॉक्टर देते हैं खासतौर पर एक्सरसाइज करने की, कुछ दिन तो वो चलता है, लेकिन उसके बाद फिर लगता है क्या एक्सरसाइज करना, वो फिर अपने जैसा उनका
1: रूटीन है वैसे ही हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है पहले हम वो जाने, और उनके लाइफस्टाइल में वो डाइट फिट करें। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, अंडे खाइए, आप वेजिटेरियन हैं तो ऑब्वियसली आप अंडे नहीं खाएंगे। तो हमें पेशेंट के हिसाब से उनको लाइफस्टाइल के लिए प्रॉपर गाइड करना है। तो ये सिर्फ एक अकेले गायनेकोलॉजिस्ट का काम नहीं होता।

0: इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, लाइफस्टाइल के कोच होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, ये सब कोई अगर मिलजुल करके उस पेशेंट पे काम करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और उनका पीसीओएस का सिम्टम्स जो है कम हो जाता है। तो हमें उनकी दिनचर्या सुधारनी है जो भी उनकी दिनचर्या में गलत हो रहा है, उनको हेल्दी डाइट की सलाह देनी है, जो भी वो खा रहे हैं उसमें से हमें उन्हें बताना है कि उसमें उनको क्या कट करना है और क्या ऐड करना है। बेसिकली हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट कम करना है, प्रोटीन ज्यादा करना है, बट उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको सलाह देंगे। एक्सरसाइज भी, हम सिर्फ एक्सरसाइज बोल दें तो वो शायद नहीं करेंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो महिला कहां से आ रही है, गांव से आ रही है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, किस क्लास से बिलोंग करती है। कुछ लोगों को जिम जाना पसंद होता है, कुछ लोग घर पे ही करते हैं एक्सरसाइजेस, और अगर मैं गांव वालों को बोलूंगी कि आप एक्सरसाइज करो तो उनको ये सारी चीजें जैसे भी नहीं समझ में आनी है। तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे व्यायाम होते हैं जो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो हर पेशेंट के लिए उनके अकॉर्डिंग हम चीजें वो बताएंगे, और प्लस कुछ मेडिसिंस होते हैं जिनके में अगर प्रॉपर इंसुलिन रेजिस्टेंस मिल रहा है हमें, हम पहले उनका टेस्ट करेंगे, अगर शुगर के चांसेस हैं, प्री डायबिटिक हैं या मोटापा बहुत ज्यादा है तो हम उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए उनको दवाइयां देंगे। उनके हिर्सुटिज्म, एक्ने बहुत ज्यादा है तो एंटी एंड्रोजेंस भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से, ये दोनों को मिक्स करके हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में उनको ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी, जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि गांव के महिलाएं हैं तो वो तो वैसे ही बहुत काम करती हैं, उनको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है ना। शहर की जो महिलाएं हैं, अगर वो ऑफिस जॉब में तो लगातार अगर बैठ के काम करना पड़ता है तो काम तो वो भी कर रही हैं, लेकिन वो बैठे बैठे काम कर रही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि गांव का या शहर का होना मायने नहीं रखता, ये किसी को भी हो सकता है।
0: किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अब वैसा गांव में भी उतना ज्यादा काम नहीं दिखा जाता है, तो उनका भी लाइफस्टाइल अब वैसा नहीं रहा जो हम पहला सोचे करते थे। तो लाइफस्टाइल अब चाहे गांव हो या शहर हो, सबकी खराब हो चुकी है। तो वही चीज जब हमें सुधारनी है, जो हम पहले बोलते थे, हमारे दादी नानियां जो बोला करती थी कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, शाम के 6-7 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, तो ये सारी चीजें हमें वापस लेके आनी है। जो चीज हमारे हाथ में है उतना हम कर सकते हैं, बाकी जो मिलावटें हो रही है, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एटलीस्ट जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है।
1: जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसका कोई स्थायी इलाज है?
0: मैंने आपको बताया है पहले भी, इसका परमानेंट इलाज नहीं है, बट हाँ इसके लिए अभी भी खोज चल रही है। लेकिन सारे सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल में कर सकते हैं हम, और अब प्रॉपर तरीके से सलाह ले रहे हैं डॉक्टर से, प्रॉपर उनके उसमें है, तो हम इसका सिम्टम्स जो है सब चेक कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ नियंत्रण हो सकता है।
1: खान पान की शैली या जो मोटापा बढ़ रहा
0: जी,
1: है
0: जी।
1: तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ये लगता है कि मैं तो ज्यादा खाती भी नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा खाना नहीं खा रही हूँ, या इधर उधर की चीजें नहीं खा रही हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है। तो इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बहुत सारी महिलाएं जैसे खास तौर से पीरियड्स की बात करें तो अनियमितता होने पर वो थोड़ा संकोच करती हैं, घर में भी वो नहीं बताती, डॉक्टर के पास तो बहुत दूर, मतलब डॉक्टर के पास जाने के नाम से ही वो घबराने लगती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत सारी गलत धारणाएं भी समाज में बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूंगी कि यूजुअली जो हम एडोलेसेंट की बात करते हैं, जब बच्चों का पीरियड स्टार्ट होता है तो उनके में पीरियड्स और ऐसे ही अनियमित रहते हैं, या फिर जब पीरियड्स बंद होने वाला रहता है महिलाओं में मेनोपॉज के टाइम, तब भी पीरियड्स अनियमित होते हैं, तो इसको वो लोग नॉर्मल है मान लेते हैं, बच्चे भी मान लेते हैं कि ये तो होता ही है, या उनके घर में उनके पेरेंट्स उनको बोलते हैं, या फिर जो पेरीमेनोपॉज में महिलाएं हैं उनको भी ये बोला गया होता है, या फिर उनको भी ये धारणा होती है कि हमारे भी पीरियड्स अनियमित होंगे, उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे। इनके में भी पीसीओएस हो सकता है। तो आजकल 8 साल की उम्र से पीरियड्स होना शुरू हो जाता है, तो उनके में भी पीसीओएस हो सकता है। तो उनको डायग्नोस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स ये अनियमित हो रहा है, 6 महीने से 1 साल हो चुके हैं आपको अनियमित हुए, तो इसको आप साधारण नहीं मानिए, चाहे आपका पीरियड स्टार्ट हुआ हो, चाहे आपका महीना बंद होने वाला हो, या आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। तो आपका सही डायग्नोसिस सही टाइम पे हो, तभी हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे और वो जल्दी ठीक हो सकता है आपका।
1: जी, तो ये जो नई शब्दावली आई है उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं?
0: अब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये डिजीज जो है सिर्फ ओवरी तक सीमित नहीं है, इसमें एंडोक्राइन प्रॉब्लम भी हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो पहले जो शब्द था पीसीओएस, ये सीमित था सिर्फ ओवरी तक
1: जी।
0: तो इसकी जो ग्रेविटी है वो किसी को पता नहीं चल रही थी, सबको सिर्फ ये लगता था कि ठीक है सिर्फ पीरियड्स इरेगुलर होंगे फिर ठीक हो जाएगा। अब पीएमओएस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये बीमारी बड़ी है, ये सब चीज को इन्वॉल्व करती है। बस एक चीज और इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है इस शब्द में अभी भी, वो है कि डिप्रेशन जो फीमेल्स को पीसीओएस या पीएमओएस होता है उनमें डिप्रेशन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय तक रहता है, तो उनको लंबे समय से ये सारी प्रॉब्लम्स जूझनी पड़ रही है कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, हिर्सुटिज्म हो रहे हैं, तो आसपास के सभी लोग उनको पिक करते हैं, उनको स्कूल्स में कॉलेजेस में सब बोलते हैं कि मोटी हो रही है कुछ करो, शी ऑल्सो नोज, उसको भी पता है कि वो मोटी हो रही है, तो ये सब कुछ उस पर पिक करेंगे तो ये अंदर ही अंदर वो डिप्रेस होती चली जाती है। तो ये एक और चीज अगर इसमें ऐड हो जाती तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इस बीमारी के लिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमने देखा है अपने आसपास भी कि प्री मेनोपॉज अगर है या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं तो भी जो फीमेल है वो धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाती है, क्योंकि वो कटने लगती है, वो आना जाना छोड़ देती है समाज में, परिवार में, उसे लगता है कि किसी से बात ना हो, बस अपने कमरे में रहें। और मैंने तो ये भी देखा है कि लोग लाइट बंद करके अकेले कमरे में पड़े रहते हैं, तो एक तरह से ये डिप्रेशन की ओर ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो प्री मेनोपॉज या इस तरह की जो चीजें हैं उसमें और पीसीओएस में कंफ्यूजन थोड़ा सा महिलाओं को हो सकता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति भी है तो भी उन्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं ये पीसीओएस तो नहीं
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, ये हो सकता है, तो आपको उस समय एक बार डॉक्टर के पास मिलना ही है, क्योंकि अगर आपका महीना भी बंद होने वाला है तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है महीना बंद होने के बाद में, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपके आपसे सवाल करके वो चीज क्लियर कर लेंगे कि ये पीसीओएस है या पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स हैं आपके, और आपको उसके अकॉर्डिंग वो गाइड कर पाएंगे। अगर पेरीमेनोपॉजल है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, या मेनोपॉज में आने वाली दिक्कतों को कैसे बचना है, और अगर पीसीओएस है तो हम वैसे ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उस चीज से शर्माइए नहीं, और घर में इधर उधर लोगों से पूछने या गूगल करने की बजाय एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए।
1: जी, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि आजकल हर समस्या का समाधान लोग गूगल में ढूंढते हैं, गूगल में तलाशते हैं कि वो समस्या कुछ है, वो दिख रहा है लक्षण, लेकिन वो कुछ और हो सकता है, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि आपने बात की अभी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या योग से, व्यायाम से और तनाव को कम करके इसमें काफी हद तक हमको फायदा हो सकता है?
0: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका ये सारी चीजें जो आपने बोला वो हमारा स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस करेगा, तो अगर आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो रहा है तब भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, बॉडी में आपका इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, तो ये सब चीजें भी आपको हेल्प करती है पीसीओएस हार्मोनल डिस्टर्बेंस से बचाने में। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है जो हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करना ही चाहिए।
1: और खाने की थाली में, यानी भोजन की थाली में बदलाव बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, खाने की थाली हमारी संतुलित व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी दादी नानियां जो खाती थी उनके डाइट में सब कुछ होता था, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ होता था, तो हमें वैसे ही खाना खाना है, सब चीजों का संतुलित आहार लेना है हमें, और उतना ही हमें काम करना है। हमें तीन टाइम खाने की एक्चुअली में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम उतना काम नहीं करते हैं। हम अगर एक टाइम भी खाना खाएं दिन भर में तो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए वो काफी होता है, लेकिन वो बचपन से ऐसे दिमाग में डाला गया कि तीन टाइम खाना होता है। एक्चुअली कई लोग छह टाइम भी खाते हैं तो वो छह टाइम खाने की आदत हो जाती है। पर अब पहले भी देखा जाए, पहले के लोग सिर्फ दो टाइम खाना खाते थे और उससे कहीं ज्यादा, हमसे 90% ज्यादा वो काम करते थे, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता था।
1: जी, तो ये भी एक दुविधा वाला प्रश्न है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुबह का जो नाश्ता है वो बहुत जरूरी होता है
0: जी,
1: और बहुत सारे लोग उसको खाने की तरह ही खाते हैं, हैवी नाश्ता करते हैं।
0: नाश्ता जरूरी हो, उसको हैवी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हैवी करेंगे तो आपका ग्लूकोज स्पाइक जाएगा, आपका शुगर बहुत बढ़ जाएगा। आधे घंटे तक ही आपको एनर्जी रहेगी, उसके बाद 11 बजे के आसपास आप ऐसा फील करेंगे कि दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप सो जाए, आपको मस्त सो जाए। तो आपको जो सुबह का नाश्ता है उसमें हाई फाइबर डाइट लेना है, ताकि आपकी एनर्जी पूरे डे तक मेंटेन रहे, एटलीस्ट आफ्टरनून तक वो एनर्जी मेंटेन रहे। क्योंकि मैक्सिमम लोग 90% लोग सुबह में ही मैक्सिमम काम करते हैं, तो हमें वो हाई पीक ऑफ एनर्जी उस समय चाहिए। तो नाश्ता इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सही नाश्ता करना है हमें। स्ट्रिक्ट कार्बोहाइड्रेट से ऑयली फूड्स नहीं खाने हैं मॉर्निंग में, प्रोटीन और फाइबर इंक्लूड होने चाहिए हमारे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर सलीमा। हम जानना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं या तो इस परेशानी से गुजर रही हैं या जिनमें ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए आप क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
0: जी, जिनको भी पीसीओएस है, या फिर मैं यूं कहूं कि जिनको अनियमित पीरियड्स हैं और जिनको मोटापा हो रहा है या मुहासे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। और सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं अब अपना लाइफस्टाइल सुधारूंगी, क्योंकि आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे डॉक्टर भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। जैसा कि हम कहते हैं, अगर हम अपनी सहायता नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी सहायता नहीं कर सकता है। तो उसी तरीके से ये भी है, आपको अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखना है, तभी आपका जो भी बीमारी है वो ठीक हो पाएगा।
1: जी, तो बहुत संक्षेप में एक बार फिर से आप ये बता दीजिए कि शरीर के किन संकेतों को अनदेखा नहीं करना है और हर महिला अपने हार्मोनल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आज से क्या छोटा सा बदलाव शुरू कर दे।
0: जी, सबसे पहले तो महिलाओं को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप लोग डरने में या संकोच करने में ये सब चीजों से बाहर निकलिए। अब इस चीज से शर्माइए मत कि मेरे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई क्या कहेगा, या आपको कोई और दिक्कतें हैं जो स्त्रियों को होती है, तो वो सब चीजों के लिए आप बात करना शुरू करिए।
1: तो डॉक्टर सलीमा, आप हमारे स्टूडियो में आई और पीसीओएस के बारे में बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक,
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम के अंत में तेरे नाम फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: यह हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक ऐसे निर्माता और निर्देशक पर जिसने अपनी फिल्मों में जिंदगी के यथार्थ को दिखाया।

बासु भट्टाचार्य का जन्म सन 1934 में कोलकाता में हुआ था। उनका परिवार कासिम बाजार पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। बहुत बचपन में जब बासु भट्टाचार्य ने सत्यजीत रे की फिल्में देखी तो उनका फिल्मों से लगाव बढ़ गया। खास तौर पर 1956 में आई फिल्म अपराजितो ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया था और उन्होंने ये तय कर लिया था कि जीवन में वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे कि फिल्मों में काम करने की स्थिति बन जाए।

बासु भट्टाचार्य जब मुंबई आए तो उनका मकसद था राज कपूर के साथ काम करना, क्योंकि आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित किया।

लेकिन मुंबई आते ही इत्तेफाक ये हुआ कि बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय की फिल्म टोली में एज असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हो गए। सन 1958 में आई मधुमति और सन 1960 में आई फिल्म सुजाता में बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के सहायक निर्देशक रहे।

रखा था। इसी बीच जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने फिल्म बनाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने चुनी एक अनमोल कृति, हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम।

फिल्म तीसरी कसम का निर्माण शुरू हुआ और इसके लिए बासु भट्टाचार्य को बतौर निर्देशक चुना गया। जो बासु भट्टाचार्य राज कपूर के साथ फिल्में बनाना सीखना चाहते थे, आखिरकार उनकी फिल्म यात्रा एक तरह से राज कपूर के साथ ही शुरू हुई और उन्होंने फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर को डायरेक्ट किया। तीसरी कसम के बनने में कई परेशानियां आईं। इस फिल्म का निर्माण एक तरह से संघर्षों से भरा रहा था, पर यह फिल्म हिंदी की एक कालजयी फिल्म साबित हुई। फिल्म तीसरी कसम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था।

देश विदेश में फिल्म तीसरी कसम की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने सन 1966 में ही एक और फिल्म बनाई, उसकी कहानी। मुख्य कलाकार थे अंजू महेंद्रू और दीना पाठक।

0: बासु भट्टाचार्य को ये समझ में आ गया था कि उनकी एक खास तरह की शैली है, फिल्में बनाने का उनका अपना एक खास मुहावरा है, और इसीलिए बासु भट्टाचार्य ने अपनी तरह का सिनेमा बनाया। मुंबई में फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए उन्होंने अपनी फिल्म बनाई अनुभव। साल 1971 में आई फिल्म अनुभव के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार और तनुजा। बासु भट्टाचार्य की खासियत रही है वैवाहिक रिश्तों की जटिलता, और वैवाहिक रिश्तों के तनाव पर वो बहुत बारीक काम अपनी फिल्मों में करते रहे हैं। फिल्मों के जानकार ये कहते हैं कि बासु भट्टाचार्य ने जीवन में वैवाहिक संबंधों की पड़ताल पर एक ट्रायोलॉजी बनाई है, और 1971 में आई फिल्म अनुभव इसी ट्रायोलॉजी का यानी इस फिल्म त्रयी का पहला हिस्सा साबित हुई।
1: मेरा

फिल्म अनुभव के गीत गुलजार ने रची और इसका संगीत कनूर रॉय का था। गीता दत्त की आवाज में इस फिल्म के गाने जैसे दिल को चीर डालते हैं।

सन 1972 में फिल्म अनुभव को दूसरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इस बीच बासु भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनानी शुरू की डाकू, पर वो फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अनुभव से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बासु भट्टाचार्य संजीव कुमार की बजाय इस फिल्म में प्राण को लेना चाहते थे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें लगा कि संजीव कुमार इस फिल्म के लिए बेहतरीन साबित होंगे और उनका यह विश्वास रंग लाया। फिल्म अनुभव एक बेमिसाल फिल्म मानी जाती है।

जैसा कि हमने कहा, बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता के एक अनमोल फिल्मकार हैं। अनुभव के बाद वैवाहिक संबंधों पर उनकी एक और फिल्म आई, आविष्कार। आविष्कार बड़े सितारों से सजी फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने काम किया था। एक बार फिर संगीतकार थे कनू।

राजेश खन्ना को इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। राजेश खन्ना की करियर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सार्थक फिल्म मानी जाती है आविष्कार।

सन 1976 में बासु भट्टाचार्य ने फिल्म संगत बनानी चाही। हालांकि ये फिल्म पूरी नहीं हो पाई और सन 1979 में बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की पेचीदगी पर अपनी तीसरी फिल्म लेकर आए, गृह

अनुभव, आविष्कार और गृह प्रवेश, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जिनके जरिए बासु भट्टाचार्य वैवाहिक संबंधों की जटिलता की जांच करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं और उसके अलग अलग आयामों को सामने लाते हैं। संजीव कुमार उनके प्रिय सितारे थे, वही फिल्म गृह प्रवेश में नजर आए, साथ में शर्मिला टैगोर और सारिका। गुलजार ने इस फिल्म के गाने लिखे थे।

0: जटिलता और अपने संगीत के लिए खास तौर पर याद की जाती हैं। बासु भट्टाचार्य ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने जो फिल्में बनाई वो अपने आप में संपूर्ण हैं। वो ऐसी फिल्में हैं जो जीवन के यथार्थ को दर्शाती हैं। सन 1986 में उनकी एक फिल्म आई पंचवटी। पंचवटी में दीप्ति नवल और सुरेश ओबेरॉय मुख्य सितारे थे। सार्थक फिल्मों की दुनिया में फिल्म पंचवटी एक महत्वपूर्ण फिल्म के तौर पर याद की जाती है। यहां एक बात और आपको बता दें, सन 1979 में बासु भट्टाचार्य निर्माता बने और उन्होंने सई परांजपे की फिल्म प्रोड्यूस की स्पर्श, नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी के बेमिसाल अभिनय वाली फिल्म स्पर्श समानांतर सिनेमा आंदोलन की एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।
1: सच आपकी संस्था से जो मैंने पाया है वो मैं कभी बता नहीं पाऊंगी।
2: और आपका आना संस्था के लिए कितना?
3: हम आपके 5-7 मिनट्स पर होने को है।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। रायपुर में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से जोड़ेगी। उन्होंने बताया कि देशभर में योजना के तहत करीब 2,400 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 11,400 से अधिक युवाओं को पहली नौकरी का प्रोत्साहन मिला है। ईपीएफओ रायपुर के इस कार्यक्रम में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को भी लाभ मिलेगा। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमेश डेका राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम डोंडराही

0: धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37 लाख रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कल प्रदेश के अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग सहित विभिन्न शहरों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। सुबह 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम प्रसारित करेंगे उन्होंने पर विशेष कार्यक्रम। विविध भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दिन के 11 बजे और रात्रि 9 बजे। आज सुबह 10:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे सुगम संगीत करेंगे कार्यक्रम। पॉप गीतों के कार्यक्रम पॉप टाइम का सुनेंगे संध्या 6:20 पर, संध्या 8:30 पर गीतों का प्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। और हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम महिलाओं का कार्यक्रम आप इसका अवसर को समझे आज के विंटर विहार में संध्या 7:20 पर आज की बात का विषय होगा पहली परीक्षण संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीका आवश्यक है। सुन रहे थे ये केंद्र है 9.7 MHz पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ

0: कहा।
1: नमस्कार, इग्नू की मौत तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल भी भाई वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए मिशन बिल्डर नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्तों ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्रेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jela mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Vande Mataram gheet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein gheet ka parikalpana Murshidabad jela mein hua. Vande Mataram hamara garv hai Swadesh ko aage karane ke liye ye gheet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रतिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संडली।
7: हम बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: जब वक्त पूरी कर लिखा कसिल ने भी अपने सुने बनकर जो था उसके स्वर में
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: हम संगीत सुन रहे थे, सुबह के 10:30 हुए हैं। हम कैंसर प्रस्तुत है फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। आप फरमाइश

कार्यक्रम का पहला गीत हमारे श्रोता साथियों की पसंद पर इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो अब्दुल समीर मोहम्मद अलीम आसिफ नईम राजा चेतन दास शीतल दास सुशीला साहित्य मुकेश और अंकित साहित्य ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवंगन मधु देवंगन हिमांशु और अंकित देवंगन सिंह नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा सीमा शारदा और दामिनी वर्मा भाई कमल कांत सारथी वीरेंद्र ब्रिज कांत सारथी

मुकेश्वर लता मंगेशकर सर ने अभी अपनी फिल्म प्रेम कहानी का गीत सुना। गीत धुन तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तुमसे पसंद करने वाला श्रोता साथी नामघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाई श्री टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, ताजपुर भाई कारी रायकारी मीना कारी पुंजराज आर्यन आरती पुंज आकर्षण पुंज जयश्री पिंकी रिंकी रिक्की नीतू मोहम्मद फारूक और लल मिश्रा और पैरागी किशोर कुमार वर्मा दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा।

0: कहा एक साथियों के स्वर में भी अपनी फिल्म सिर्फ तुम कभी सुना संगीत नदीम श्रवण का फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।
1: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
1: बिका।
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश।

0: करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। RBI कहता है,
1: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
3: कार्यक्रम का अगले गीत हमने लिए श्रोता साथियों की पसंद पर। जतू का किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम और चांदी नाज। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। एयरपोर्ट रोड बनगर इंदौर से हैं कुमारी बंदना मराठा, भाव मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ परी, संजना मराठा, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। आइए आप सबकी पसंद तो सुनते हैं फिल्म जहद का ये गीत।

श्रेया घोषाल के सुर में अभी अपनी फिल्म जहर का गीत सुना। गीत लिखा था सहित गाते ने, संगीत था रूप कुमार राठौर का। कार्यक्रम का अगला गीत हमें लिया फिल्म बरसात की रात से। पसंद करने वाले श्रोता साथी हैं ग्राम मेच का सोनडूर नगरी से नाग निखिल, तरुणदीप नाग। पाटन जिला दुर्ग से हैं बालकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, प्रहलाद और माधो वर्मा। रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से है खुशी खर्चे, ब्रूनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संगीना, परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे।

कविता कृष्णमूर्ति अलकायग्निक और साथियों के सुर में अभी अपने बरसात की रात फिल्म का गीत सुना। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोता, इस कार्यक्रम में यदि आप भी अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। आपकी फरमाइश निर्देशक आकाशवाणी रायगढ़ 001। सत्यनारायण आई डी

आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में बस इतना ही अनुमति दीजिए। आज का ये कार्यक्रम आपको आपकी सेवा प्रस्तुत किया आपके रेडियो मित्र सुशील ने। नमस्कार। फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके विषय में आप सुन रहे थे। हम आपके दिल से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 11 बजने को है। कार्यक्रम का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।

छूकर मेरे मन को, याराना फिल्म से। अभी ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इस गीत को लिखा था और राजेश रोशन की तर्ज थी।

0: द ग्रेट गैम्बलर इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में। आप सुन रहे इस वक्त विविध भारती से चित्रपट संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

बड़े दिल वाला, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

फिल्म पड़ोसन से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजों में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

मन दौड़ने लगता है। और ये गीत अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आप सुन रहे हैं मैटिनी शो। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पालघर पीठाधीश्वर योगीराज भारतभूषण भारतेंदु। विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से विश्व योग दिवस के दिन पर। हमारे वेद भारती के तमाम भारत के सभी श्रोताओं को योगीराज भारतभूषण की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।
0: क्या बात है। मुझे ये बताइए भारतभूषण जी कि इस बार की जो थीम है वो है बढ़ती उम्र के साथ योग। तो बढ़ती उम्र के साथ योग का क्या महत्व है, यहाँ से हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं।
1: बढ़ती उम्र के लिए ही योग के सानिध्य में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: जैसा कि हम सभी लोग पहले शतायु हुआ करते थे, सभी लोग कम से कम 100 साल तक उम्र होती थी, लेकिन जो हम लोगों की सोसाइटी, हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, जो एक तरह से मिलावट होता गया लाइफ में, सोसाइटी में, हमारे खान पीन में, सब में, जिसके कारण लोगों की उम्र जो है दर पदर थोड़ा कम होता गया। तो ये जो अभी का जो मिशन चल रहा है हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है पूरे भारत में
0: जी।
1: तो जैसे 100 दिन का योग महोत्सव चल रहा है तो हम लोगों का पूरा प्रयास है कि लोग शतायु हों, 100 साल जिए इस योग को सीख करके, तो उम्र को बढ़ाया जाए
0: और स्वास्थ्य को भी
1: बढ़ाया जाए,
0: है ना। अच्छा मुझे बताइए कि 40 पार के बाद के जो लोग हैं, जो 40 बरस पार करके अब थोड़ा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में योग कितना जरूरी है और वो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच कितना समय निकालें कि वो रोज योग कर पाएं।
1: देखिए रही बात जो 40 के ऊपर वाले उम्र के जो भी लोग हैं, हम तो सदा से ही पूरे भारत में ही योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों को पूछने पता चलता कि आप अपने लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते। तो जो अपने उम्र बताई कि 40 वर्ष के ऊपर वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए समय नहीं रहता, बोलते हमारे लिए समय ही नहीं मिलता खुद के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 40 के ऊपर वालों को 24 घंटे में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना योग के लिए बहुत ही आवश्यक है।
0: ये जो थोड़ा सा है इसमें कितनी मात्रा है ये समय?
1: थोड़ा सा मात्रा में कम से कम 20 मिनट
0: जी, कम से कम 20 मिनट,
1: कम से कम 20 मिनट।
0: और अगर बहुत दिल से निकालें तो कितना हो जाएगा?
1: दिल से निकाले तो 45 मिनट, एक घंटे कर लें तो सोने पे सुहागा है।
0: क्या बात है
1: जी
0: जी। तो क्या क्या करना चाहिए, जैसे 20 मिनट का समय है जिस व्यक्ति के पास, वो क्या क्या करे, और जो व्यक्ति थोड़े बड़े दिल वाला है 45 मिनट निकाल रहा है वो क्या क्या करे?
1: देखिए सबसे फर्स्ट जो पहला है
0: जी,
1: 40 ही नहीं, बूढ़े बच्चे जवान सभी को करना चाहिए, पहला तो है श्वास
0: जी
1: से रिलेटेड।
0: हाँ
1: श्वास के एक्सरसाइज प्राणायाम तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: और 40 को देखा जाए तो उनको युवा में माना जाता है, यंग हमारी जो पावर है, यूथ भी कह सकते हैं हमारे देश के, तो उनके लिए आप प्राणायाम के साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 राउंड 15 राउंड सूर्य नमस्कार आवश्यक है। उसके अलावा आप स्टैंडिंग में है, सीटिंग में है, लाइन डाउन में है, इसमें बहुत से आसन हैं जो कि करके 40-45 मिनट में अपने को एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी करना जरूरी है, मेडिटेशन
0: जी। तो मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में कौन कौन से प्राणायाम जो है वो बहुत जरूरी है? रामरी, शीतली
1: जी जी जी,
0: है ना।
1: हाँ प्राणायाम में शुरू में तो जैसे रोदन क्रिया कर लीजिए, वस्त्रिका करके अपने फेफड़े,
0: सबसे पहले भस्त्रिका करना है,
1: कपालभाति,
0: सबसे पहले कपालभाति जी,
1: देन उसके बाद में भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, उज्जयी,
0: इतने सारे कर रहे हैं।
1: हाँ अंत में ओम चैंटिंग कर लीजिए।
0: अच्छा
1: ये पूरा पैकेज हो गया
0: जी,
1: ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, सभी के लिए कॉम्बो है।
0: ये जो आपने प्राणायाम

0: पर ब्राह्मणी प्राणायाम वही है ना जिसमें उंगलियों से आंखों को ढका जाता है,
1: बंद करते हैं और अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है
0: जी,
1: मुंह बंद रखना है
0: हाँ,
1: पूरा सांस नाक से अंदर लेना है
0: जी,
1: और मुंह बंद करके ही नाक से सांस को छोड़ना है और हमिंग करना है, बटरफ्लाई की तरह।

0: और उससे जो कंपन होते हैं,
1: कंपन होगा अपने सिर में, तो जब वहाँ कंपन होता है तो वहाँ से फिर वो सीक्रेशन होता है
0: जी,
1: माइंड कूल रहता है।
0: क्या बात है, तो प्राणायाम की बात हुई, ध्यान की भी बात करेंगे, लेकिन आपने ना सूर्य नमस्कार की बात की है
1: जी।
0: मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो शुरुआत करते हैं वो 12, 25 है ना, 50 ऐसा करते हैं, लेकिन जो धाकड़ लोग होते हैं वो तो बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते हैं। जो बंदा अभी अपने लिए जरा भी वक्त नहीं निकाल रहा है वो शुरू करे तो कितने से करे कि वो अगले दिन के लिए खड़ा हो पाए?
1: देखिए, जो कभी नहीं किया है
0: जी,
1: हाँ, तो उसको आप शुरू में एक राउंड से शुरू करिए।
0: अच्छा,
1: योग का मतलब ही है जोड़ना
0: जी,
1: योग प्लस है जोड़ना। तो अपने शरीर में, अपने लाइफ में अगर स्वास्थ्य को लाना है, जोड़ना है, तो उसको धीरे धीरे धीरे धीरे स्वतः स्वतः, पहले एक राउंड मतलब दो स्टेप, लेफ्ट एंड राइट, जैसे 12 काउंटिंग का एक सूर्य नमस्कार होता है, 12 लेफ्ट लेग से, 12 राइट लेग से, तो एक राउंड आप पहला दिन करिए।
0: अच्छा,
1: फिर दूसरे दिन दो राउंड करिए, एक हफ्ते तक आप दो राउंड तीन राउंड ऐसे करिए, जैसे जैसे आपको अच्छा लगा है, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको
0: बढ़ाइए,
1: बढ़ाते जाइए।
0: नहीं, कई लोग जोश में आते हैं तो फिर किसी की कमर, किसी का कुछ
1: ये सही कर रहे हैं, तो जोश में आकर होश नहीं खोना है।
0: बिल्कुल,
1: योग हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम योग कर रहे हैं
0: जी,
1: योग को धीरे धीरे जोड़ना है
0: जी। सामान्य रूप से कितने सूर्य नमस्कार सवेरे सवेरे कर लेना एक अच्छी जीवन शैली की निशानी है?
1: देखिए, जो ऑफिस वाले हैं, वर्किंग में हैं, तो उनके लिए 10 से 15 सूर्य नमस्कार अच्छे से हर पोज को मेंटेन करते हुए करें तो
0: काफी होता है,
1: काफी होता है।
0: अब मैं आपको आपके पसंदीदा विषय की तरफ लेके जाता हूँ, ये जो सूर्य नमस्कार है इसके फायदे बताइए कि क्या क्या है। इसको संपूर्ण योग कहा जाता है ना?
1: जी जी जी, सूर्य नमस्कार में कई आसन एक साथ हो जाता है
0: जी,
1: तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग कई आसन करने की आवश्यकता नहीं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड लेटने का भी हो जाता है, इसमें कई आसन हो जाते हैं, भुजंग आसन से लेके पर्वतासन, ऐसे कई आसन उसमें हो जाते हैं, तो जिससे आपको अलग अलग आसन करने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से काम्बोज, सूर्य नमस्कार किया जाता है, वो बेनिफिट आपको पूरा हेड टू टोज तक
0: मिल जाता है जी।
1: ये
0: सबसे इम्पोर्टेंट बात है,
1: सूर्य नमस्कार,
0: और पूरे दिन आप बहुत ज्यादा जोश में रहते हैं।
1: और जिनको ये भी ध्यान रखना है कि इसी योग इंस्ट्रक्टर के सानिध्य में ही करें, कभी कभी क्या है कोई प्रॉब्लम रहते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, जो दिक्कतें हैं
0: जी,
1: तो उसको उसके हिसाब से धीरे धीरे क्या करना है, कितना करना है, उसी हिसाब से,
0: और आपकी जो शारीरिक परिस्थितियां हैं
1: उसके अनुसार
0: बाकायदा ईमानदारी से बताना है।
1: हाँ, ये समस्याएं जिनकी एज ज्यादा है उनको ध्यान में रखना है।
0: मैं वही पूछने आ रहा था बिल्कुल, कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 50-60 की उम्र या उससे ज्यादा की उम्र का है और वो करना चाहता है
1: जी,
0: तो वो क्या करे और क्या ना करे?
1: कि बुजुर्गों के लिए सूर्य नमस्कार, पहली बात तो किसी योग गुरु के सानिध्य में रह करके धीरे धीरे करें। बुजुर्गों में बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं जो कि एज उनकी काफी है, लेकिन बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: क्यों कर लेते हैं? कि वो शुरू से ही
0: नियमित रूप से करते आए हैं,
1: रूप से योग और सूर्य नमस्कार आसनाज वगैरह खूब अच्छे से करते हैं, तो बहुत अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जो अभी नए हैं, जिन्होंने कभी किया नहीं, तो उनको बहुत ही ध्यान में रहकर उनको सभी जो आसन से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको फिर अपने रूटीन में लाना है सूर्य नमस्कार को, और बहुत तनाव या प्रेशर दे करके जोश में नहीं करना है
0: जी। मैं समझ गया
1: जी।
0: मुझे ये बताइए कि मनाही नहीं है ना बुजुर्गों को सूर्य नमस्कार करने के लिए?
1: कोई भी चीज इसमें ऐसा मनाही नहीं, लेकिन हर योग को, कोई अगर रोगी है, कोई व्याध से बाधित है, तो उसको उसके अनुसार योग को करना चाहिए और योग गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। बहुत सी चीजें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना है पहले, कोई भी आदि

0: से ग्रस्त है तो उनको उस व्याधि में कौन से आसन नहीं करने हैं वो ध्यान रखना है, तो वो न करते हुए फिर उसके बाद में क्या करना है वो करना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इस बात की तरफ आ रहा हूँ कि आजकल क्या हो गया है कि सब जगह कंप्यूटर हैं, लोग जो हैं वो अपने दफ्तरों में अपने लैपटॉप पर या अपने सिस्टम पर बैठे हैं
0: जी।
1: और दिन दिन भर बैठे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक लिया, चाय वाय पी, उसके बाद फिर बैठे तो पता चला पूरे दिन का बैठना जो है वो 12 घंटे 15 घंटे हो गया। ऐसे लोगों के लिए कौन कौन सी सावधानियां हैं और उनको, क्योंकि देखते ये हैं कि किसी की गर्दन दुख रही है, किसी की कमर दुख रही है, किसी की कूल्हे दुख रहे हैं, टेल बोन की समस्या हो गई है, बहुत तरह तरह की जो लाइफस्टाइल की डिजीजेस हैं वो बढ़ रही हैं, तो ये ऑफिस वर्किंग पीपल के लिए आप खास तौर पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, ऑफिस वर्कर्स ही नहीं
1: जी,
0: आज का जो समय चल रहा है यूनुस जी, लोगों का हर चीज पर्सनलाइज की तरफ जा रहे हैं, सबका अपना होना चाहिए सब कुछ, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको अपनी चीज चाहिए, अपना मोबाइल, अपना गाड़ी, अपना घर, अपना कमरा, अपना लैपटॉप, सारे पर्सनल चीज़ें होती जा रही हैं, तो उसमें हमने योग को पर्सनलाइज किया है। जैसे ऑफिस में जो काम करते हैं उनके लिए ऑफिस योगा, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट योगा, गृहणियाँ जो अपने घर में रहती हैं, सुबह बच्चों का स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है, सास ससुर उनकी सेवा करना है तो किचन में ज़्यादा समय रहती हैं तो उनके लिए किचन योगा है, किसानों के लिए किसान योगा है, पत्रकारों के लिए पत्रकार योगा है, पुलिस वालों के लिए पुलिस योगा है, यंग्स के लिए योगा 2020 है, तो ऐसे ऐसे पर्सनलाइज हमने योग का पैकेज रखा है। तो जो ऑफिस में जो काम करते हैं उनका, क्योंकि कारण क्या है कि वो ज़्यादातर लैपटॉप पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, वो उनको ख्याल नहीं रहता कि हमारा पोस्चर किधर है क्या है, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो जिसके तनाव के कारण उनके शरीर में किसी भी पोस्चर में कोई भी कभी भी खिंचाव आ गया तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं
1: जी
0: ऑफिस वालों के लिए। तो ऑफिस वालों के लिए समय दूर से आते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है, तो अपनी कुर्सी पर बैठ करके कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ टाइम टाइम पे 1-2 घंटे बीच में रेस्ट गैप ले करके वो योग करके, ऑफिस योग का करके वो स्वस्थ रह सकते हैं, उनको बैक का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा मेंटली, तो वो ऑफिस के लिए ऑफिस योगा बहुत।
1: आपने इस तरह से वर्गीकरण कर लिया
0: जी,
1: अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के
0: सभी स्वस्थ रहे
1: तय कर लिया
0: जी।
1: अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपका तो बहुत बड़ा अनुभव है और आप न केवल कई बड़ी हस्तियों को सिखाते हैं बल्कि जनता के बीच योग की जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। विश्व योग दिवस तकरीबन 2015 से मनाया जा रहा है, बीते इन 11 सालों में आपने क्या देखा है, क्या योग की लोकप्रियता और इसके प्रति लोगों का रुझान अब बढ़ता जा रहा है?
0: अब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा है, हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में योग के प्रति, और जब से कोरोना का समय आया
1: जी
0: उसके बाद से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, और जिसका कारण है कि आज हम देखते हैं कि हर पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, जो योग कर सकते हैं योग करते हैं, टहलने का काम करते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो करके लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लाभ उठाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों की जागरूकता बहुत बड़ी है अपने स्वास्थ्य के प्रति, लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी लिविंग स्टाइल, और योग के प्रति, योग ध्यान प्राणायाम साधना इसके प्रति तो लोगों की रुचि बहुत ही बढ़ी है, और हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि घर घर योग, सभी रहे निरोग।
1: वाह, अच्छा, एक बड़ा जो लोगों का रुझान है वो है वजन घटाने की तरफ, क्योंकि अमूमन अब लोग ओवरवेट होते हैं
0: जी जी,
1: पर बहुत कोशिशें करते हैं और वजन घटता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताएंगे कि केवल योग करना ही काफी है या उसके लिए एक संपूर्ण पैकेज होता है कि किस तरह से आप क्या खाएं पिएं, कैसे जिएं कि वजन भी नियमित रूप से कम हो और एक संतुलित जीवनचर्या बन सके?
0: जी, रही बात वजन कम करने की, तो आप देखते हैं कि अमूमन लोग चाहते हैं कि हम योग से बहुत कम समय में वजन को कम कर लें, तो ऐसा
1: चमत्कार
0: और संभव नहीं है
1: जी,
0: क्योंकि जितने समय में जो वजन बढ़ा है,
1: कई लोग तो बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं,
0: 5 साल में 2 साल में इतने टाइम में बढ़ा है, तो उसको कम करने में भी

0: में लगेगा,
1: जी
0: और योग से जो वजन आपका कम होगा वो ज्यादा दिनों तक मेंटेन रहेगा। तो योग ही नहीं, योग के साथ आपको अपने आहार विहार पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, उसके साथ में वर्कआउट जो आप करेंगे योग का, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है आपका सूर्य नमस्कार से। उसके साथ साथ सब जितने भी अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन से आप केवल फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फायदे होते हैं ध्यान से, क्योंकि
1: अच्छा
0: सब कुछ ब्रेन से ही संचालन होता है।
1: जी
0: हाँ, जैसे रोगों का शुरुआत होता है स्ट्रेस से होता है, लोगों को पता नहीं लेकिन स्ट्रेस हो गया तो कहाँ से होता है, ब्रेन से ही होता है। तो उसके बाद ही तरह तरह की बीमारियां अमीनों की तरह जुड़ती जाती हैं। तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन।
1: बिल्कुल। तो मेडिटेशन तो कहीं भी किया जा सकता है, चाहे वो आप अपने ऑफिस में हो,
0: कहीं भी कर
1: स्कूल में
0: सकते
1: हो,
0: हैं
1: कॉलेज में हो,
0: आप,
1: घर पे हो।
0: कभी भी कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन,
1: जी
0: और हम लोग तो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने आहार विहार की बात की, आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग कहीं भी
0: जी
1: खड़े हो जाते हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: सड़क के किनारे के किसी भी चीजों को खा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सेहत की समस्याएं होती हैं और वजन बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। क्या योग करने वाले व्यक्ति की जीवनचर्या के तहत आप ये इजाजत देते हैं कि वो इस तरह से मजे से बाहर खाता पीता रहे?
0: देखिए, सब कुछ हमारे ब्रेन से ही सब कुछ संचालन होता है,
1: जी
0: मस्तिष्क से ही।
1: जी
0: और अपने को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, किस भाव से खा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग ध्यान से अपने जीवनचर्या को, आहार विहार को संतुलित किए हुए हैं, तो आप बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने सेहत के प्रति आप जागरूक हो रहे हैं। और रही बात बाहर की खाने की, तो आप अच्छे भाव से खाएंगे तो भगवान शिव ने विष को भी धारण कर लिया था, लेकिन वो उनको नुकसान नहीं किया। तो कहने वालों की जबरदस्ती जानबूझ के नहीं खाना पीना है, लेकिन कभी हो गया तो
1: जरूरत से ज्यादा नहीं।
0: जी, जरूरत से ज्यादा नहीं।
1: जी, आज के नौजवानों का क्या रुझान आप देख रहे हैं योग के प्रति, और क्या कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया था और उन्हें आप सही रास्ते पर लाए?
0: ऐसे बहुत से नवयुवक हमसे मिलते हैं, बहुत से मिले हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग भी करते थे, और अनियमित दिनचर्या के कारण उनके फिजिकल सिस्टम भी चेंज हो गए थे, बेडोल हो चुके थे। लेकिन उनको सही मार्ग मिलने पर, जैसे हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं, गुरु जी आप जैसे 20 साल पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। हाँ, तो उनको एक प्रेरणा भी मिलती है कि कोई भी जैसे योग फील्ड में है आप देखेंगे तो फिट ही रहते हैं।
1: जी
0: तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। और युवा शक्ति भी, अब हमारी जेंजी, जो आजकल जेंजी बोलते हैं, बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार बच्चे हैं, और वो सब चीज़ों को समझते हैं, और हमसे आपसे ज़्यादा वो जागरूक हैं। और उनको क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरी है लाइफ के लिए, वो कर रहे हैं, सही दिशा में वो जा रहे हैं, अपने भविष्य को भी लेकर हमारे देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों में और नवयुवकों में तो बहुत परिवर्तन आया है, और मैंने देखा है कि जिम भी करते हैं और योगा भी करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम भी करते हैं। तो
1: बिल्कुल। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, आज की दुनिया ऐसी है जहाँ स्क्रीन की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका जो ध्यान बहुत भटकता है पढ़ाई में, क्योंकि
0: जी
1: मोबाइल हाथ में है। अगर एक बार सोशल मोबाइल मीडिया में घुस गए तो कई घंटे चले जाते हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। ये जो फोकस है,
0: जी
1: इसके लिए किस तरह के योग करने चाहिए, ये छात्रों की बात कीजिए आप।
0: सबसे पहले तो हम छात्रों की बात आती है, और मैं योगी ही योगीराज हूँ, तो हमारे जो छात्र हैं, चाहे वो जूनियर कॉलेज को हों चाहे कॉलेज के, पहला तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे आशा भी करेंगे, तो पहला कि जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाएं, जीवन का जो मूल है वो शक्ति का, वीरवान बने और शौर्यवान बने। और उसके साथ साथ जो मोबाइल की जो स्क्रीनिंग है, मोबाइल है, लैपटॉप, स्क्रीन का जो ज़माना चला है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारा योग और मेडिटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के इस स्क्रीनिंग से। तो उसके लिए भी मोबाइल चर कह लीजिए, कि मोबाइल स्क्रीन को भी अपने लाइफ में जितनी आवश्यकता है सीमित करना है, और किस फील्ड में उससे हमें क्या लाभ है उसको जोड़ना है, और खुद से उनको समझ करके उनके लाइफ में क्या जरूरी है। स्टडी बच्चों को पढ़ना भी स्किन के अलावा हो नहीं रहा है, तो जो इम्पॉर्टेंट है जितना समय सीमित है उतना ही उसको उपयोग करें, और फिजिकली वर्क में भी अपने को ध्यान दें, खेल कूद भी करें, योग करें, प्राणायाम करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है
1: जी। एक और बहुत ज़रूरी बात और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ वह है हमारी महिलाएं, उनमें से कुछ हैं जो गृहिणियाँ हैं
0: जी,
1: और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो बाहर काम करने जाता है, उनके जिम्मे बहुत सारे काम हैं, तो वो घर भी संभालती हैं
0: जी,
1: बच्चों को भी ध्यान देना है और ऊपर से फिर अपना जो काम है वो भी नियमित रूप से करते रहना है, ऐसे में वो अपने स्वास्थ्य को अमूमन नज़रअंदाज करती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: पहले तो हम अपनी देश की नारी शक्ति को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद ही कोई उठा सकता है, और रही बात उनको खुद की अपने स्वास्थ्य की, तो हम तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो हमारी गृहिणियाँ हैं, हमारी नारी शक्ति है, वो अपने पर ध्यान नहीं रखती हैं, ध्यान ही नहीं दे पाती, क्योंकि कितना उनका व्यस्त जीवन रहता है सुबह से शाम तक का। बहुत से हमारे नारी शक्ति हैं जो कि घर का भी काम करती हैं, ऑफिस का भी काम करती हैं, उनको भी हम कहना चाहेंगे कि 24 घंटे में 20 मिनट अपने लिए समय कैसे भी निकालें, क्योंकि इस शरीर से ही पूरा संसार है, इस शरीर से ही पूरा घर परिवार है, समाज है, सोसाइटी है, इस शरीर से ही है, तो अपने शरीर के लिए थोड़ा समय निकाल कर सुबह या शाम जब भी समय मिले, नहीं कुछ तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट ध्यान शुरू करें, तो उससे क्या कि उनको महिलाओं को बहुत ज़्यादा चैलेंजेज होते हैं तरह तरह के,
1: मन भी कई बार अशांत रहता है,
0: अशांत रहता है मन, और सब मन से ही सारी चीज़ें होनी है, और बहुत से ऐसी जो व्याधियाँ हैं कि उनको बहुत जल्दी परेशान करती है, गायनोलॉजिकल हुआ या इससे बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है जो योग मेडिटेशन।
1: और क्या महिलाएँ सूर्य नमस्कार कर सकती हैं?
0: क्यों नहीं कर सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती हैं, करती हैं
1: जी,
0: लेकिन ज़्यादा एज के हैं उनको सावधानी रखनी पड़ेगी, और जो भी करें सीख करके योगा इंस्ट्रक्टर या गुरु के सानिध्य में करके करें, करती हैं सब, यंग हैं नारी शक्ति तो सूर्य नमस्कार भी कर सकती हैं, 20 मिनट 25 मिनट करके पूरे दिन स्फूर्ति से काम कर सकती हैं,
1: लेकिन किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में करना ज़्यादा अच्छा,
0: हाँ, सीख लें तो वो बेहतर है, क्योंकि योग अगर सही किया गया तो गुणनफल में फायदा होता है
1: जी,
0: अगर गलत किए तो गुणनफल में उसका नुकसान भी हो सकता है
1: जी,
0: तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरु के सानिध्य में रह करके सीख के करें।
1: चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से विश्व योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद क्योंकि आप बांसुरी भी बजाते हैं तो हम सबसे अंत में आपका संगीत भी सुनेंगे, पहले विश्व योग दिवस पर आप अपनी बात कहिए जो हमारे श्रोताओं से आप कहना चाहते हैं।
0: हम अपने सभी विविध भारती के सभी श्रोताओं को हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो योग महोत्सव का जो पर्व चल रहा है हमारे देश में 100 दिन का, और 21 जून को हम लोग अंतिम महोत्सव का मनाएंगे, और ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग 21 जून को ही ज़्यादातर लोग योग करते हैं, उसके बाद बहुत से लोग छोड़ देते हैं,
1: मतलब हर साल 21 जून को करते हैं
0: 21 जून को साल में एक बार ही करते हैं, पूरे जोश से सब बढ़िया टी शर्ट खरीदेंगे, बढ़िया ट्रैक वगैरह खरीद के,
1: हाँ,
0: योगा मैट भी खरीद लेते हैं,
1: हाँ,
0: तो एक दिन करते हैं उसके बाद फिर रख देते हैं
1: जी।
0: तो हम अपने विविध भारती के तरफ से हम सभी श्रोताओं को, पूरे विश्व के सभी लोगों से आह्वान करना चाहेंगे, केवल 21 जून को ही न करें
1: जी,
0: पूरे वर्ष भर करें, हर दिन योग अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ और सुंदर बने रहें, ये हमारी श्रोताओं।
2: उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। पंडित छन्नूलाल मिश्र के स्वर में अभी आपने सुनी राग मिश्र देश में ये ठुमरी। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।
3: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कल होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉकड्रिल किया गया।

0: और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490,54,00,000 रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राज्य में अब तक पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। सरकार ने वन पट्टाधारी और विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के किसानों को भी इस योजना से जोड़ा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा और अन्य व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है। कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम डोंड राही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन जल, जंगल और जमीन की रक्षा के संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने घोषणा की कि ये स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 37,00,000 रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। कल होने वाली नीट पुनर्परीक्षा के लिए आज मॉक ड्रिल किया गया और कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आरडी बर्मन की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में आपको वो गीत सुनवा रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इंतजार है, मुलाकात है।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, और अंतराल पर जाने से पहले आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से गीत। लता मंगेशकर की आवाज में नक्श लायलपुरी ने उसे लिखा और खयाम का संगीत था।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे विजय पथ फिल्म से। जमीर काजमी ने इसे लिखा था, अनु मलिक का संगीत। यादों की महफिल में आज वो गीत जहां कहीं इंतजार है, मुलाकात है और प्यार है।

0: फिल्म पाप से इस गीत को अभी आप सुन रहे थे, अनु मलिक ने संगीत दिया था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया

0: और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे ताल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और एआर रहमान का संगीत। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं दिल्ली सिक्स इस फिल्म से। ऐश किंग की आवाज, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत।

विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौड़ की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, अनु मलिक और मिथुन का संगीत।

अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा, अंजाम फिल्म से इसे लिया गया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

आप सबका प्रोग्राम है सुरीला सफर और आज इस सफर में मैं रहूंगी आपके साथ अनुराधा। मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आज के इस प्रोग्राम में एक इबारत या जिसे कहते हैं टेक्स्ट, उसे पोस्ट किया जाता है फेसबुक पेज पर और आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही साथ ये बताना होता है कि उस इबारत में से जो शब्द हैं उनमें से कौन से गीत बन रहे हैं जो आज इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो आपके प्यार भरे संदेश, प्यार भरे गीतों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है और आपने शब्द भी बहुत सारे खोज लिए हैं। हालांकि इबारत बहुत छोटी थी लेकिन उसमें शब्द बहुत सारे थे, तो आपने वो खोज लिए हैं, मैं पढ़ चुकी हूं और शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले हम उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, हम ये इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, रिमझिम ये बारिश, बादल का समा, जमीन ने चुपके से छू लिया आसमान, रुंझुन सी आहट, एक सपना सा आया, एक लड़की की मुस्कान में दिल खो सा गया, हाथ में खिलता गुलाब और रोशन एक दिया, और दिल का दीवाना कुछ कह ना सका, उस पल लगा जैसे यही है जहां, वो बारिश, वो जमीन, वो आसमान। तो ठीक है, आप बताइए मुझे कौन कौन से गीत इनसे आपको लगता है कि आज के इस लिस्ट में शामिल होंगे। और ये भी देखते हैं कि आपकी और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मिलती जुलती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि एक गीत ऐसा है जो बार बार कमेंट्स में आया है और जब भी बारिश की बात होती है, सावन की बात होती है, रिमझिम की बात होती है, वो गीत सबसे पहले जुबान पर आता है। तो उसी गीत से शुरुआत की जाए।

रिमझिम गिरे सावन। जी हाँ, लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत योगेश का लिखा हुआ, आर डी बर्मन की तर्ज और मंजिल फिल्म से अभी मैंने आपको सुनवाया। और सबसे ज़्यादा चाहने वाला, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ये गीत आपके कमेंट्स में भर भर के था। और भी गीतों की बारी आएगी, लेकिन आपके संदेश ले लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की छोटी सी सुंदर सी इबारत, जब रिमझिम बारिश बादलों और आसमान के बीच एक खूबसूरत एहसास जन्म लेता है, रिमझिम गिरे सावन, वो तो हम ले चुके हैं। बारिश याद दिलाती है बचपन की, जब बेफिक्र से बारिश के बादलों के साथ उड़ने को जी चाहता था। और प्रकृति में हर तत्व का संतुलन है, मौसम तब तक अधूरा है जब तक झमाझम बारिश ना हो जाए। लेकिन बारिश की कमी अभी थोड़ी लग रही है, थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करवा रही है बारिश। लेकिन आपके जो मैसेजेस हैं वो भी एक खूबसूरत बरसात लेकर आई है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सबसे पहले तो मैं विविध भारती का वो फेमस गीत जो हर समय हर मौसम में बजता है, बहुत ही लाजवाब सुंदर गीत है रिमझिम गिरे सावन, उसके बारे में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बारिश शुरू नहीं हुई लेकिन विविध भारती के सुरीले सफर में बारिश और गीतों के बौछार की बारिश बड़े तेज हवा के साथ आगे चल रही है और ये सफर पूरा करना चाहते हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम बारिश और भीगा आसमान छाएगा सुरीला सफर में। और एक और श्रोता हमारे हैं जिन्होंने लिख भेजा है कि आपकी इबारत ने सचमुच बरसात की बूंदों की तरह मन को भिगो दिया है। ये पंक्तियां प्यार, प्रकृति और संकोच के खूबसूरत मिलन की तस्वीर दर्शा रहा है। बारिश का मौसम और जमीन आसमान का जुड़ाव एक रूहानी माहौल बनाता है। शब्दों की ये रूहानी बुनावट और मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दिल को छू लेने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, बारिश की बात हुई है तो इसी से जुड़ा कुछ सवाल लेते हैं। जब बात बारिश की आती है, बरसात की आती है, पहली बरसात की आती है किसी ख़ास के साथ, तो वो एहसास ही बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास होता है। तो आपकी कुछ पहली बरसात की यादें आप ताज़ा करना चाहें तो लिख भेजें, बहुत ही कम शब्दों में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश पढ़ सकूं। तो बारिश के रूहानी एहसास, पहली मुलाकात या कुछ ऐसा जो बारिश में आपको याद रह गया हो, मुझे लिख भेजिए।

फिल्म दर्द से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी ने इसे लिखा और खयाम का संगीत था। बारिश बरसात से जुड़े आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कल तो हमारे यहाँ इतनी रिमझिम बारिश हुई, सुबह 8 से 10 तक मूसलाधार वर्षा हुई और पानी चारों तरफ भर गया। एक तरह से रेनी डे ही हो गया और कोई कहीं ऑफिस ही नहीं जा पाया। अच्छा है ना, आपको छुट्टी मिल गई इसी बहाने। एक और श्रोता लिखते हैं कि जैसे ही ये पहला गीत बजाया हमने, वैसे ही बहुत मज़ा आ गया क्योंकि रिमझिम से यही गीत उन्हें सबसे पहले याद आता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, इसी गीत पर पिछली बारिश के दिनों में हम मुंबई आए हुए थे। मरीन ड्राइव और समंदर किनारे में और मेरी धर्मपत्नी एक छाता लेकर चल रहे थे, बारिश हो रही थी और इस गीत पर बेटी ने वीडियो भी बनाया था और हमारी हाइट भी लगभग वैसी है जैसी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी की है। जी हाँ, ये छोटे छोटे से पल हमेशा याद रहते हैं और कहीं ना कहीं ये वीडियो बनाना, फोटोज़ खींचना, कहीं ना कहीं ये याद बहुत ही मीठी यादें रहती है और ऐसा ज़रूर करना चाहिए जब भी वक्त मिले। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मंजिल फिल्म का गीत बजाकर बस एक आस जगा रही है, एक आस जग रही है, यहाँ पर 44 डिग्री तापमान में झुलस रहे हैं और आसमान देखते हैं।

बादल तो नहीं दिख रहे, बस आग बरस रही है। कहाँ से आपने ये मैसेज संदेश भेजा है हमें ये भी लिखिए, और वहाँ का मौसम कैसा है हमें ये भी लिखिए। एक और श्रोता करते हैं, लिखते हैं कि बूंदों से भिगोने वाली शानदार गीत से आपने आरंभ किया है और ये विविध भारती का बहुत ही फेमस गीत है, हमेशा बजता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो या ना हो, लेकिन ये गीत सुनते ही बारिश के बूंदों से हम भीग जाते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज तो मौसम और प्रकृति से संबंधित विषय पर ही चर्चा होगी और इन्हें लगता है कि बारिश, जमीन, खुशी, अपनापन ये विषय हो सकते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि बचपन में गांव में जब वे थे तो पहली बारिश में खेतों से उठती सौंधी खुशबू मदमस्त मादक माहौल बना देती थी। जी हाँ, ये सौंधी खुशबू बहुत कुछ याद दिलाती है। तो आप मुझे लिख भेजिए कि आप कहाँ से हमें संदेश भेज रहे हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, बारिश हुई है, कुछ छींटे बरसे हैं या फिर कैसा तापमान है, और आपकी बारिश से जुड़ी यादें ज़रूर मुझे भेजिए। लेकिन साथ ही साथ कई यादें बहुत अच्छी भी होती है और कई यादें थोड़ा सा परेशान भी कर देती है, तो आप इस तरह के किस्से भी लिख सकते हैं मुझ तक।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से आनंद बख्शी ने लिखा, आर डी बर्मन का संगीत था। और आपके बारिश में भीगे खत मुझ तक पहुंचे हैं, या यूं कहें मैसेजेस पहुंचे हैं, डिजिटल खत कह सकते हैं इसे, जो संदेश आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गिरती बूंदों और मिट्टी की सौंधी महक के बीच बारिश में हुई वो हमारी पहली मुलाकात आज भी जहन में ताज़ा है। अचानक आई तेज बौछार से बचने के लिए हम दोनों एक ही छोटे से शेड के नीचे आकर खड़े हुए थे, और एक तरफ आसमान से बरसता पानी था, दूसरी तरफ हमारे बीच की वो अनकही झिझक। हवा के ठंडे झोंकों के साथ जब हमारी नजरें मिली तो बिना कुछ कहे ही एक अनजाना सा जुड़ाव महसूस हो गया। बहुत ही खूबसूरती से आपने उस मुलाकात को लिखा है, और सचमुच एक कहानी जो है वो नज़र आ रही है। इस कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही खूबसूरत संदेश है ये। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि आजकल बारिश सिर्फ नाम की होती है, रिमझिम बारिश नहीं होती, एक झटके में आंधी तूफान के साथ आती है और चली जाती है। हमारे श्रोता एक और हैं जो लिख रहे हैं कि ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी, जब भी बारिश की बात आती है तो कागज़ की कश्ती चलाने का बचपन में अपना एक महत्व रहता था, वो उन्हें याद आता है। और गज़ल सुनना चाहते हैं, देखते हैं आज की लिस्ट में क्या क्या गीत शामिल हैं। एक और श्रोता हमारे हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम सफ़र में चल रहे हैं, बेटी कार चला रही है और हेडफोन से सुरीला सफ़र का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता अपनी परेशानी, अपनी चिंता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग ना जाने किस किस चीज़ की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे प्राण अटक जाते हैं। कई सालों बाद ऐसे होने जा रहा है और बरसात बहुत कम हो रही है, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, और ये जो मानसून अटका पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इससे खेती को बहुत ज़्यादा उस पर प्रभाव पड़ेगा और न जाने क्या होगा। देखिए कुछ चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए भगवान के ऊपर, है ना, बस जैसे जो आ रहा है उसे उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बस यही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं सूरत गुजरात से, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है और ऊपर से चिलचिलाती गर्मी है, आपके बारिश के गाने अलग हैं तो अब हम क्या करें। आप गीत सुनिए और आनंद लीजिए। हमारे को श्रोता कहते हैं कि मैं नागपुर महाराष्ट्र से लिख रहा हूं और यहां तक अभी बारिश का लेश मात्र स्पर्श तक नहीं है, मानो आसमान से आग बरस रही है। एक और श्रोता हमारे बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखते हैं कि एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा सा जवाब आया अभी, बहुत ही खूबसूरत। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और ये जो बारिश का मौसम है जिसने हमें दीवाना बना रखा है, उस पर ये गीत।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि पुणे में तो अब तक बारिश का नाम ही नहीं है और बाहर चिलचिलाती धूप है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन साथ ही एक दूसरे श्रोता लिखते हैं कि मौसम चाहे कैसा भी हो, सुरीला सफ़र में जो मौसम होता है वही आसपास हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में मेरी बेटी और मेरी देवरानी की बेटी दोनों छोटी थी, दोनों हाथ पकड़कर छत पर जा रही थी, उनको बारिश में भीगना है पर सब उनको मना कर रहे थे। वो छाता लेकर बड़ा सा और भीगती गई और बहुत देर तक आनंद लेती रही और थोड़ी देर के बाद छतरी बंद करके खूब भीगी और फिर खूब मजे किए। ये बचपना उनका देखकर हम सब हंस दिए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुंज से लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन तापमान 27-28 के बीच ही रहता है। कुल मिलाकर प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। हमारे एक और श्रोता है जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ लिखी हैं। जाने कैसी ये बारिशों की मनमर्जियाँ हैं, कहीं जमकर बरसना कहीं बस अर्जियाँ हैं, है बेबस सब इनके आगे। मेरे गांव के आसमां से यूं तो रोज गुजर रहे हैं बिना बरसे ही बादल, न जाने कैसी ये बारिशों की खुदगर्जियां हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी श्रोता लिखते हैं कि अभी तक संदेश नहीं लिख पाए क्योंकि कहीं बाहर थे और अभी घर पहुंचे हैं, अभी माँ ने भोजन दिया है और साथ ही साथ संदेश भी लिखेंगे। साथ ही एक और श्रोता है वो लिख रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, मेरी श्रीमती जी गा रही हैं, रेडियो के सभी श्रोता गा रहे हैं, विविध भारती गा रही है और ये सुहाना सफ़र में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक और श्रोता है वो अयोध्या से हमें संदेश भेज रहे हैं कि यहाँ पर तापमान चढ़ा हुआ है, मई में एक दो बार बारिश हुई, जून का 20 दिन इंतज़ार में गुजर चुका है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, कभी कभी एक दो बार आंधी की कुछ फुहारें पड़ी है, जून 9 के बराबर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि लव स्टोरी फिल्म से ये जो गीत उन्होंने सुना, इसमें जब ये रिलीज हुई थी उसके बाद नायक और नायिका की लोकप्रियता कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी, इतने लोकप्रिय हो गए थे वो, ऐसा जादू चल गया था कि लड़का लड़की शब्द आम बोलचाल भाषा का हिस्सा बन गया था और ये बहुत ही खूबसूरत गीत उन्हें लगता है, उस दौर की मासूम मोहब्बत और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर जाता है। हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये गीत बहुत ही पसंद आ रहा है उन्हें और अभी उनके शहर में बारिश नहीं आई है, बारिश के गीत तो बहुत सारे हैं और कुछ गीत उन्हें याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप गीत सुनिए जो हम आपको सुनवा रहे हैं और आनंद लीजिए इस प्रोग्राम का जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

मैंने प्यार किया, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत। असद भोपाली ने इसे लिखा और राम लक्ष्मण का संगीत था। हमारे श्रोता लोग जो हैं वो हमें मौसम के बारे में बता रहे हैं। जालंधर सिटी में तापमान 37 डिग्री है इस वक्त। एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि मेरे बेटी, दामाद, बेटा और नाती वैष्णो देवी घूमने गए हैं और सूचना मिली है कि वहाँ का मौसम बहुत ही हसीन, सुंदर और ठंडक से भरा हुआ है। जी हाँ, वहाँ पर गर्मी के वक्त भी बहुत अच्छा मौसम होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चिलचिलाती धूप में बारिश के

ये सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे फिजिक्स के एग्जाम में केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए हों। हमारे एक श्रोता ने अपना किस्सा साझा किया है कि धुआंधार बारिश में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हो गई थी। वो नए नए डाक विभाग में सिलेक्ट हुए थे और नासिक शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में उन्हें जाना था। बाइक से अप डाउन करते थे, बीच में एक नदी थी जिस पर एक पुल हुआ करता था और बारिश के दिनों में ऑफिस की छुट्टी होने पर वो निकल पड़े। ऑफिस की छुट्टी होने पर, अच्छा, जब ऑफिस ख़त्म हुआ तो वो निकल पड़े और ज़ोर से बारिश हो रही थी और पुल पानी पर चढ़ चुका था और ऐसे में जब वो क्रॉस करना चाह रहे थे उसे तो बहाव इतना तेज़ आया कि बाइक समेत पानी में धकेल दिया गया पानी के बहाव ने उनको। और गनीमत है कि अच्छा तैराक होने के नाते वो किनारे तक पहुंच गए लेकिन बाइक बह गई। जी हाँ, ये परेशानी तो होती ही है लेकिन अच्छी तैराकी ने आपको बचा लिया। और सचमुच कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर इंसान को सीखना ज़रूरी होता है और होना चाहिए, शौक के तौर पर भी और एक पैशन भी होता है जो ऐसी ऐसे जब सिचुएशन आती है तो ऐसे में हमको बचा भी लेता है। एक और श्रोता है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है। अहमद फराज की लिखी पंक्तियाँ हैं ये। एक और श्रोता है, वो कहते हैं कि 10 गीतों की लिखी हुई इबारत में से 8वें नंबर पर ये गीत शामिल हुआ है और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस गीत में लता मंगेशकर ने ये पगला है, इन शब्दों को बहुत ही अलग अलग तरीके से गाया है और गौर से सुनने लायक है। जी हाँ, अजमेर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि बारिश तो नहीं है, रिमझिम बारिश, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और काले बादलों का समा है आसमान में बन रहा है और थोड़ी बहुत खुशी आती है पल भर की लोगों के चेहरे पर कि बारिश होगी लेकिन काले बादल टाटा बाय बाय करते हुए निकल लेते हैं। इंदौर से हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिमझिम गाने सुनने के लिए बादल आ गए हैं, सुबह धूप थी लेकिन अभी अचानक मौसम में बदलाव आ गया है और ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारा मौसम, हमारे जो प्रोग्राम है वो सुन रहा है और इसीलिए तब्दीली आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अगला गीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बेताब से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी वर्मन की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे हमसफर के साथ में पहली बारिश बारा खंबा गया था और वहां दोनों भीग गए थे। दोनों ने एक साथ चाय पी और सचमुच ही वो पहली बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। अभी उनकी हमसफर उनके साथ नहीं है लेकिन विविध भारती का साथ सदैव ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि धूप ने धरती को कितना तपाया है, अब हर नजर ने बादलों को बुलाया है। खंडवा की राहों में बस यही अरमान है, बरसे मेघ झूम कर, यही सबका इंतजार है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत संदेश। सुरीला सफर का अंदाज बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस खूबसूरत गाने के साथ शुरू हुआ आज का कार्यक्रम। सचमुच बारिश आने वाली है और हमारे यहाँ तो पहली बारिश हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और प्रकृति को झूमते हुए देख मन भी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और ये हमें संदेश भेज रहे हैं इच्छावर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश का। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश से मच्छर बहुत आते हैं रात को और दिन में मक्खियाँ, और दोनों में कंपटीशन लगा हुआ रहता है इंसानों को परेशान करने का, तो इन सभी से ज़रूर बचें। बिल्कुल, जो भी ज़रूरी एहतियात है उसे बरतें और ज़रूर ज़रूर बचें इन सब चीज़ों से, क्योंकि बारिश तो है ही लेकिन साथ में बीमारियाँ भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा आती है, तो अपना ध्यान रखें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के जो गीत हैं ये लोगों को सुकून दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा उन्हें लगता है क्योंकि गीत उन्हें पसंद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि भीगना तो तय है, चाहे बारिश में हो या गर्मी में। अभी दुकान पर काम करते करते हमारी बातें सुन रहे हैं वो, और बाहर घने बादल छाए हैं, दुकान के अंदर पसीने से भीग रहे हैं वो। 2019 की एक बात कहते हैं एक श्रोता, और उन्होंने लिखा है कि अगस्त महीने में पटना में इतनी बारिश हुई थी कि पूरा पटना बारिश से डूब चुका था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई वो पानी पीने की हुई। पीने का जो पानी था उसकी बहुत दिक्कत हुई, वो नहीं मिल पा रहा था, और जहाँ तहाँ कैसे करके इंतज़ाम किया गया मोहल्ले में, और कोई गाड़ी भी नहीं आ पा रही थी उस वक्त। तो ऐसे में ये कुछ चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी देती है। जी हाँ, इन सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश के फुहारों के साथ हंसी के सुरीले फुहारे तब निकले थे जब साथ में मेरी हमसफर थी और पैदल चलते हुए फोल्डिंग छतरी तेज हवा के कारण आधी ऊपर की तरफ हो गई थी। हम भीग भी रहे थे और हंस भी रहे थे। बहुत ही खूबसूरत संदेश और अब ये गीत इस फेहरिस्त में।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। इसके साथ ही हम बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम की समाप्ति की ओर। आपके मैसेजेस मुझ तक बहुत से आए हैं, मैंने कोशिश की है कि सबके मैसेजेस पढ़ूं, सबके संदेश पढ़ूं, लेकिन हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार ओले बरस रहे थे, साइज भी उनका ठीक ठाक था, फ़ोन से वो पिक ले रही थी और उनकी गर्दन पर एक ओला आकर गिरा जो कि बहुत पेनफुल था। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि उन्हें अपने जीवन साथी के साथ बाइक पर बारिश में भीगते हुए घूमना बहुत पसंद था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आपके गीतों के साथ बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर बारिश भी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश है। और लेकिन अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। आपने आज का ये सफ़र तय किया अनुराधा के संग। इजाज़त चाहती हूँ इस प्रोग्राम से जिसका नाम है सुरीला सफ़र।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिलेंगी विवाह पर। एक बिटिया घर में जन्म लेती है और धीरे धीरे बड़ी होती है। माता पिता का दिल हर मोड़ पर उसकी बलाएं लेता है। छोटे छोटे हाथों से रोटी बनाती बिटिया, गुड़ियाओं से खेलती बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बचपन की पायल की वो छुन छुन धीरे धीरे लुप्त हो जाती है और बिटिया के विवाह का समय आ जाता है। जिन गालों में अब तक दूध का उजाला भरा था, अब सिर पर चुनर डालते ही

वो गाल सुर्ख लाल हो जाते हैं। सजती संवरती दुल्हन रस्म दर रस्म किसी और की होती चली जाती है। माता पिता के मन में अनेकों सवाल उभरने लगते हैं कि नया घर हमारी बिटिया को उतने ही प्यार से तो अपनाएगा ना, लाड़ों का वर ढूंढने में हमने कोई कमी तो नहीं रखी ना, हमारी बिटिया खुश तो रहेगी ना। ऐसे तमाम सवालात के बीच बारात आ जाती है।

विवाह के समय लोग कई सारी तस्वीरें खींचते हैं, पर माँ पिता और दुल्हन के मन की तस्वीर अगर कोई ले पाता तो जान जाता कि उनके मन में कितनी उथल पुथल चल रही है। कहीं उम्मीद की धूप है तो कभी अनजाने भय का कोहरा, कभी भीगी भीगी से जुदाई की फुहार है तो कभी आंखों में नमी, कभी अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते माता पिता कई सवालों से घिरे होते हैं। इन तमाम बातों के बीच बिटिया नए घर के लिए विदा होती है। जाते समय आशीष की पोटली भी उसके साथ जाती है, जिसमें होती है कई सारी सीख और नसीहतें। उस घर को अपना बनाने की सीख, मान और प्रतिष्ठा को सहेजने की सीख, सबको अपना बनाने की सीख। भावों की लहरों पर सवार होकर वो बाबुल का घर छोड़ देती है।

विवाह यानी एक जीवन का प्रारंभ, एक नया संसार। ये जितना स्त्री के लिए नया है उतना ही पुरुष के लिए भी होता है। दोनों के मन में कई सपने और कई अपेक्षाएं होती है। शादी के बंधन में दो परिवारों का मिलन होता है। खुशहाल शादीशुदा जीवन के लिए सभी के स्नेह और सामंजस्य की जरूरत होती है। ये बंधन बना रहे और आगे चलकर सुखद परिणाम दे, इसके लिए घर के अन्य लोगों का सहयोग भी अपेक्षित होता है। नहीं तो ये बंधन टूटने में देर नहीं लगती। समझदारी और सहजता के साथ साथ सात फेरों के इस बंधन को प्रेम से लबरेज रखा जा सकता है। हाँ ये संभव है, हाँ ये संभव है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उड़ीसा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।

मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार NEET UG पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में CCTV निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
3: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
4: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण,
4: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे, जब जब फूल खिले फिल्म का नाम था। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

गीता दत्त की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। आप इस वक्त सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में गीत आप मधुमती फिल्म से सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, सलिल चौधरी का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको

0: शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

तुझे। मेरे महबूब इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद का संगीत था। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। पहली पेशकश आपको सुना रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। आंखें फिल्म से हमने से लिया है, रवि का संगीत है, साहिर लुधियानवी ने से लिखा।

फिल्म आंखें से लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनना चाहा था इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू ने। साथ ही शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना ने। और उल्लास, माफ कीजिए, अहिल्यानगर केड़गांव से भाऊ साहब नवथर, अक्षय, चंदन, जय कुमार और रुचिता ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: सुरेश वाडकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म से। संतोष आनंद ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसे सुनना चाहा था ककराला बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और समस्त परिवार ने। उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन ने। जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी, शंभू दयाल खटक ने।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे याराना फिल्म से अनजान ने से लिखा राजेश रोशन का संगीत था। इसे सुनना चाहा था कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता हिमानी हर्षिता और अभिषेक ने। जसपुर उत्तराखंड से रियाज हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम रियाज रिफाकत शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान माहिरा नूर ने इस गीत को सुनना चाहा था। गंगानगर बीकानेर से कैलाश सैनी गोविंदा और उत्तम सोनी।

मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे धरती फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इसे सुनना चाहा था रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी रवि और अक्षय शर्मा ने जालंधर से, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता शर्मा और माया कुमार ने

कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजों में गीत आप सुन रहे थे हम है राही प्यार के इस फिल्म से। इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम ने, अमर सिंहपुरा बीकानेर राजस्थान से सिकंदर अली खान और उनके परिवार ने, और भिलई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल देवांगन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं समाप्त होता है।

0: यह है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद, मृत्युहीन प्राण। हिंदी अनुवादक दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। आइए आज सुनते हैं इस नाटक का पहला भाग।

सांझ होती जा रही है। इस पार्क में अकेले अकेले लगता है सचमुच बेंजामिन का सिर फिर गया है। पता नहीं उसकी ऐसी कौन सी गुप्त खबर है जिसे वो मुझसे ही भिजवाना चाहता है। आखिर ये गुप्त खबर हो क्या सकती है?

0: किसी का भी कोई पता नहीं, और मैं यहाँ झूठ मूठ चली ही जाऊं अब।
1: जिनी।
0: हाँ?
1: जिनी।
0: कौन? बेंच।
1: खामोश। आहिस्ता, इधर इस तरफ,
0: लेकिन
1: इस झाड़ी के पीछे।
0: आखिर मामला क्या है बेंच, इतना छिपा? मुझे तो डर लगने लगा है।
1: तुम्हारे डरने की कोई बात नहीं है जिनी, हमारे यहाँ पहुँचने की खबर पुलिस को पहले लग गई है, इसलिए प्रोग्राम में कुछ चेंज करने पड़े हैं।
0: बेंच, डर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी है।
2: उस तरफ, उधर, जाओ आगे।
1: जिनी, तुम फौरन उस बेंच पर जाकर बैठ जाओ।
0: अच्छा।
3: जुड़ू, भाई बात क्या है? इसी पार्क के पश्चिम वाले गेट की बाईं ओर उनकी मीटिंग होने की बात है। वक्त शाम के 4 बजे का था, पर अब तो सांझ हो चुकी है, कहीं कोई एक भी बदमाश नजर नहीं आया।
4: सर, फिलिप्स ने कहीं हमें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी?
3: नहीं, फिलिप्स गलत इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी नहीं है। मुझे लगता है जुडू, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, शायद उसकी भनक उन्हें पहले ही लग चुकी है। सच, इन्हें गिने कुछ काले कुत्तों पर अभी तक हम काबू नहीं पा सके हैं। दिस डिस्ग्रेसफुल ऑन आवर पार्ट।
4: उस बेंच पर कौन बैठा है? कोई लड़की है शायद, क्यों?
3: हाँ, वही तो देख रहा हूँ।
4: हाँ, बड़ी हिम्मत वाली मालूम पड़ती है छोकरी।
5: ए लड़की, यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
3: लुक छिप कर कुछ प्यार मोहब्बत करने आई हो शायद? हाँ,
0: नहीं नहीं, मतलब यूं ही जरा घूमने आई थी, बस मैं घर ही जा रही हूँ।
3: ठहरो।
0: हाँ?
3: कितनी देर से तुम यहाँ बैठी?
0: जी बस थोड़ी देर से, मतलब सांझ से।
3: सांझ से? बस जी थोड़ी देर से, और अब इस सांझ ठेले तक?
0: जी मैं घर जा रही हूँ।
4: तुमने यहाँ कोई मीटिंग होती देखी है?
0: मीटिंग नहीं तो नहीं देखी।
3: मीटिंग मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, कुछ लुच्चे लफंगे छोकरों की जमात, और क्या।
0: नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ। अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ हाँ, जाओगी?
0: जी
3: जाओगी, क्यों नहीं। अच्छा, क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो?
0: जी हाँ।
3: कविताएं पढ़ती हो? मान लो जैसे बेंजामिन मोलाइज की कविताएं पढ़ती हो?
0: हाँ पढ़ती हूँ, बहुतेरे पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं।
3: उसे जानती भी हो?
0: बेंजामिन को? अब बेंजामिन को भला जानूंगी कैसे,
4: वो ऐसा कोई खास रिप्यूटेड कवि नहीं है शायद।
0: अच्छा तो अब मैं चलूं?
3: हाँ जाओ जाओ।
4: मिस्टर थॉमसन, बेंजामिन मॉलेज क्या बहुत ही डेंजरस एलिमेंट है?
3: आदमी के हिसाब से डेंजरस है कि नहीं नहीं मालूम, बट हिज पेन, उसकी कलम बंदूक से भी ज्यादा खौफनाक है, और कविताएं तो जबरदस्त खतरनाक।
4: ओह,

0: हाँ, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है, मृत्यु के अधरों छिपी है, सही शब्द नहीं सूझ रहा, मृत्यु के अधरों छिपी। हाँ, माँ
1: क्यों रे बेंच, क्या बात है, क्यों बुला रहा है?
0: माँ जल्दी से जरा इधर तो आना,
1: सूप उतार कर अभी आती हूँ, जरा रुक।
0: मुझे सही शब्द चाहिए ही, समय बहुत कम है, बस कुछ एक दिनों के बाद सोयोटो दिवस स्मरण का प्रोग्राम है, इसी बीच इसे प्रेस में भी देना है।
1: क्या बात है बेंच, क्यों बुला रहा था?
0: माँ सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये मृत्यु के अधूरों छिपी है के बाद क्या शब्द होगा?
1: इसके बाद क्या होगा, अरे किसका क्या होगा?
0: माँ सुनो ना, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधूरों छिपी है, ये छिपी है के बाद क्या शब्द होना चाहिए?
1: मुझे नहीं मालूम, जाने क्या ऊटपटांग बके जा रहा है।
0: ऊटपटांग नहीं है माँ, सुनो, मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का,

0: कविता के लिए शब्द।
1: हाँ।
0: अच्छी बात है, तो फिर अपनी लाइन और एक बार बोल।
1: सुनो, मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है इसके आगे।
0: मृत्यु

0: अब छोड़ भी, पागल कहीं का।
1: मासी,
2: जीनी।
0: आ बेटी, अंदर आ जा। बता क्या खबर है, तेरे माँ बाप सभी अच्छे हैं ना?
1: हाँ मौसी, सभी अच्छी तरह से हैं। वो परीक्षा नजदीक आ पहुंची है, तभी बैंक से इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को समझने के लिए आई हूँ।
0: अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, मैं जरा रसोई घर में जाती हूँ।
1: जी अच्छा।
2: जीनी, कौन सी परीक्षा तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है?
1: बहुत ही भयंकर परीक्षा बेंच, उसे अग्नि परीक्षा भी कह सकते हो।
2: अच्छा, होगी कोई। हाँ? पर इतना जरूर है कि तुम्हारी पहेलियों को समझ पाना मेरे लिए टेढ़ी खीर है। खैर, इस कविता को सुनो। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की, गीत जीवन का सुनाने की लिए अभिलाष, संधि क्षण में पहुंचकर वे हुए घोर हताश, क्रूर निर्मम दानवी निर्लज्ज पंजों में, जकड़कर सीसा उंडेला गर्म आंखों में। यह नहीं प्रतिवाद या संवाद की वेला, ये असह्य अन्याय हमने किस कदर झेला, रक्त रंजित राह पर बढ़कर करो जय घोष, सुप्त मन में रह न जाए उबलता आक्रोश। मृत्यु देती नित्य नूतन आस जीवन की, मृत्यु के अधरों छिपी है प्यास जीवन की।
1: वाह वाह, क्या बात है बेंच, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। यू आर नाउ अ पोएट And in time you will be a great poet, Bench.
2: हाँ, वो पढ़ते हैं मेरी कविताओं को, इसीलिए तो मुझे छुप छुप कर भागते रहना पड़ रहा है। हाँ, हकीकत यही है। खैर, अच्छा बताओ, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ोगी?
1: कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ूंगी, पढ़ने नहीं आई हूँ।
2: अरे, पढ़ने नहीं आई हो तो फिर किस लिए आई हो?
1: किस लिए आई हूँ, क्यों आती हूँ, क्या तुम नहीं जानते?
2: नहीं,
1: कुछ भी नहीं समझते।
2: बताओगी नहीं तो समझूंगा कैसे?
1: सारी बातें मुंह से कही नहीं जा सकती बेंच, समझ लेनी पड़ती हैं। क्यों तुम्हारी बातें सुनने के लिए भागी चली आती हूँ, क्यों तुम्हारी कविताएं मुझे बेचैन कर डालती हैं, क्या तुम मेरी आंखों की भाषा पढ़ नहीं पाते?
2: जिनी, तुम्हारी दृष्टि मेरे सीने में एक अजीब लहर सी पैदा कर देती है, मेरी कविताओं को अनुप्रेरित करती है, पर केवल इस तरह की अनुभूतियों को लेकर झूठ मूठ समय बर्बाद करने का वक्त अभी नहीं है। जिनी,
1: झूठ मूठ समय बर्बाद क्यों करेंगे बेंच? पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक दूसरे की अनुभूतियों को सच कहकर स्वीकार ही ना करें।
2: देखो, दिल की बात दिल में ही रहे तो ठीक है, क्या जरूरत है उसे बाहर सबके सामने खड़ी कर स्वीकृति जताने की?
1: बेंच,
2: तुम तो जानती हो मैं खतरनाक राहों का राही हूं, मेरी स्वीकृति का मतलब ही है तुम्हारे ऊपर अतिरिक्त खतरे का बोझ लाद देना। सो मैं वैसा कतई नहीं करना चाहता जिनी।
1: बेंच, तुम्हारे लिए डर से दिन रात मेरा कलेजा कांपता रहता है, भारी बूटों की आवाज कानों में आते ही मैं चौक चौक जाती हूँ।
2: मेरे लिए तुम्हारी छाती डर से कांपती है, तभी तो मेरा सीना हिम्मत से फूल उठता है जिनी।
1: जरा सावधानी के साथ चला फिरा करो, भेड़िए तुम्हारे चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तुम ही तो मेरी आंखें हो बेंच, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल अंधी हो जाऊंगी बेंच।
2: जिनी, हाथ छोड़ो, शायद मां आ रही है।
1: अच्छा, तो मैं जा रही हूँ। मौसी, अब मैं चलती हूँ।
0: लिखाई पढ़ाई हो गई?
1: हाँ, मौसी हो गई।
0: अरे, थोड़ी चाय तो पी कर जा।
1: नहीं, आज रहने दो मौसी, कुछ जल्दी में हूँ, मैं चलती हूँ।
0: बड़ी प्यारी लड़की है,

0: सर बहुत ही भला लड़का है, जहां तक मुझे खबर मिली है बेंजामिन मॉलियस जैसा लड़का उस मोहल्ले में दूसरा और कोई है ही नहीं। लिखाई पढ़ाई स्वभाव
1: विल यू स्टॉप टू डू।
0: यस सर, यस मिस्टर थॉमसन, मैं तो
1: कुछ नहीं जानते। तुम उसकी लिखी कविताएं पढ़ी हैं तुमने?
0: नहीं, पर मैं
1: कविताओं का हर शब्द एक एक बुलेट है और उन सब का इस्तेमाल किया गया है श्वेत सरकार यानी हम लोगों के खिलाफ।
0: पर बात ऐसी है सर कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली
1: सारी गलत है। बेंजामिन मोलाइज भला लड़का है, उन ब्लैक स्वाइनों के लिए हमारे लिए नहीं, इस बात को याद रखो।
0: यस सर।
1: तुम्हें पता है हमारे सबसे ज्यादा वफादार इन्फॉर्मर फिलिप स्लेपी का इन लोगों ने ही खून किया है।
0: अच्छा, इनकी इतनी हिम्मत, तब तो फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने से दूसरों का मनोबल टूट जाएगा सर।
1: यस, चारों ओर से कॉम्बिंग अभियान शुरू कर दो, कॉलिक कुत्तों का एक भी पिल्ला बच ना निकले।
0: ओके सर।
1: मेरा नाम थॉमसन है, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के थॉमसन द टेरर को भला कौन नहीं जानता। हमारे लोगों पर हाथ उठाकर सोचा है बच निकलोगे बच्चों? सारा कुछ जलाकर राख कर डालूंगा। कमान चुडू।
0: यस सर।

0: जेम्स, इतनी रात में भला कौन आया होगा?
1: मैं तो तुमसे कहना ही भूल गया बापू, आज जोहान्सबर्ग गणतंत्र फ्रंट की एक मीटिंग होगी यहाँ, लगता है वही सब आए हैं, देखता हूँ।
0: तो जेम्स तुम भी?
1: हाँ बापू, मेरे जैसे हजारों हजार लड़के अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए जूझ पड़े हैं जिस स्वाधीनता की लड़ाई में, उस लड़ाई में मैं भी शरीक हूँ बापू। आइए आइए मिस्टर जैकब, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार मिस्टर खापड़कर।
2: नमस्कार।
1: बेंस, अंदर आ जाओ ना।
3: माँ, हम तुम्हारे वही बेटे हैं, इस बार जीवन की आशा को लौटा लाए हैं, अटल विश्वास का एक कमल खिलाया है माँ।
4: ये क्या तुम्हारी कविता है बेंज?
3: नहीं, एंगोला के प्रसिद्ध कवि ऑगस्टिनो नेटो की है।
1: अरे तुमसे परिचय तो करवा दूं, ये मेरे पिता मिस्टर जोसेफ पिस्से हैं, और आप हैं हमारे संगठन शाखा के नेता टॉम्स जैकब।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार।
1: और आप रॉबिन खापड़कर हैं, इनके जिम्मे ही नाटाल प्रदेश का नेतृत्व है।
2: नमस्कार।
5: नमस्कार। खापड़कर माने भारतीय वंश के?
1: हाँ बापू, ये भारतीय वंशोद्भूत हैं।
5: अच्छा अच्छा, बैठिए आप लोग, बैठिए।
1: बापू जी, बेंजामिन को तो तुम जानते ही हो।
5: अरे इसे वाला नहीं जानूंगा मैं। अच्छी तरह से जानता हूँ। यही तो है हमारा कवि सिपाही, जिसकी कलम से फूट निकलती है काले लोगों के रुदन खून पसीने से लिखी कविताएं।
3: नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए, भला मुझमें इतनी ताकत कहाँ?
6: अरे भाई, किसकी ताकत कितनी है और वो कहाँ छिपी रहती है, इसे वो खुद भी नहीं जानता।
3: देखिए, अब इस तरह से मुझे ऊपर ना उछालिए मिस्टर जैकब, मैं तो मातृभूमि का एक मामूली अदना सा सेवक हूँ।
5: अच्छा भाई, तुम लोग बातें करो, मैं जरा चाय का पानी चढ़ा।
1: ठीक है बापू। बापू पानी जरा ज्यादा ले लेना, और भी चार पांच जने आएंगे।
5: अच्छा।

0: आज भी नहीं आया बेंच। आज 5 दिन होने को आए और बेटे को घर लौटने की फिक्र तक नहीं। इधर शहर भर में पुलिस वालों ने उथल पुथल मचा रखी है। ईश्वर जाने बेंच क्या करता है, क्या सोचता है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता।
1: मौसी, मौसी।
0: जिन्नी, आओ बेटी, आओ इस कमरे में चलो।

0: बैठो।
1: बेंच की कोई खबर मिली मौसी?
0: अरे मुझे कैसे खबर मिलेगी बेटी, मैं तो तेरे भरोसे ही बैठी हूँ। कोई खबर मिली?
1: मुझे तो कोई खबर नहीं मिली,
0: पर क्या
1: न जाने वो पूछो।
0: जिनी बता बेटी, क्या खबर है मेरे लाल की? बेंच कहाँ है, कैसा है?
1: ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, जरूर ठीक ठाक ही होगा। वो एक मीटिंग।
0: मीटिंग? किसकी मीटिंग?
1: अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की गुप्त शाखा की एक मीटिंग है, शायद बेंच वहीं गया होगा।
0: ये मीटिंग कहाँ है?
1: अब ये तो नहीं मालूम मुझे मौसी।
0: मीटिंग, गुप्त समिति?
1: हाँ।
0: इधर उस पुलिस जासूस फिलिप्स के खून होने के बाद से भेड़ियों की नजरें चारों ओर घूम रही हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा।
1: जरूर अच्छा होगा, ठीक होगा मौसी, निश्चित रूप से सही सलामत होगा। उसे कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जरूर अच्छी तरह से होगा, जरूर राजी खुशी होगा, है ना मौसी?
0: तुम ठीक कहती हो बेटी, मेरा बेंच जरूर राजी खुशी है, राजी खुशी ही रहेगा। हाँ।

0: इस वक्त हमारी स्वाधीनता की लड़ाई जनयुद्ध में बदल चुकी है और यही वजह है कि स्वाभाविक रूप से हमारी जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।
1: इसी सिलसिले में मिस्टर जैकब, मेरा ये निवेदन है कि आज अपनी गुप्त शाखा गठन के पूर्व इतिहास की जानकारी सबको दे दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हालांकि उनके लिए भी ये सब कुछ जानना जरूरी है। मैं समझता हूँ इसी क्षण इस बात को भी निपटा लेना उचित होगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है?
2: बिल्कुल, मिस्टर रॉबिन खापड़कर का सुझाव एकदम सही है,
3: लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि हम स्वाधीनता संग्राम के मूल स्रोत से कहीं कट ना जाएं, खासकर आम जनता से कहीं दूर ना हो जाएं।
0: तो फिर सुनिए, सन 1952 में चंद काले लोग पैदल चलकर श्वेत आदमियों के खेलकूद के लिए सुरक्षित इलाके में घुसे थे, रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। उस दिन की उस घटना ने धीरे धीरे आगे चलकर सारे राष्ट्र में अहिंसक प्रतिवाद का रूप ले लिया,
1: और उस प्रतिवाद के कंठों को दबोचने के लिए शार्पेविले की सरकार ने एक जघन्य तरीका अपनाया था।
0: हाँ, 700 राउंड गोली चली, 67 लोग मरे और 186 घायल हुए। उसके बाद ही केवल अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस ने उमखंटो उइसिजुई अथवा राष्ट्रीय बख्तरबंद के नाम से एक सशस्त्र वाहिनी गठित करने का प्रस्ताव पारित किया।
3: कौन कौन कौन हो सकता है?
4: कौन है?
3: कौन कौन है? अरे, ये तो जोन्सबर्ग के नेता मिस्टर रोयांगा की आवाज है। जेम्स, जल्दी से दरवाजा खोलो।
2: अरे, कैसे हुआ ऐसा?
3: क्या बात है?
2: क्या हुआ?
3: इतना खून? खून ये क्या? किसने ऐसा किया?
5: पुलिस ने।
3: पुलिस ने?
5: ईश्वर, यहाँ आने के लिए निकला था, बाद में मालूम हुआ कि कर्फ्यू लग गया, चक्कर काट कर गलियों से आ रहा था कि अचानक देखा अफसर टॉमसन अपने दल बल के साथ सामने मेरी ओर चला आ रहा है।
2: ओह, तब तो उन्होंने आपको जरूर देख लिया होगा।
5: हाँ, देख ही लिया था, तभी तो चेस किया मुझे। मैं ऊंची दीवार फांद कर इस ओर भागाया, लेकिन इसके पहले एक गोली लगी मेरे पैर में।
2: ठहरिए, पहले मैं ये बैंडेज बांध दूं।
3: बांधो। देखो, जैसे भी हो, रोयांगा को अभी इसी वक्त डॉक्टर मॉरिस के पास ले जाना होगा।
1: कंधे के सहारे चल सकेंगे ना?
5: जरूर चल सकूंगा।
3: तो फिर बस अब चलिए, और देर करना ठीक नहीं। आइए,
6: पीछे वाले दरवाजे से निकलकर बाईं ओर नहर के रास्ते से चले जाइए। देखो, ईश्वर इनकी रक्षा करे। जेम्स, बेटे, अब हमें क्या करना चाहिए?
2: बाबू, बाबू, दरवाजा जरा देर से खोलना।
6: अच्छा, आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ।
7: हैंड्स अप।
3: आप लोग
7: जरूर अंदर देखो, ये जल्दी, क्विक, कहाँ है ये सब?
8: तो आप ही जोसेफ पिस्से हैं?
6: जी हाँ सर।
8: ये कौन है? सर, वो लड़का है, क्या नाम है तुम्हारा?
3: जी, जेम्स पिस्से।
9: टॉयलेट का दरवाजा खुला है, लगता है उसी ओर से भागे।
6: आखिर मामला क्या है सर? कुछ भी

0: समझ में नहीं आ रहा है।
1: हाथ नीचे कीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। बताइए, अभी अभी पैरों में गोली खाकर जो छोकरा आया था कहाँ गया?
0: यहाँ तो कोई भी नहीं आया सर।
1: शट अप, झूठा कहीं का। किधर है वो शैतान?
2: नहीं सर, उस तरफ कोई नहीं है।
3: मैं सच कह रहा हूँ सर, यहाँ कोई नहीं है।
1: मैं भी तो सच ही जानना चाहता हूँ। तुम्हारे दोस्त के खून के दागों ने हमें ठीक जगह पर पहुंचा दिया।
2: मिल गया सर।
1: क्या मिल गया?
2: जख्म पर पट्टी नहीं बांधी गई है, ये रही खून में सनी रुई, तभी खून के दाग और पीछे की ओर दिखाई नहीं पड़ रहे।
1: यू आर राइट
2: सर। इसके अलावा इस कमरे में इन दोनों को छोड़कर और भी कम से कम 5 जने थे। अभी कुछ एक मिनट पहले उन लोगों ने यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियां ली हैं। ये देखिए, चाय के 7 कप पड़े जो अभी भी ठंडे नहीं हो पाए हैं।
1: तो मिस्टर जोसेफ पिस्से, अब जरा बताइए तो सही, आपने अपने उस मेहमान का कहाँ चालान कर दिया? समझ तो रहे हैं, हम सब कुछ जान चुके हैं।
0: नहीं नहीं जी, मतलब हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी उधर।
3: हम लोग उसे बिल्कुल नहीं जानते सर।
1: मैंने तुमसे नहीं पूछा है। हाँ, तो आप कहिए।
0: हाथ में बंदूक लिए एक अनजान आदमी अचानक घुस आया सर, उसने हमें डराकर जख्म पर पट्टी बांधने को मजबूर कर दिया।
1: उल्टे फिर झूठी कहानी करने लगा।
3: सर ये आप क्या कर रहे हैं, एक बूढ़े आदमी को आप लोग क्या हैं?
1: यू रास्कल।
0: सर सर, जेम्स मेरी एकमात्र संतान है, कहिए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं?
3: बाबू बाबू, तुम्हारे मुंह से राज की कोई बात निकलने पर भी ये हमें छोड़ेंगे नहीं।
2: बिल्कुल खत्म कर डालूंगा।
1: चुडो उसे मेरे पास दो। मिस्टर पिस्से, 1 से 10 गिनने के बीच जो कुछ भी जानते हैं फौरन बता दीजिए, वरना मेरी छोटी सी नली का गरम सीसा जेम्स की खोपड़ी को छेद कर पार हो जाएगा। और
3: बाबू बाबू, एक जेम्स के मरने से हजारों हजार जेम्स पैदा होंगे, पर मैं विश्वासघातक का बेटा होकर जीना नहीं चाहूंगा बाबू, कभी नहीं, कभी नहीं।
1: सोच लीजिए, तो फिर आप अपने खानदान के आखिरी चिराग की मौत की वजह खुद ही बन रहे हैं।
0: ये नहीं।
1: सर। 1, 2, 3, 4, 5 6
0: नहीं नहीं नहीं, रुकिए साहब, रुकिए
3: बाबू, नहीं बाबू,
1: 7, 8, 9
2: ठहरिए, हैंड्स अप। सॉरी बेंजामिन,
1: दैट ग्रेट पोएट, आई सी।
2: बिल्कुल नहीं ना, वरना गोली मार दूंगा।
4: बस रहने दीजिए, ज्यादा बहादुरी ना दिखाइए। टेनरी में कच्ची चमड़ी बदन पर लपेट कर पड़ा था और देख रहा था इन दो बेगुनाह इंसानों पर की जाने वाली आप लोगों की ज्यादती की उछल कूद। खैर छोड़ दीजिए इन लोगों को, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मैं बता रहा हूं आपको।
1: जरूर जरूर, आप ही तो बताएंगे, पर हाँ सीधे साधे शब्दों में कहिएगा, कविता में नहीं। हमें ये सब पसंद नहीं है। अब आपको हमारे साथ सरकारी मेहमान होकर जाना होगा। जुड़ू।
2: यस सर।
1: जरा अच्छी तरह से सावधानी के साथ लेकर जाना, इज डेंजरस।
2: यस सर।

0: मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बंगला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sound,
1: camera, action.
2: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे के फिल्मी गपशप। आइए अब सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग।
3: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
4: सोया था नस नस में, अब ये जग गया, ए, लहू मुलग गया।
3: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके। मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अब टेरेस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस वहां हाँ। पे आप आपको जब बैठा हुआ देखते हैं हाँ। और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं हाँ। तो हमें लगता है कि यार भाई क्या है बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद, तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने और उसकी वजह?
0: आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं हाँ। डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पड़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं नो बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट फट फट फट करके चलती है और मैं बताऊँ कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है, तुम जज हो भाई, तुम्हें उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें उसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा, फिर बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द, अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था अपनी लिखता था, समझता था, क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है, तुम ऐसे ही है बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, ये वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें
1: उस बच्चे को,
0: हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी।
1: जी बिल्कुल सही,
0: हम जज नहीं है, हम मेंटोर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा, मैंने कभी समझा कि मैं मेंटोर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो।
1: बिल्कुल सही,
0: उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है, अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या इसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूँ कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है, अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल, अभी एजाइल को क्या बोलूं, तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है, चपलता, तो बोला कि आप बहुत चपल हो तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती, मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो, जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होती है, छोटे शहरों से, वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में, लचीलापन, तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती है, उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए, और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए यहाँ पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने अपने एक शरीर के अंग से यहाँ से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए, अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है।
1: अब टेरेंस यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने,
0: हाँ,
1: जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है हाँ, बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं?
0: लेकिन एक गाना है संजय लीला भंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो हाँ, कठिन होते हैं बिकॉज़ एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना
1: उनकी एक फिल्म आपने की हुई है
0: हाँ, रामलीला तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है,
1: अच्छा
0: मनमोहिनी,
1: अच्छा मनमोहिनी,
0: उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो, और वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू यू नो कोरियोग्राफ ऑन स्टेज।

0: वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है. और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके यू नो म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं.
1: मसलन
0: जैसे इन्हीं लोगों ने तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों ने मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूं विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल. तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे इसको. तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में, किस तरीके से वो किया गया है उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेलकोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है. तो जो उसके बीट थे ठक ठक ठक ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है. तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत जरूरी है. अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी

कमजोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया. आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को, तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल.

0: ये जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ।
1: देखिए मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूँगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना वो हमसे भी ज्यादा है, सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज रहा है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट वो 5 दिन की होती है, सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया, फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया, सर हाँ सर मैं, सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया, सर देखिए मुझे गाना मजा नहीं आ रहा। सर तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें। सर नहीं नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा, दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा, तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम हरा तो रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक व्हाइट विल लुक बेटर, एंड फॉर मी व्हाइट इज माय फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वाज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम, बट ये व्हाइट में एक अलग ही एक यू नो एक
0: क्रेज है।
1: एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली, अच्छा ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग, वो अभी भी शादी करके आए हैं, दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है, दोनों शोक मना रहे हैं, और इस माहौल में दीपिका को यू नो रणवीर को रिझाना है और इसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहागरात वाला सीन, एंड येट इट हैज बी डन वेरी टेस्टफुली। तो फॉर हिम इट वॉज लाइक नॉट ब्लैक, ब्लैक इज ऑलरेडी फर्स्ट टाइम एक लड़की, सो व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट, उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, सो ही थिंक्स, उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो वी शॉट द सॉन्ग ऑल ओवर अगेन, 2 डेज वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक यू नो कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है, और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है।
0: जाहिर है, हाँ, जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है,
1: हाँ,
0: और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब चुका है।
1: तो मजा आता है काम करने का, और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता हमें, मुझे पता ही नहीं चला कब।

0: सेकेंडली भाई एक और मजे की बात करूंगा, यू नो एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके तन्वी के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से यू नो बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। ही इज दैट डिटेल। फिर वो दूसरा शॉट जो धनुची है उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धुनुची कि तुम्हें धुनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धुनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था कि अगर वो धुआं नहीं निकला धुनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों वो धुनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है और फेस से फिर वो अपना बालों को यू नो सरकाती है और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो भी वो इस तरीके से ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है और मेकअप
1: भी नहीं, उसमें से चिंगारी निकल जाए
0: मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा। और वो ले

0: देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं,
1: हाँ।
0: आपने भी कहा कई मकाम हैं,
1: हाँ।
0: क्या क्या सोच रखा है आपने?
1: खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है, तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताऊं मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया, अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। अब कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था, अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर, ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस किस पर मुझे काम करना है, मेरे निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में, किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारे चीज़ें हैं।
0: दो सवाल और हैं।
1: हाँ।
0: एक तो बहुत ही ईजी है,
1: हाँ।
0: दूसरा बड़ा कठिन है। ईजी सवाल यह है कि एक्टिंग वेक्टिंग करने का इरादा है आपका?
1: हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है।
0: नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने
1: पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं, और वो दिल चुरा लेते हैं। मेन वन मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज़्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस, आई मीन अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट स्पेशली इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं, मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो। और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे, अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड वाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई दो तीन तीन चीज़ें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल, एवरीवन इज लाइक दिस,
0: खोट तो होती है।
1: एग्जैक्टली, तो ये जो ब्लैक एंड वाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स मेक की एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स, बिकॉज देयर इज नो चैलेंज, बिकॉज देयर इज नोबडी लाइक दैट, इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी, जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चरें जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है, तो वो एक अलग लेवल का।
0: अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है।
1: हाँ।
0: सवाल यह ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ, उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद।
1: अच्छा।
0: और वो है कि शादी के बारे में।
1: देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरे लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को बोलती अगर एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और आल्सो कॉल माय सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी किसी के साथ, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज़ के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को यू नो इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, यू नो ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता. सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ. तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है. मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ. मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिकर ही नहीं करता. मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे कोई किसी का साथ चाहिए. मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद जी है, की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की यू नो इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से.

0: अब एक और बात है कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि ये नहीं करना है,
1: नहीं करना है,
0: लेकिन आपके अंदर जो कला है, देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन,
1: करेक्ट,
0: जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है, तो आप अपनी विरासत किसको देंगे?
1: एक जो आप कह रहे हैं, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण हैं वो आ जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें जो मैंने सीखा है समझा है दे दिया है उनको, जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए, ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा, इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बड़े बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं, और अगर वो उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूँ और उसको बता सकता हूँ, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है, मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो, हम क्या है, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे। मधुबन।

0: आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको, एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं, पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको?
1: बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो यू नो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है, बिकॉज हम सिर्फ रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ मुझे जाना है क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो यू नो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
0: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए?
1: कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा,
2: है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आए।

0: इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा।
1: करेक्ट।
0: आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं,
1: बहुत
0: पे आया और अपनी जगह पे
1: आया है और चला गया अभी,
0: और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया,
1: आ गया हाँ।
0: लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया।
1: अरे क्या बात है।
0: और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे, लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पर जब आप पहुंच जाएंगे तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे।
1: जरूर जरूर।
0: और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अमरकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं, तो शुक्रिया, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है। जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और जबी सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, और आपका प्यार आपका आशीर्वाद मेरे सर पे सर रहा, तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग।

के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये मिंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, कोटराही, भगवानपुर, गोपालपुर, मुरका, करवा, ठरकी, अतौरी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, सायर, ससकालो, सत्तीमुड़ा, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, घोड़ाघाट, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर, झिक्की, खंताडांड, परसाडांड, पेटा, कुर्डेग, बीमड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 114 है। ये लोटान, पुरुंगा, बनहर, सिंघीछाप, बेहरामार, इंचपारा, कंचीरा, कोयलार, सागरपुर, सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, आमा टिकरा, नवापारा, मड़ई, कोदवारी, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राट रोड, झिंगोल, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार नवापारा में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी, तेंदुचुआ, कोठारी, रामपुर, अचानकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

ये था प्राजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज की प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद संध्या 5:10 पर सुनिएगा पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। महिलाओं का कार्यक्रम मनीता विहार का समय होगा संध्या 5:30 पर, जिसमें आपस की बात का विषय होगा सहेली अब सेहत की बारी योग अपनाएं शहरी नारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून चर्चा का विषय होगा वर्क फ्रॉम होम फिनोलिंग्स अवसर को सबसे समझें साथ ही साथ सखियों की पसंद। संध्या 6:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा हिंदी में समाचार और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले होगा 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म और संगीत सुनिएगा संध्या 6:20 पर और 6:45 पर रिले होगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म और संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे संध्या 7:00 और 7:20 पर सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा फसल की सफलता की पहली सीढ़ी है सही बीज का चुनाव बुआई पूर्व अंकुरण परीक्षण। आज की नसीहत में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। इसके अलावा आज का टीप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत सुनिएगा रात्रि 8:20 पर और 8:30 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा रात्रि 8:45 पर और विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:00। 9:25 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम विविध संगीत रात्रि 10:00 और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार होंगे रात्रि 11:00 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे हमारे केंद्र से आज के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड पर। संध्या की 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम के आरंभ में दलेर मेहंदी और साथियों की आवाज में गीत है दलेर मेहंदी और जेंगो नंदपुरी का, संगीतबद्ध किया है जवाहर वाटाई ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक और साथियों की आवाज में ललित सेन के लिखे विगीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

इसी के साथ पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अप संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार।

वनिता विहार सुन रही सभी श्रोता सखियों को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण का एक अनूठा संगम है। आज के भागदौड़ से भरी जिंदगी में शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे समाज की, हमारे परिवार की सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ की, वह है नारी शक्ति। महिलाओं की, माताओं की या फिर वह किसी भी आयु वर्ग की हो, योग को अपनाना हमें बेहद जरूरी है। बहनों, व्यस्त दिनचर्या के कारण हम महिलाओं को अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों को हम योग से दूर कर सकते हैं। जैसे तनाव व चिंता से भरी जिंदगी में मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए योग बहुत प्रभावी विकल्प है। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होने के कारण हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिसके कारण शरीर जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। ऐसी स्थिति में यदि हम नियमित रूप से अपने लिए थोड़ा समय निकालकर यदि हम योग को अपनाएं तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम जल्दी से बीमार नहीं पड़ते। बहनों, योग से महिलाओं का हार्मोनल संतुलित होता है। योग अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे थायराइड और PCOS जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, जो आजकल बहुत देखने को मिल रही है। बहनों, योग से हड्डियां भी मजबूत होती है, क्योंकि उम्र के साथ कम होने वाले बोन डेंसिटी के खतरे को भी योग से दूर किया जा सकता है। बहनों, महिलाओं के लिए कुछ प्रमुख योगासन हैं जिन्हें वे कर सकती हैं, परंतु यदि कोई शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से सलाह भी ले लें, जैसे बद्धकोणासन, भुजंगासन, विपरीत करणी आसन, बालासन, सर्वांगासन, सेतु बंधासन आदि। इस तरह के कुछ आसन हैं जिसे वे कर सकती हैं।

बहनों, कल यानी 21 जून के दिन को हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत द्वारा पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था, जिसे दिसंबर 2014 में महासभा द्वारा घोषित किया गया, जिसका विश्व के अनेक देशों ने समर्थन किया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग भारत का प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कला है। बहनों, 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना इसलिए चुना गया क्योंकि यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसका विशेष महत्व प्राकृतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से भी माना जाता है। तब से प्रतिवर्ष दुनिया के अलग अलग देशों में योग का यह दिवस अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहनों, योग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाता है। यदि हम नियमित रूप से प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर लचीला और स्ट्रांग बनता है। यह हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को और हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी स्ट्रांग बनाता है। बहनों, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन शांत रहता है और तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों में कमी आती है। बहनों, निरंतर योगाभ्यास से हमारे मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच डेवलप होता है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सभी लोग मिलकर योगासन व प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं योग दिवस के अवसर पर जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, प्रतियोगिताएं भी आयोजित करती हैं। इस दिन विभिन्न योग विशेषज्ञों द्वारा योग करने के लाभ और सही योग अभ्यास की जानकारी भी दी जाती है। बहनों, वर्तमान समय में हमें योग अभ्यास को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आज के डिजिटल युग में हम अधिक से अधिक समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी के साथ बिता रहे हैं। हमारे प्रत्येक काम इन्हीं उपकरणों के माध्यम से हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी शारीरिक गतिविधियां अब कम होती जा रही हैं, जिसके कारण हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यू भी बढ़ते जा रहे हैं। और बहनों, इन सारी शारीरिक समस्याओं को हम योगा अभ्यास के माध्यम से दूर कर सकते हैं। चाहे हम अपनी दिनचर्या में कितने भी व्यस्त हों, थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, खुद को भी इम्पोर्टेंस दें और प्रतिदिन योग का अभ्यास करें, क्योंकि योग का अभ्यास न केवल हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुलन और सुख का अनुभव भी कराता है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। योग संपूर्ण मानवता के कल्याण का रास्ता है। बहनों, क्यों ना हम आज से ही यह संकल्प लें कि हम योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। बहनों, नियमित योगाभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ, मन शांत और हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। यही योग दिवस का वास्तविक संदेश है। बहनों, इसीलिए कहा गया है, सुखद निरोगी जीवन का आधार, सुखद निरोगी जीवन का आधार योग लाता जीवन में खुशियां अपार। बहनों, इन बातों के बाद अब चलते हैं अपने अगले क्रम की ओर और आज है क्रम सखियों की पसंद का। तो बहुत बहुत स्वागत है बहनों आपका इस क्रम में। बहनों, पत्रों की श्रृंखला में आपकी पसंद का जो गीत हमने चुना है उसमें फिल्म है, फिल्म सावन को आने दो का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बहनों, अभी अभी आपने गीत सुना फिल्म सावन को आने दो से, और इस गीत में स्वर दिया था यशुदास जी ने, और गीतकार थे पी पंकज, और संगीत से सजाया था राजकमल ने, और इस गीत की फरमाइश की थी श्रीमती तारा विद्या साहू रोहड़ी, नागेश्वरी साहू, छविता, पूनम साहू, और ये पत्र भेजने वाले हैं जुड़वानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बहनों, इस गीत के बाद आइए सुनते हैं एक भेंटवार्ता जिसका विषय है कामकाजी महिलाओं के लिए योग की उपयोगिता, जिसमें वार्ताकार हैं चुलेश्वरी साव और भेंट करता है रश्मि शरण। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: आज महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो घर के साथ साथ बाहर भी कार्य संभाल रही हैं। जिस तरह आज की आधुनिक जीवन शैली है, उनमें थोड़ा दबाव और तनाव का आना स्वाभाविक है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखें, और इस समय सिद्ध होती है उपयोगिता योग की। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए योग की उपयोगिता। और आज हमारे साथ हैं चुलेश्वरी साव जी, जो कि एक योग प्रशिक्षिका भी हैं। स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले चुलेश्वरी जी, हमें यह बताएं कि किस तरह एक कामकाजी महिला के लिए योग की उपयोगिता सिद्ध होती है, वह किस तरह जीवन में इसके सहारे आगे बढ़ सकती हैं।
2: योग तो महिलाओं के लिए एक वरदान है, क्योंकि आप सबको पता है कि महिलाएं घर में दफ्तर में बराबर जिम्मेदारियां निभाती हैं। आज ऐसा हो गया है समय कि बिना योग के चाहे वो कोई भी वर्ग के लोग नहीं रह सकते हैं, जिसमें हमारे महिलाएं हैं जो आगे अभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, काफी योग के स्टूडियो चला रही हैं, खुद योग कर रहे हैं और दूसरे को योग सिखा रहे हैं, जो कि एक रोजगार का भी बहुत अच्छा अवसर है।
1: ये तो हो गई बात कि किस तरह योग को रोजगार के रूप में भी वो चला सकते हैं, लेकिन एक महिला जो बाहर भी काम संभाल रही हैं, ऑफिस भी जाती हैं, घर में के सारे कार्य संभालती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, तो ऐसे में बहुत सारे तनाव को लेकर चलती है। न चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनके मन में दिन भर इकट्ठा होती रहती है।

0: है, तो इन सब चीजों से वो कैसे बचे।
1: लगातार काम करने की वजह से स्वाभाविक रूप से है कि कोई भी व्यक्ति जो है मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थक जाते हैं। तो इस मानसिक और शारीरिक थकान को दूर करने के लिए हमारा प्राणायाम बहुत ही उनके लिए लाभदायक है, जो उनके कार्य क्षमता को बढ़ाएगी भी और मानसिक शांति प्रदान करेगी।
0: और इस प्राणायाम की जब हम बात करते हैं तो उसको किस तरह से महिलाएं कर सकती हैं, कब कर सकती हैं और उसे किस तरह नियमित रूप से अपने जीवन में वो उतार सकती हैं।
1: जो प्राणायाम का समय है मुख्यतः हम सुबह करें तो ज्यादा बेनिफिट होती है,
0: जी
1: पर क्या है कि महिलाओं के पास सुबह समय नहीं हो पाती है खुद के लिए और घर वालों के लिए। टिफिन बनाना, नाश्ता बनाना, ये सारी तो डेली के रूटीन है
0: जी।
1: तो
0: विशेष करके सुबह
1: बहुत ज्यादा हड़बड़ी रहती है, उनके पास समय नहीं होते हैं अपने लिए। तो अगर सुबह नहीं कर पा रहे तो वो शाम को कर ले, और अगर शाम में भी नहीं हो रही तो छोटे छोटे रूप में हम प्राणायाम को अपने काम के साथ में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि कपालभाति प्राणायाम हुआ, जो अपने काम को करते करते भी हम कपालभाति कर सकते हैं। थोड़े टाइम लंबी सांस लेने छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको काम के साथ में भी जोड़ेंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा
0: जी। और जैसे बताया जाता है कि जब आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग उसमें सबसे ज्यादा कारगर होता है। डीप ब्रीदिंग की क्या क्रिया है और उसे हम किस तरह से कर सकते हैं?
1: जैसे हम जितनी ज़्यादा हो सके लंबी सांस लेंगे और जितनी ज़्यादा हम सांस ले हैं उससे ज़्यादा छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये हम कोई भी समय कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने हमारे पास समय हो, जहाँ पर भी हमको समय मिले, थोड़ा सा रिलैक्स होके लंबी सांस लेंगे और जितनी सांस ले हैं उससे ज़्यादा सांस बाहर छोड़ेंगे तो हम देखते हैं कि तुरंत ही हमको अपने अंदर एनर्जी फील होती है और तनाव तुरंत कम हो जाती है। इसी के दौर में हम प्राणायाम हो गया, उद्गीत जो ओम का उच्चारण है इसको करते हैं तो हम देखते हैं कि तुरंत ही हमारी जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाती है
0: जी। और जब हम डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं, एक बात हम और बताना चाहेंगे कि ज्यादातर समय हमारी जो ब्रीदिंग वो शैलो होती है, मतलब उखड़ी हुई रहती है। तो जब भी हमें समय मिले आराम से बैठ जाए, लंबी और गहरी सांस लेने का प्रयास करें, जैसे अपने फेफड़ों की क्षमता को पूरा उपयोग करें, क्योंकि हम अपने ब्रीदिंग के सिर्फ 10% क्षमता का ही उपयोग करते हैं दिन भर में, तो ये बहुत जरूरी है। और ये तो हो गई प्राणायाम की बात, लेकिन शरीर का स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। तो अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमारी महिलाएं क्या कर सकती?
1: शारीरिक रूप से फिट कर रहने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सूर्य नमस्कार का, जो कम समय में हम ज़्यादा अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, जो संपूर्ण योग उसमें सम्मिलित होती है। और साथ में हम डीप ब्रीदिंग के साथ करते हैं तो हमारे प्राणायाम भी हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार कम समय में सबसे अच्छा ऑप्शन है, पर अगर हम कामकाजी महिला हैं, ऑफिस में घंटों घंटों बैठते हैं जिसके वजह से हमारी पीठ में दर्द हो जाते हैं, पाचन तंत्र संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, तो उसी समय हम बैठे बैठे भी एक छोटी छोटी सी हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, हमारी स्ट्रेचिंग होते हैं, उसको अपनाएं जिससे हमारे पीठ की दर्द कम हो, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। और बीच बीच में थोड़ी सी बैठे बैठे काम करते हैं तो थोड़ा वॉक कर लें, उसी बीच में एक आध राउंड कर लिए, जिससे हमारे पाचन तंत्र में भी हमको जो गड़बड़ी होती है वो भी ठीक हो जाए, हमारे हार्मोनल इम्बेलेंस जो हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं
0: जी। और स्ट्रेचिंग इसमें फायदेमंद हो सकता है, जैसे आप बहुत देर तक बैठे हैं कुर्सी पर, बीच में उठ गए, थोड़े हाथ पैर को खींचा, ताड़ासन की,
1: अपने गले का जो थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, जैसे गले को पीछे की तरफ कर लिए, आगे कर लिए, लेफ्ट राइट टर्न कर लिए, ट्विस्ट कर लिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: और एक बात यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगी आपके साथ कि गले को झटकना नहीं है। कई लोगों की आदत होती है काफी देर तक काम किया और एकदम से गर्दन को झटकते हैं, वो कभी ना करें,
1: बहुत ही आराम से करना है, झटकना नहीं है
0: जी, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: और जब बात करते हैं कि आप ऑफिस में हैं और खाने पीने को लेकर महिलाओं में थोड़ी सी लापरवाही आ जाती है, तो उस योग के साथ साथ वो कितना जरूरी है कि हम अपने भोजन का भी ध्यान रखें, खासकर समय का?
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हम लोग सबके लिए ध्यान रखते रखते अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है आहार, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि हम लंबे समय तक अगर हम खाली पेट रहते हैं तो भी हमको गैस की दिक्कत होती है, टाइम बे टाइम खाना खाएंगे तो खाना पचेगा नहीं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी खराब होने लग जाती है, और एक समय ऐसे आता है कि हम इस चीज़ से

0: काफी परेशान हो जाते हैं, या
1: हाँ
0: तो गैस बनने लगती है, पाचन नहीं होती है, जिसके वजह से हम खाए हुए खाना को अगर पाचन नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम के साथ में हमारे शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है।
1: जी
0: इस वजह से अपने समय को भी ध्यान देना है और जितनी हमको आहार की जरूरत है उतने हमको भरपूर मात्रा में लेने हैं।
1: जी, और इसी क्रम में आहार के साथ एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी कि आजकल महिलाओं में स्लिम होने का बहुत क्रेज हो गया है, और अगर आप कामकाजी हैं तो एक थोड़ा सा दबाव भी महसूस करती हैं वो कि उन्हें अच्छा दिखना चाहिए, तो इसका कितना महत्व है कि वो अंदर से स्वस्थ रहें या फिर अपनी बाहरी जो रूप रंग है उसके लिए वो कॉन्शियस रहें, इस तरह का एक दबाव महसूस करते हैं, तो उसमें योग किस तरह से उनको मदद कर सकता है अपने आप को उनके व्यक्तित्व को संभालने में?
0: सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने खान पान में सुधार तो करने ही है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग या तो कुछ खाते ही नहीं है डाइटिंग के तौर पर, और जब खाते हैं तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो अपने सबसे पहले तो खाने में बैलेंस करना है ना, हमको जो भरपूर आहार चाहिए हमारे
1: बॉडी के
0: लिए, जो मिनरल्स है उनको हमको लेना है, और ज्यादा जो खाते हैं बाहरी चीज उसको स्किप करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हम घर से बने हुए खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। और योग के साथ में हम आहार का भी अगर दोनों को बैलेंस लेके चले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम अगर खाना को भी अच्छे नहीं खाते हैं तो भी हमारे मानसिक तौर पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। हम बोलते भी हैं कि जो जैसे खाए अन्न वैसे होता है हमारा मन, तो इसलिए हम आहार पर भी विशेष ध्यान दें जिससे हमारे फिट रहेंगे, और हम खाने को ध्यान में देते देते हम योग को भी साथ में इंक्लूड करेंगे जिससे हम अंदर और बाहर दोनों तरफ फिट रहेंगे।
1: अंदर से आत्मविश्वास जरूरी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, जिसके साथ में जैसे क्या होता है कि हम देर तक जगते हैं वो भी हमारे लिए शरीर को बैलेंस करने में बहुत हद तक भूमिका निभाती है। तो खाने पीने के साथ सोने को भी बहुत ही ज्यादा बैलेंस करके चलें और नियमित रूप से योग करें जिससे हमारे सभी प्रकार के पाचन से लेके मानसिक से लेके शारीरिक फिट सभी हमारे फिट रहेंगे।
1: जी, और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप योग करें, नियमित रूप से करें, उससे एक आत्मविश्वास आपके अंदर आती है जो आपको मदद करती है आपके घर और बाहर के कार्य को संभालने में, फिर अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। चुनेश्वरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे लिए इतनी अच्छी बातें की, इतने अच्छे से समझाया सभी श्रोताओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बहनों, अभी अभी आपने सुना भेंटवार्ता जिसका विषय था कामकाजी महिलाओं के लिए योग की उपयोगिता, जिसमें वार्ताकार थी चुलेश्वरी साव और भेंटकर्ता थी रश्मि शरण। बहनों, इस भेंटवार्ता के बाद अब हम चर्चा करेंगे फ्रीलांसिंग के अवसरों के बारे में। बहनों, यदि आप हाउसवाइफ हैं या फिर स्टूडेंट हैं आप या फिर कोई अदर पर्सन हैं और आप भी घर पर बैठकर फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहती हैं और फ्रीलांसिंग करके पैसे अर्निंग करना चाहती हैं, तो आपको फ्रीलांसिंग को समझना बेहद ज़रूरी है। बहनों, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, चाहे वह काम आप कहीं पर भी बैठकर करिए, चाहे आप घर पर रहकर करिए या बाहर रहकर करिए, आपके काम के लिए उस कंपनी का बॉस आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, और उस कंपनी में जाकर आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही उस कंपनी के वर्किंग आवर्स या फिर सैलरी के अकॉर्डिंग भी आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहनों, आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से उस कंपनी के काम को करते हो तो आप कहलाते हो फ्रीलांसर। बहनों, यदि आप फ्रीलांसिंग करना चाहती हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके स्किल्स क्या क्या हैं। आपको सबसे पहले अपना स्किल चूज करना है, और यदि आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स सीख सकती हैं या फिर आप इसके लिए कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकती हैं, और यदि आपके पास स्किल्स है तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सा स्किल्स में फ्रीलांसिंग करनी है। बहनों, फ्रीलांसिंग में सफल होने के लिए आपके पास तकनीकी और व्यावसायिक दोनों तरह के स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि कुछ प्रमुख स्किल्स है जैसे डिजिटल मार्केटिंग। बहनों, कंपनियों को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें भी आप काम कर सकती हैं। और इसी तरह से दूसरी स्किल्स है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग। बहनों, ये स्किल्स भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप लिखने में एक्सपर्ट हैं और आपके शब्दों से लोग प्रभावित होते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। इसमें जैसे ब्लॉग और आर्टिकल लिखना, वेबसाइट

कॉपी और कैप्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, इस तरह के काम भी आप कर सकती हैं। इसके बाद है ग्राफिक और यूआई यूएक्स डिज़ाइन। ये भी फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छा स्किल है। इसमें भी आपको फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त बहनों वीडियो एडिटिंग भी, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। इसमें भी आपको फ्रीलांसिंग के लिए अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। इसके बाद वेब डेवलपमेंट में भी आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। इसमें भी आप किसी कंपनी के डेवलपमेंट या डिज़ाइन के लिए भी आप इसमें काम कर सकती हैं। तो इस तरह से है। इसके बाद बहनों ये जो स्किल्स मैंने आपको बताया सिर्फ यही जरूरी नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि आपको कोडिंग आती है, यदि आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, या फिर आपको एड चलाना आता है, या फिर आपको ईमेल मार्केटिंग आती है, या फिर आपको कोई भी इसके अतिरिक्त स्किल्स आती है, तो आप उसे चूज़ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। बहनों अब बात करते हैं कि हमने स्किल्स तो चूज कर लिया, अब आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट चाहिए। इसमें आप जिस भी शहर में रहती हैं वहाँ जैसे कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर कोई भी बिजनेस है जहाँ आपकी स्किल्स की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाकर बात करके उनसे किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट लीजिए। इस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं और अगर उन्हें अच्छे से काम करके देंगी तो आप तो वह आपसे काम भी लेते रहेंगे और इसके साथ ही साथ आपकी इनकम भी अच्छी आती रहेगी। इसके अतिरिक्त और भी फ्रीलांसिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें यूज़ करके आप अच्छी खासी पैसों की अर्निंग कर सकती हैं। बहनों इस चर्चा के बाद हम चलते हैं एक और चर्चा की ओर जिसका विषय है सुरक्षित परिवार, सशक्त समुदाय, नशा मुक्त भारत का यही उपाय। बहनों ये एक अत्यंत प्रेरणादायक संदेश है जो यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक नशे की बुराई को यदि जड़ से खत्म करना है तो इसकी शुरुआत घर और समाज से होती है। बहनों हम सभी जानते हैं कि नशा को नाश का द्वार कहा गया है। चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, नशा पान से आत्मनियंत्रण की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और सोचने समझने की क्षमता भी कम होती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां शरीर में घर बना लेती है और जिससे हमारा परिवार और समाज दोनों प्रभावित होता है। बहनों नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए करने में हमारे समुदाय की भागीदारी और परिवार की भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बहनों परिवार ही एक बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ पर प्रथम शिक्षक उसके माता पिता व परिजन होते हैं। और हर माता पिता को अपने बच्चे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, अपने बच्चे के साथ स्वयं हम उम्र जैसा व्यवहार करें, आप उन्हें अच्छी शिक्षा दें, उन्हें समझें ताकि वे किसी भी दबाव या तनाव में आकर नशे को के रास्ते को ना अपनाएं और सही रास्ते पर जाएं और अपना एक अच्छा भविष्य बनाएं। इसके अतिरिक्त बहनों यदि परिवार में किसी को नशापान की आदत हो तो पूरे समुदाय को बिना किसी भेदभाव के मदद करना चाहिए, परामर्श देना चाहिए। बहनों सामुदायिक समर्थन से भी नशे के शिकार लोगों को सही राह मिल सकती है। बहनों लोगों को नशा से मुक्त कराने के लिए सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत देश भर में जागरूकता अभियान, परामर्श केंद्र और पुनर्वास केंद्र संचालित किए जाते हैं। बहनों इस राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा बनने के लिए आप भी नशा मुक्त भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। तो इस तरह से बहनों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहनों अब हम चलते हैं अगले पत्र की श्रृंखला की ओर। अगला पत्र हमने लिया है गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, और पत्र भेजने वाली हैं मोतीन बाई मानिकपुरी, धनवंतरी बाई, योगिता बाई मानिकपुरी, और आप लोगों ने गीत की फरमाइश की है फिल्म हम है रही प्यार होगा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता विहार FM 107 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। एक नजर हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, कल सुबह 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समन्वित सामुदायिक योग प्रदर्शन का सीधा प्रसारण। 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस भाग 49 और देशगान का समय होगा 6:50 पर। संस्कृत और हिंदी में समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः 6:55 पर और सुबह 7 बजे कार्यक्रम चित्र पर संगीत 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का प्रसारण होगा 7:35 पर। विषय होगा करे योग रहे निरोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर सुनिएगा 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00 मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम 9:00 और 9:10 पर सुनिएगा पाठ का 6वां भाग प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। और 9:25 पर विविध भारती कार्यक्रम सुनिएगा। 10:00 9:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 10:10 पर सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष भेंट वार्ता। सुगम संगीत 10:20 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम 11:00 और प्रादेशिक समाचार 11:55 पर आकाशवाणी की रायपुर केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। विविध भारती कार्यक्रम के साथ आप बने रहेंगे 12:00 से शाम 5:00 तक रोज की तरह प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 5:00 और भजन संध्या भक्ति संगीत का कार्यक्रम 5:10 पर। चित्र पट संगीत 5:30 पर। हिंदी में समाचार संध्या 6:00। जिले की चिट्ठी 6:05 पर। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:20 पर। 6:30 पर सुनिएगा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 का सीधा प्रसारण। प्रादेशिक समाचार 6:45 पर। समाचार प्रभात समाचार संध्या क्षमा करेंगे 8:45 पर। रात्रि में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 ये प्रसारण जारी रहेगा। 10:45 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी और हिंदी में समाचार होगा रात्रि 11:00। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
2: अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब आप सुन सकेंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री अबले कुछ एक देर में पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के 23वां किश्त जारी करी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाही और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कुतिले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ले कुछ एक देर बाद पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के तारकेश्वर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। एकर तहत देश के 9,44,00,000 किसान मन के बैंक खाता में 18,880 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि सीधा भेजे जाही। ये योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 ले ज्यादा किसान मन के बैंक खाता में 490,54,00,000 रुपया ले ज्यादा के राशि के अंतरण करे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा काली नई दिल्ली में रखे गए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपया के प्रोत्साहन राशि के वितरण करी। ए मौका में प्रधानमंत्री हा कहिन की 21वीं सदी में अवसर उही देश के होही जेन कुशल प्रतिभा मन के पोषण करी, नवाचार ला बढ़ावा दही और गुणवत्ता के ऊंचा मानक ला बनाए रखी। श्री मोदी हा कहिन है कि अवैया बछर में भारत के युवा मन दुनिया के विकास, नवाचार और उद्यमिता ला तेजी ले बढ़ाए में आगू होही। ए योजना पर पहली पैत रोजगार पाने वाला कर्मचारी मन ला 15,000 रुपया तक के प्रोत्साहन दे जावत है और अतकाहा रोजगार देने वाला नियोक्ता मन ला हर अतिरिक्त कर्मचारी ऊपर हर महीना 3,000 रुपया के प्रोत्साहन दे जावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र में NDA सरकार के 12 बचर पूरा होए के मौका में प्रदेश में आने आने जगह में योजना मन के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर के आयोजन करे जावत है। यही कड़ी में दुर्ग में रखे गए कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ह शामिल होइस। कार्यक्रम ला संबोधित करत हुए श्री उइके ह कहिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश हा विकास और विरासत के संरक्षण के दिशा में बड़का प्रगति करे है। ओमन कहिन की केंद्र सरकार हा समाज के आखिरी मनखे के विकास ला ध्यान में राखत हुए कई ठिन जन कल्याणकारी योजना लागू करे है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार समेत अब्बड़ अकन जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मन शामिल रहिन। बाद में पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके हकीन की केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के संग चलाए जावत योजना के सकारात्मक प्रभाव ले आज लोगन के जिंदगी में बदलाव आए हैं। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही। ए बछर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखे गए है। एकर बार प्रदेश में तैयारी पूरा कर ले गए है। राज्यपाल रमीन डेका हा राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम के मुख्य पहुना हुई। उहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगुवाई में सरगुजा जिला में बिहनिया 7 बजे सामूहिक योग अभ्यास हुई। एक कार्यक्रम के अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू हा बिलासपुर में, उप मुख्यमंत्री अरुण साव हा दुर्ग में, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम में और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौका में होइया कार्यक्रम के मुख्य पहुना होही। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मन के प्रशिक्षण शिविर आज ले रायपुर जिला के अभनपुर में शुरू हुए है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पत्रकार मन ले गोट बात करत हुए बताइन कि ए शिविर में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट शामिल होइन है। उन्हें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी घलो इस शिविर में शामिल होही। शिविर में जिला अध्यक्ष मल्ला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग कोती ले प्रशिक्षण दे जावत है। संगे संग विषय विशेषज्ञ मन कोती ले हाल फिलहाल के विषय ऊपर जानकारी घलो दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
4: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
3: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA कोती ले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में NEET UG के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जाही। एकर बर सुरक्षा के कड़ा व्यवस्था करे गए है। परीक्षा मझनिया 2 बजे ले संझा 5:15 तक होही। परीक्षार्थी मल्ला बिहनिया 11 बजे ले मझनिया 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होही। एकर बाद अवैया कोनो भी अभ्यर्थी ला भीतर नहीं करे जाही। NTA NEET UG के पुनर्परीक्षा देवैया उम्मीदवार मन बर एक ठीन आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू करे है। NTA बताई से कि सबो आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश सिर्फ सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम ले ही भेजे जाही। एति रायपुर जिला में नीट परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन बर जिला प्रशासन और NTA जरूरी तैयारी पूरा कर ले है। जिला नोडल अधिकारी और कोऑर्डिनेटर लक्ष्मी सिंह बताइन कि जिला में 25 केंद्र बनाए गए है। ओमन परीक्षार्थी मल्ले बेरा ले पहली परीक्षा केंद्र पहुंचे के अपील करे है। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नीट परीक्षा के परीक्षार्थी मन के सुविधा बर विशेष रेल सेवा के व्यवस्था करे है। रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद बताइन कि रेलवे कोती ले कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेन आज और कल चलाए जाही। एकर अलावा हसदेव एक्सप्रेस के अस्थायी विस्तार दुर्ग स्टेशन तक करे गए है। NTA NEET UG दोबारा परीक्षा ले पहली मानक तैयारी के निरीक्षण पर आज देश भर में मॉक ड्रिल करिस। इही कड़ी में रायपुर समेत प्रदेश के आने आने परीक्षा केंद्र में मॉक ड्रिल करे गेस। प्रदेश में लैका मन के शुरुआती शिक्षा ला व्यवस्थित करे के उद्देश्य ले विद्यारंभ अभियान चलाए जावत है। एकर तहत आंगनबाड़ी केंद्र में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरा करैया 6 बच्छर के लैका मन ला विद्यारंभ प्रमाण पत्र दे के स्कूल में भर्ती करे जावत है। ए पहल के उद्देश्य लैका मन के जीवन में शिक्षा के नवा चरण के शुरुआत ला तिहार के रूप में मनाना और आंगनबाड़ी ले स्कूल तक के सफर ला सरल और सुघर बनाना है। बलौदा बाजार भाटापारा जिला में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू करे गए है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा अभियान के शुरुआत करत हुए कहिन कि स्वस्थ लैका ही देश के मजबूत भविष्य है। अभियान में जिला के 9000 कुपोषित लैका मल्ला 6 महीना तक हफ्ता में 6 दिन पौष्टिक लाड़ू दे जाही। जेखर निर्माण महिला स्व सहायता समूह करही। लैका मन के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल के व्यवस्था घलो करे गए है। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संजा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करही। ए दारी के अंक मा आप मन कोरबा जिला के बारे में जानकारी सुनिहा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए गए है। महिला और बाल विकास विभाग प्रदेश के प्रतिभाशाली लैका मन ले ए राष्ट्रीय पुरस्कार बर आवेदन करे के अपील करे है। ए पुरस्कार 5 ले 18 बच्छर के ओ लैका मन ला दे जाते जे मन बहादुरी सामाजिक सेवा पर्यावरण ला बचाए खेल कला संस्कृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसन क्षेत्र में सुघर उपलब्धि हासिल करे है। आवेदन सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम ले स्वीकार करे जही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। प्रधानमंत्री अबले कुछ एक देर में पश्चिम बंगाल ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के 23वां किस्त जारी करी। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली 21 जून के 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जही। औ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कोतीले काली 21 जून के छत्तीसगढ़ समेत देश भर के आने आने परीक्षा केंद्र में नीट यूजी के पुनर्परीक्षा के आयोजन करे जही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इही सिरावत है। जय जोहार।
1: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए येसुदास की आवाज में रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत। उन्हीं के संगीत निर्देशन में फिल्म का नाम है बाबुल।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,

0: देश की सुरीली धड़कन,
1: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
0: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
0: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
0: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
0: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
0: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली,
6: ये सुनते हैं मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में, फिल्म का नाम है आग और शोला।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय

0: हुआ था 1818 में। यदि आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal ki Hugli jail mein Gopal Chandra Dhar namak ek vyakti Bande Mataram geet Desh Mallar dhun mein gaya tha. Aur maine bola ki 1871 mein geet ka parikalpana Murshidabad jail mein hua. Bande Mataram hamara garv hai, Swadesh ko aage badhane ke liye ye geet har waqt hamara adarsh hoga. Rabindranath टैगर ने उनकी घरे बायरे नमक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्रनाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24,52,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 490 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के कुनकुरी के सलिया टोली स्थित आत्मानंद स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय

0: योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। इसके लिए प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्यपाल रमन डे का राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में सरगुजा जिले में सुबह 7 बजे सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव दुर्ग, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कबीरधाम और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी आयोजित होने वाले योग कार्यक्रमों में मंत्री, सांसद और विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस बीच आज केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर द्वारा हाट कचौरा में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा कल 21 जून को छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद आने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। एनटीए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया गया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके स्थापित सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए विशेष रेल सेवाओं की व्यवस्था की है। रायपुर रेल मंडल प्रबंधक दयानंद ने बताया कि रेलवे द्वारा कोरबा दुर्ग कोरबा के बीच मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज और कल किया जाएगा। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस का अस्थायी विस्तार दुर्ग तक किया गया है।
1: देखिए, जो नीट का एग्जामिनेशन हो रहा है, इस बार इसके लिए विशेष तैयारी की है हम लोगों ने। एक तो स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो आज और कल दोनों दिन चलेगी, जो कोरबा से दुर्ग और दुर्ग से कोरबा, ये मेमू हम लोग चला रहे हैं छात्र स्पेशल करके। दूसरा, जो हमारी कोरबा से रायपुर चलती है ट्रेन, उसको हम लोगों ने दुर्ग तक एक्सटेंड किया है ताकि जो दुर्ग बिलाई जाने वाले लोग हैं उनको इस ट्रेन से लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो दल्ली रजारा सेक्शन है जो मेमू चलती है वो 12 को से चलाएंगे फॉर एग्जामिनेशन। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग स्टेशन में स्पेशल अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। मे आई हेल्प यू बूथ मैन्ड रहेंगे और जितने सेंटर की जानकारी है, कहाँ सेंटर पड़ेगा, कैसे जाएंगे, ये सारी जानकारी मे आई हेल्प यू बूथ से एग्जामिनी है वो ले रहे हैं।
0: इस बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योजनाओं के प्रचार प्रसार और पंजीयन शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उइके ने कहा कि केंद्र सरकार की सेवा, सुशासन, विकास और विश्वास के मंत्र के साथ संचालित योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव से आज लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: इन 12 वर्षों की जो विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति का जो लेखा जोखा है, ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाए, सेवा, सुशासन और विकास, विश्वास को लेकर जो जनकल्याणकारी योजनाएं आज पूरे देश के अंदर व्यक्ति व्यक्ति के चेहरे पे जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है, राष्ट्र ने विकास की दिशा में जो करवट बदली है, वैश्विक पटल पर राष्ट्र का जो वैभव बढ़ा है, राष्ट्र की आंतरिक स्थितियां और राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाएं जिस तरह से सुरक्षित है, आज इन सभी विषयों को लेकर आज का ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन था।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से रायपुर जिले के अभनपुर में शुरू हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस शिविर में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट शामिल हुए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल इस शिविर में शामिल होंगे। शिविर में जिला अध्यक्षों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा समसामयिक विषयों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से विद्यारंभ अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूरी कर चुके 6 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यारंभ प्रमाण पत्र प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के जीवन में शिक्षा के नए चरण की शुरुआत को उत्सव के रूप में मनाना तथा आंगनबाड़ी से विद्यालय तक के सफर को सहज और सुगम बनाना है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कुपोषण के खिलाफ सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ बच्चे ही देश का मजबूत भविष्य हैं। अभियान के तहत जिले के 9,000 कुपोषित बच्चों को 6 माह तक सप्ताह में 6 दिन पौष्टिक लड्डू दिए जाएंगे। इन लड्डुओं का निर्माण महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल की भी व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के प्रतिभाशाली बच्चों से राष्ट्रीय सम्मान के लिए आवेदन करने की अपील की है। ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हों। आवेदन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के नेउरगांव खुर्द में भारत माता की प्रतिमा और शहीद स्मारक का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 का परिणाम घोषित कर दिया है। ये परीक्षा 2 मई को आयोजित की गई थी। विद्यार्थी अपना परिणाम मंडल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित आवास मेला के लक्की ड्रॉ विजेताओं की घोषणा 22 जून को की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सक्ती जिले के ग्राम सपोस में बिना वैध लाइसेंस के उर्वरक की बिक्री कर रहे एक कृषि केंद्र में छापा मारकर करीब 800 बोरी उर्वरकों की बिक्री पर 21 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सूरजपुर जिले में प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैकोना में बीती रात एक मोटरसाइकिल ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के नगर पालिका अकलतरा में पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 4 घंटे तक चला प्रदर्शन अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्यपाल रायपुर और मुख्यमंत्री सरगुजा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एनटीए द्वारा कल छत्तीसगढ़ सहित देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर आज से अभनपुर में शुरू। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7 बजने को है प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में देव कोहली की लिखी हुई गीत, राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम बंधन से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहां से आए बदरा। आइए सुनते हैं चश्मे बद्दूर फिल्म का ये गीत येशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजों में। गीतकार हैं इंदु जैन और संगीतकार हैं राज कमल।

यशुदास और हेमंती शुक्ला के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी के बैठकी में जमो किसान संगी संगवारी मन ला धवल किशोर गुप्ता की राम राम जय जोहार। संगवारी हो आज की बैठकी में हम आप मन ले आज भेटा पर गए हन संगी हो आनी बानी के गोट करबो संग मा सुघर सुघर गीत गोविंद गला आप मला सुनाबो और संग मा संदेश गला हो ही और यही क्रम में थोकन जानबो आज की हमर बैठकी के गोट के विषय ला अब यही क्रम में संगवारी ही गोट करबू आज की हमार बात की जिन विषय है फसल की सफलता की पहली सीढ़ी है सही बीज का चुनाव बुआई एवं अंकुरण परीक्षण। संगवारी हो मौसम के हाल चाल जानबू संगे संग नसीहत में हमार गोट के विषय रही पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य कराएं। एक कृष्ण संगवारी हो आज की टिप में हमार गोट के विषय रही भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश वृक्षारोपण और एक संग आज के किसान के क्रम में हम आप मतलब सुनवाबू ग्राम चिटका कानी विकास खंड रायगढ़ के हमार कृषक संगवारी हैं सत्यानंद गुप्ता जी इमन बहुत बढ़िया आज अपन खेती किसानी में अग्रसित हुए हैं और ये मन डोड़का के खेती में बहुत ही आगे आज उन्नतशील किसान के रूप में इमला जानेगी से तसंग बारे हो ये मन के गोट लगला सुनबो और एक कृष्ण चर्चा के विषय रही ऑफिस हो या घर की जिम्मेदारी योग से पूरी होगी हर तैयारी। एक कृष्ण भैया हो गोट करबू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वां किस्त के जानकारी और संगे संग परंपरागत कृषि विकास योजना विश्व प्रवासी शरणार्थी दिवस में घलक उठाबू और एक ठन अव हमर गोट के विषय रही लेजर लेवलर तकनीक खेत बचाओ अभियान एक एकर विषय में घलक गोट कर तसंगबारी ये तो होगी आज के हमर गोट के विषय। अब शुरुआत करबो कि आज के हमर देखबो संगबारी हो मौसम के हाल चाल में तब यह मौसम देख बिहना बतले परछराहा दिखे है और अब मौसम थोड़े से करवट बदले है और कोनो कोनो गोतियंग घुड़ूर घाड़र करत है और लागत है कि पानी अब मौसम देखा धीरे धीरे सक्रिय अभी अब होए पर धरे है लेकिन सबो गोतियंग देखा कोनो कोनो गोतियंग बढ़िया ढंग के बारिश और फटकारा थे और कोई कोई अंग देखबो संगवारी हो तो अभी घला हमार पसीना चुहचुहा थे यानी आज घला हम तर बतर हो जाथन ऐसे गर्मी में हमार हाल बेहाल ही तो संगवारी वो देखा मौसम धीरे धीरे धीरे धीरे अपन परिवर्तन ला लात है लेकिन हमला घला अपन के बूता काम सबो ला हमार अनुसार मा परिवर्तन ला देखना पड़ी कि हम अपन खेती किसानी ला कौन बतर मा करबो कैसे करबो और खेती किसानी के हमार करा अभी वर्तमान मा हमला का उपाय करना ही तो यहू ला घला संगवारी हूँ हमला चेत रखना पड़ी जानकारी हमला रखना पड़ी और अब प्रयास करबो कि हमार तैयारी ला बिल्कुल शीघ्र यानी पानी अब बहुत ही नज़दीक आगे है अब पानी आए के बाद मा लगातार बारिश की हमार जिन बताए जाते मौसम विभाग के अनुसार मा पानी आए के बाद मा लगातार बारिश हो ही यानी खेती किसानी के बूता हर बिल्कुल भरा जा ही तो ये ला देखत हमला अपन के ये बूता काम ला धरा छपका करबू तभी बनी और कर अगवा के हमला करना है तो ये तो होगी संगवारी हो मौसम के हाल चाल। अब शुरुआत करबू आज के हमार बात के जिन गोट है फसल की सफलता की पहली सीढ़ी सही बीज का चुनाव बुआई पूर्व अंकुरण परीक्षण। संगवारी हो ये बात हम घड़ी घड़ी हर बैठकी माँ आप मान ली ये चीज ला हम जानकारी देते रहन ताकि आप किसान संगवारी हो ये चीज ला जानकारी राख करके अपन खेती किसानी में अमल करो। संगी हो देखा खेती किसानी जतका चेत करके करबो जतका बढ़िया करबो तो उतका हमला लाभ मिल ही अगर हिम्मत होकन भी हम लापरवाही करें या चेत नहीं करबो तो एकर ले हमला नुकसान हो सकत है। तो भैया वो पहली सफलता की जन सीढ़ी बताएगी से कि कोई भी फसल हम लगाते हैं तो ओमा बीज के चयन ला हमला बिल्कुल सही रूप में करना ही बीज के चयन ऐसे करी कि हमार खेती किसानी चोखा होए ये माँ धोखा झन होए। भैया वो एक बार अगर हमला धोखा होगी तो हमार बखत गलत खत्म होगी हमार
एकर संग हमर जेन फसल तो चौपट होही संग मा एकर पैदावार घला खत्म होगे काबर बखत पर आगे तो बाद मा फिर दोबारा घला हम बोई करबो तहू ले घला हमर ओ जेन खेती के पैदावार हमला पाना चाहिए ओला हम नहीं पा सकन। तब यो देखा एकर बर हमला का करना ही कोई भी एक तो प्रमाणित बीज के हम उपयोग करें अब इला हम जानी पहचाने कि ये बीज कैसे है अगर प्रमाणित है तो इला कतका संगवारी लगाए हैं और लगाए हैं तो मन के उपज कैसे हुए है यही लगल हम देखें एक से हम चेत करें कि ओकर पैदावार कैसे है फसल कतका मात्रा में आवत है एकड़ में कतका आवत है ये माँ का जिनिस एकर जिन क्षमता है वो हिसाब में हमला का जिनिस ये माँ डालना है का ला कम करना है कतका फसल है संगवारी जेमा रासायनिक खाद थोकन अगर ज़्यादा हो जाते तो भी नुकसान करते कम होते तो भी पैदावार नहीं आ सके तो ये सब ला हमला ध्यान में राखत भैया वो प्रयास करबो कि जिन भी फसल हम लगात हन ओकर जिन बीज के चुनाव है ये ला हम बहुत ही परीक्षण करके करी जान के करी और संगे संग एकर अब एक हमला विशेष ध्यान रखना है जिन भी हम अभी बुआई करबो कतका संगवारी धान के अभी बुआई करी तो जिन भी हम फसल लगात हन धान होए चाहे हमार खेती किसान कतका संगवारी दलहनी भी लगाही एक जैसा टिकरा वाला फसल भी हो ही यानी बरसात के जतका भी किस्म के अभी खेती करही तो ये फसल के बीज के चयन हम करे के बाद में वो बीज ला हमला अंकुरण करा करके ही देखना है यानी थोकन बीज हम ले ली और ओला एक सूती के कपड़ा में हमला बांध देना है और बांध करके संगवारी हो एक पानी के जिन जगह में बालू थोड़े कन ही वो जगह में बालू ऊपर में पानी दे देना है और ओकर भीतर में ये सूती के कपड़ा में बांध करके पोटली बांध के इला वहाँ रख देना है और थोकन पानी के हम छिड़काव कर दी भैया हो देखबो कि ज़्यादा नहीं उहर 20 से 21 दिन वो तो धान के रही तो जाना था 3 से 4 दिन में ओकर गाली आ जाते अगर बाकी बीज है कोई 11 दिन में भी आई कोई हर 20 से 21 दिन में भी आते तो ये सब ला हमला तुरंत ही हमला जानना है और अंकुरण ला देखना है कि एकर अंकुरण क्षमता ठीक है कि नहीं है अगर बीज के अंकुरण नहीं हुआ थे मूसी गाली नहीं आते तो आप मन जान लेवा कि बीज खराब है और ये ला अगर हम बुआई करत हन तो एकर ले हमला नुकसान हो सकत है तो संगवारी हो ये ला हमला चेत रखना है ये ला हमला ध्यान में हम राखबो तभी जाकर के हमार खेती किसानी में हमला सही लाभ मिले सकी और तभी जाकर के हम सही लाभ पाए सकबू तो संगवारी हो ये तो रही आज के हमार गोट के विषय जिन आज की बात में हम गोट करें और ये ला आप मन ध्यान रखा अब का ये खेती किसानी के हमार बूता काम हर भराय में है तो एकर बर हमला इला ध्यान रखना है अब पहली सफलता के सीढ़ी है संगवारी हो ये माँ बहुत बढ़िया हमला बुआई करे के पहली बीज के हम बढ़िया चुनाव करी और एकर अंकुरण क्षमता लगला हमला पहली हमला जानकारी ले लेना है तो संगवारी हो एक संग अब बखत कहते आज के हमार जिन कृषक प्रश्न मंच है संगवारी हो आज के कृषक प्रश्न मंच में हमार आज नोट कर लेव संगवारी हो आज के कृषक प्रश्न मंच में हम आज आप मतलब बता दें हमार प्रश्न है लेजर लेवलर तकनीक काला कहे जाती संगवारी हो इला अभी अगला हम गोट करबो ये माँ आप मतलब निश्चित रूप में एक जानकारी मिली अला सुन करके आप मन निश्चित रूप में एकर उत्तर आप मतलब लिख करके भेजिया हम आप मन के उत्तर लगला शामिल करबू और आप मन के जेन चिट्ठी रही ओहू लगला हम शामिल करके आप मन के उत्तर लगला पढ़बू संगवारी एक प्रश्न आओ आप मतलब दोहरा दी आज के हमार कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न ही लेजर लेवलर तकनीक काला कहे जाती भैया हो इला आप मन प्रश्न ला नोट कर ले हा उत्तर आप मतलब निश्चित रूप में मिल ही आप मन हमार ध्यान दे करके हमार जेन बैठकी है एला सुनत रही है तो एकर जानकारी घला मिल ही और आपो मन ला घला खेती किसानी में एकर जानकारी प्राप्त हुई तो संगवारी हूँ एक ठन सुन लेबो संदेश ओकर बाद फिर गोट करबू।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: हाँ, तो संगवारी वो देखा, ये तो रही से संदेश। एक संगवारी वो देखा, आज हम आज के किसान के गोट लगला हम सुन लेबो। अब आज हमर कर आज के किसान के क्रम में आज किसान है ग्राम चिटका कानी विकासखंड रायगढ़ के हमर कृषक संगवारी सत्यानंद गुप्ता जी। अब ये मन बहुत बढ़िया आज डोंडका के ये मन खेती ला अपनाइन है और डोंडका की खेती करके एमन बहुत बढ़िया उन्नत आज किसान के दर्जा पाए हैं। तो संगवारी हो, एमन के गोट ला सुन लेबो, ओकर बाद में फिर बैठकी के गोट करबो। संगवारी हो, प्रगतिशील किसान संगवारी के क्रम में हम आज पहुंचे हैं हमार किसान संगवारी ले भेंट करे बर ग्राम चिटका कानी। और यहाँ देखत है संगवारी हो, बहुत ही बढ़िया हमार कर बहुत जुनट्ठा किसान संगवारी हमार करा आज भेंट करे बर मिलिन है। और एमन बहुत बढ़िया आज गर्मी में एमन लगाए हैं डोंडका के खेती। और संगवारी को देखा था दिन प्रतिदिन डोंडका के भाव घला बढ़िया तेज है। एमन के जितका भी हमन देखा था ना आज डोंडका दिखा थे, तो आज चर्चा करबो कि डोंडका के खेती कैसे एमन करीन है और एमन ले जानबो कि एमन कतका एमन आज इनकम करत है और डोंडका के खेती में मतलब का लाभ है। भैया राम राम।
6: राम राम।
5: आप मन के नाम बताओ, आप मन के गांव के नाम बताओ।
6: मन नाम सत्यानंद है।
5: हाँ,
6: गांव के नाम चिटका कानी।
5: अच्छा, पूरा नाम का लिखा? सत्यानंद,
6: सत्यानंद गुप्ता लिखा।
5: सत्यानंद गुप्ता जी है ना। तो गुप्ता जी देखा, आप मन के बारी में आज हमन खड़े हैं ना, देखा था कि बहुत बढ़िया डोरका हर आज जोरदार यार मैंने दिखा थे। तो ये बतावा एक बार माटी के बतर कैसे करे बल लाग थे और बीजा ला कहाँ ले लाए रहे?
6: हाँ, तो माटी तो सूखा बतर से ओला जोताई करता
5: काम में करता जोताई लेगा
6: ट्रैक्टर में,
5: ट्रैक्टर में जोताई हाँ, कर देता। ठीक,
6: तीन बाह हाँ, चार बाह मस्त जोताई हो जाए।
5: हाँ हाँ हाँ।
6: उसके बाद क्यारी बनाए बल लागते।
5: अच्छा, क्यारी क्यारी करे बल लागते।
6: क्यारी कर
5: हाँ,
6: चार फीट में
5: हाँ,
6: पांच फीट में
5: ठीक,
6: ये वो नाली नाली बना देते।
5: हाँ हाँ हाँ हाँ।
6: उमे ताले चार चार फीट में माना ला कर सन।
5: अच्छा ठीक। हाँ हाँ हाँ हाँ।
6: हाँ। वो माना बनाए ले उसमें डीएपी।
5: अच्छा हाँ।
6: एक तो मुर्गी खाद।
5: अच्छा हाँ ठीक।
6: गोबर खाद।
5: गोबर खाद सब ला डाले बर पड़ते।
6: सब ला डाले बर पड़ते।
5: ठीक कर दे।
6: मिला के
5: मिला के। अच्छा, गड्ढा गड्ढा कर तो की होला वो नहीं लागे करे? नहीं,
6: वो तो राफा में वो डीएपी आओ जो गोबर खाद मुर्गी खाद सब ला संगारी।
5: अच्छा, सब ला मिला था।
6: सब ला मिला दे थो।
5: ठीक ठीक बढ़िया।
6: हाँ। मिला दे के
5: हाँ।
6: वो मैं तीन तीन थी बीजा ला डाल था।
5: माने एक थी ये मैं तीन तीन थी।
6: तीन तीन थी।
5: अच्छा ठीक बढ़िया। कते कते दूरी आए
6: लगभग? पांच फीट में एक मांदा।
5: पांच फीट में एक मांदा।
6: हाँ।
5: और जो मांदा जो लगा था तीन तीन थी बीजा
6: हाँ।
5: ओकर दूरी लगा था राख था दूरी वाला?
6: वो तो पांच फीट के।
5: अच्छा,
6: पांच पांच फीट के क्या?
5: पांच पांच फीट के गोटे गोटे क्यारी। ठीक।
6: हाँ, तो पांच हाँ। पांच फीट में बना तो मैं का हो ही बता देता।
5: हाँ, हाँ, हाँ।
6: वो मैं बीज ला जैसे कि जगा देबो।
5: हाँ, हाँ।
6: जतन करके
5: हाँ, हाँ।
6: दुदी अंगुल के

0: छड़ा में वो माना के अंदर में एक ठनिया जगाना नहीं है।
1: अच्छा ठीक कहा, हाँ हाँ हाँ
0: हाँ, वो
1: बढ़िया।
0: माना में तीन तीन बीजा जो डालबो,
1: हाँ हाँ
0: तीनों दिशा में तीन तीन आंगुल छोड़ के,
1: छोड़ के बोला तीन तीन आंगुल के। हाँ ये लो बढ़िया बतावा, ठीक
0: वहाँ जगाबो ना,
1: हाँ हाँ
0: तो एक कट्ठा हो जाए तो पेड़ नहीं होए।
1: बढ़िया, हाँ हाँ हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: तो बोला तीन तीन आंगुल छोड़ के वो हर मन्ना में जतन करके जगा देबो,
1: हाँ हाँ हाँ
0: आ उसमें वो मन्ना में पैरा ला ढाकबो।
1: ढाकबो और पानी ला वही बखत फिर पोलाए बर पड़ते।
0: हाँ तो पुला दे ले नहीं होए, वो मैं माना माना देने
1: ठीक
0: देवर
1: कहा,
0: पर
1: शुरू
0: थे
1: जामत तक ले
0: जामत तक
1: इला
0: ले।
1: बहुत बढ़िया बतावा। कई जन का करते हैं कि
0: हाँ
1: सीधा पानी ला एकदम डाल देते हैं सर रहूँ।
0: हाँ नहीं तो मैं
1: ठीक
0: नहीं
1: कहा,
0: हो जाम पाए।
1: ठीक कहा, मैं बढ़िया से। हाँ हाँ
0: हाँ बोले माना माना दे
1: माना
0: दियो।
1: माना देना है जब तक वो नहीं निकली,
0: हाँ तो एक हफ्ता के अंदर में निकल जाही
1: निकल
0: वो।
1: जाए। ठीक हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: एक हफ्ता में निकल जाही। आओ जैसे कि मांग महीना से लगा हा
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो 1.5 महीना में वो फर चालू हो जाही।
1: चालू। अच्छा अभी जो ना आप मन के लगे एला कौन महीना लगा रहा।
0: ये हमन मक्सीर में लगा हन,
1: ठीक कहा, ठीक। हाँ
0: मक्सीर में लगा ले वो शीत के समय रहते,
1: रहते, हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: मैं रेट मिलते लेकिन
1: बढ़िया,
0: 2 महीना के बाद में वो मैं फल रहते थे।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: मांग में लगा तो 1.5 महीना में हो जाते
1: बढ़िया, हाँ हाँ हाँ
0: ना। तो ऐसे प्रकार के हम जो कमात हैं
1: हाँ हाँ
0: जब मक्सीर में लगाबो तो फागुन के 15 दिन जही निकल जही,
1: निकल जाइए। हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मैं ओकर रेट मिल जाते हम अल्लाह थोक रेट में 60 रुपया।
1: अच्छा ठीक बढ़िया, हाँ हाँ हाँ
0: 60 रुपया ले कम में नहीं मिले,
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओमन चिल्लर
1: हाँ
0: बेचने वाला 80 रुपया 100 रुपया बेचते
1: बिल्कुल सही है, हाँ हाँ
0: हैं।
1: हाँ
0: अब मांग महीना जब लगाबो वो तो चैत के 15 दिन में निकल
1: निकल
0: जाही,
1: ही अभी जैसे लगी से कहा
0: अभी जैसे
1: लगी
0: लगे
1: से
0: से
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: हाँ हाँ
0: तो मैं 40 और 50 रुपया थोक के रेट मिलते
1: जहियो में बिल्कुल, हाँ
0: हैं,
1: हाँ हाँ
0: और ज्यादा भीड़ हो जाए तो 30 रुपया ले कम में नहीं आए
1: नहीं आयो है।
0: हैं।
1: ठीक
0: तो कम से कम 200 मन्ना जगा दियो
1: हाँ हाँ
0: तो 200 मन्ना में कम से कम वो में ना 1 क्विंटल आराम से
1: तो
0: निकली।
1: एला ये बतावत गुप्ता जी कि जे ना भी ढोंडका लगा है एकर बर कई संगवारी में जमीनत में होन देते हैं और जैसे आप मन एकर बर माचा के व्यवस्था एला करे रहता।
0: हाँ तो ये ऐसे है ना, वो जो 5 फीट में जो जगह
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: 5 फीट में क्यारी बना बना के जगह लाइन लाइन,
1: लाइन लाइन
0: तो
1: एक
0: मैं
1: सिद्धांत में कहा।
0: हाँ एक सिद्धांत में
1: ठीक
0: सीधा सीधा
1: हाँ
0: तो मैं ढेकरा लागी
1: ठीक
0: है। ढेकरा के चलते अभी जाली आते
1: जाली आते बढ़िया सीधा
0: है,
1: वाला जाली मार दे बारे।
0: जाली मारे बड़े
1: ठीक कहा, हाँ
0: मान
1: हाँ
0: ले एक जैसे कि 10 मन्ना में
1: हाँ
0: 3 ठो गेड़ा टाइप के गड़ियाना है,
1: गड़ियाना है। ठीक
0: 3 ठो,
1: हाँ
0: तो उसमें जाल बिछा दियो
1: जाल
0: तीनों में,
1: बिछाओ
0: वो
1: पूरा तार लगा के
0: तार
1: कहा
0: लगा के है।
1: बिल्कुल तकड़ा वाला
0: हाँ
1: तार रही आजकल सब
0: तो
1: बहुत
0: उसे
1: बढ़िया सुविधा
0: गौरी
1: है।
0: जो जाल में जो फैला थे
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: सीधा सीधा फर
1: तो
0: रहा है कि
1: इनमें बहुत बढ़िया अपना टोरे में भी सुविधा है
0: टोरे में भी
1: और
0: सुविधा
1: दूसरा
0: है,
1: इला हवा भी पाते बढ़िया ले
0: बढ़िया
1: तो नुकसान नहीं हुए
0: नुकसान
1: बढ़िया
0: नहीं
1: लम्बा
0: है,
1: लम्बा एकदम साबित निकला
0: साबित
1: थे
0: हुई।
1: बहुत
0: और
1: बढ़िया
0: साबित हो ले और महंगा चलते किलो प्रति 10 रुपया
1: बिल्कुल
0: ज्यादा हो
1: बिल्कुल।
0: जाते।
1: तो अच्छा ये बताओ
0: हाँ
1: पानी एमा कत कत गिने पोला था इला कत कत गिने पोला
0: ये
1: वोला आपके।
0: गर्मी महीना में ओले ओले पटावर लगते
1: हाँ हाँ हाँ
0: पलाय
1: हाँ
0: बर,
1: हाँ हाँ
0: मान ले ये 2 दिन के बाद में पानी पलाना जरूरी
1: जरूरी है मैं बहुत
0: है।
1: बढ़िया। हाँ हाँ हाँ
0: आओ जाड़ ठंडा महीना में 15 दिन में पलाय लेते
1: पला
0: वो थी।
1: बहुत। तो अभी ये बताओ गुप्ता जी हमारे रोग व्याधि के कुछ समस्या रहते कभी।
0: हाँ तो ला
1: हाँ
0: 505 ला हम छिटे करथन।
1: अच्छा ठीक है मान ले अगर कुछ बीमारी दिखते थे
0: हाँ
1: कीड़ा उड़ा लगते हैं
0: हाँ
1: आप।
0: तो 505 ला छिटे
1: ठीक
0: करथन।
1: हाँ अभी
0: हाँ
1: जैसे जो लगाए हैं तो ये हिसाब माँ गुप्ता जी हम आप ये आखिरी में आप जानना चाहबो कि एमा लगभग आप मतलब कतका दिन में निकलते और कतका कतका टोर था एमा।
0: इवन वो तो बता जो मान ले पहला शुरू तो
1: हाँ
0: मान ले
1: एक घा में तोड़
0: एक
1: था तो एक कुंटल निकल जाते।
0: घा में तो रिह जो
1: हाँ
0: तो 200 मन्ना जगह तो 1 क्विंटल
1: हाँ
0: हो ही
1: सीधा 1 कुंटल आए ना
0: है।
1: बहुत
0: आप
1: बढ़िया। हाँ
0: पहली पहली निकली तो
1: हाँ
0: 20 किलो 25 किलो निकली
1: शुरू
0: थी
1: शुरू में
0: शुरू
1: ठीक ठीक
0: शुरू
1: हाँ
0: में,
1: हाँ
0: आ
1: हाँ
0: जब वो ज्यादा हो जाए ना
1: हाँ हाँ
0: 200 मन्ना में 1 क्विंटल एक घा टोरिया,
1: बहुत बढ़िया।
0: हफ्ता में
1: हाँ हाँ हाँ
0: 2 बार टोलिया।
1: अच्छा हफ्ता में 2 दिन बाद बहुत
0: हाँ
1: बढ़िया माने
0: हाँ
1: सीधा हफ्ता में एक बार में अगर 1 कुंटल तोरेन तो
0: हाँ
1: हफ्ता में 2 क्विंटल
0: दो
1: का
0: क्विंटल हो
1: बहुत
0: ही
1: बढ़िया।
0: हाँ।
1: अब अगर भाव अगर
0: आओ
1: बढ़िया आते
0: हाँ
1: तो एमा हम निश्चित है कि बहुत ज्यादा एमा हमला लाभ
0: हाँ
1: मिली
0: हाँ लाभ
1: बढ़िया।
0: मिले। तो हफ्ता में 3 बार भी टोर थे,
1: ठीक। हाँ
0: वो
1: हाँ
0: कैसे टोर थे
1: हाँ
0: साइज साइज टोरे जानी हो।
1: बस साइज देख करके।
0: हाँ
1: ठीक कहा
0: तो वो साइज ला छोड़ते जहा
1: हाँ हाँ

0: रहत है घुमत है
1: हाँ हाँ
0: तेकर जरिए से
1: हाँ
0: कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए
1: करना चाहिए खेती ला माने मन
0: खेती
1: अपना
0: ला करना चाहिए
1: करना चाहिए। बहुत बढ़िया गुप्ता जी, आज
0: तो
1: आप मन के जानकारी
0: आप ना जब डोड़का खेती ला कर देत हो
1: हाँ हाँ
0: जतन यदि करत हो
1: हाँ हाँ
0: तो गए जी 6 महीना तक आप तुम फर दी
1: बहुत बढ़िया हाँ हाँ बहुत बढ़िया
0: 6 महीना तक आप तुम वृथा करे पर
1: नहीं लागे होते रही
0: होते रही।
1: तो आज आप मन ले देखा बारी मान भेट पड़े निश्चित है आप मन के गोटला सुन करके हम जतका किसान अभी सुन ही निश्चित डोड़का के खेती करी है मन और यह मन लाभ कमही। तो अतका सुघर जानकारी दे भर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय
0: राम राम जय जय।
1: हाँ तो संगवारी देखा कतका सुघर अभी हम किसान के गोट ला सुनेन और ऐसने ही हमार किसान संगवारी मन देखा आनी बानी की फसल लगावत हैं और ये मन कौन विधि ले लगावत हैं कैसे लगावत हैं ये सबों के जानकारी हम लेके आथन और आप मन तक हम पहुँचाथन इला साझा करथन संगी होता कि आप मन ला गला जानकारी मिले और आप मन घलो खेती मा आगे बढ़ सका और ज़्यादा ले ज़्यादा खेती किसानी करके आप मन गला एक उन्नतशील किसान के दर्जा पा सका। तो संगवारी हो ये तो होगी आज के हमार किसान के गोट एक सन एक ठन हम सुघर अकन एक लोकगीत एक ठन सुन लेबो ओकर बाद में फिर हमार बैठकी के गोट करबो।

हाँ तो संगवारी देख कतका सुघर गीत अभी हम सुने न तोर रूप गजब मोला मोही डारे। अब ये गीत में स्वर दे रहीन है भीखम धर्माकर के स्वर में रही से संगवारी हो ऐसा सुघर सुघर गीत होत रही। अब एक संग गोट करबो हमर नसीहत में ही पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करावे। संगवारी हो देखा अब पानी बरसा की आय की पहली अगर हमेला चेत नहीं करबो हमार खेती किसानी के मुख्य जेन व्यवसाय ही संगे संग जेन ला हम कथन कि पशु पालन है ना खेती किसानी के अभिन्न अंगे। संगवारी हो पशुपालन नहीं करबो तो हम खेती किसानी के घलो कल्पना नहीं कर सकन और बिना खेती किसानी के पशुपालन के घलो कल्पना नहीं कर सकन। तब यहो अगर पशुपालन हम करत हन तो पशु मन ला कैसे हम संक्रामक रोग यानी एक दूसर ले फैलने वाला रोग एक तो पशु ला अगर फैल गए तो इहर बार बार दूसर पशु तीसर पशु ऐसने करत करत सबो पशु में इहर फैल जाते और ऐसने घातक हो जाते कि जब होए बर धरते अब अगर संक्रामक फैल गए तो एक महामारी के रूप धर देते यानि पटापट एकदम जैसे कि एक अंगले चालू हो गए तो एकदम सिराज जाते हैं। और घातक रोग यानी ज़्यादा मात्रा में फैलिस तो संगवारी हो पशु मन ला हम बचा नहीं सकन तो एकर खातिर बर हम प्रयास करबो कि ऐसने घातक और संक्रामक रोग ले बचाए बर एमन ला टीकाकरण कराना हमला बहुत ही जरूरी है। भैया वो टीकाकरण बर अभी यह ठोको बतर रहती अब पानी गिरे के बाद माँ देखा माँ उल्हा उल्हा चारा आई और उल्हा चारा आए के बाद माँ इला अगर पशु मन खाते हैं तो एकर बाद माँ जिन पशु मन के देह रहते एमा परिवर्तन होते तो ये ला देखत हमला पहली ले ही अगर टीकाकरण करवा देतन तो संगवारी वो संक्रामक जैसने घातक रोग माँ पशु मन ला जिन होइया रहते कतका संगवारी आप मन पशुपालन करत है आप मन जानत हुई है कि ये मला गलघोटू के जिन प्रकोप रहते जिन ला HS कहे जाते हेमोरोजिक सेप्टिकेमिया के नाम से ला जाने जाते। अब भैया हो एकर जिन टीका है ये ला अगर हम लगा देते हैं तो पशु मन के गलघोटू बीमारी जिन बीमारी है गला ला पकड़ते और एकाएक गला में सूजन आ करके बड़ा बहुत बड़े सूजन आते पशु खा नहीं सके बिल्कुल जुगाली करे नहीं सके पशु के शरीर में बहुत बुखार रही अगर देखबो तो कांपे पर गला धरी और कान मन ला छुबो तो ठंडा लगी तो ये सब एकर जिन आप मन ला बताए जाते संगवारी ये हर एक लक्षण है ये लक्षण आते तो जाना कि ये ला पशुला जो है ये गलघोटू के शिकायत है कर बीमारी हो गई। अगर तुरंत हम 24 घंटा के भीतर माँ पशुला अगर

हम इलाज नहीं करवा पाथन तो संगवारी हो निश्चित पशु के मौत हो जाते। तो ये ला देखत हम प्रयास करबो कि ऐसने जिन संक्रामक रोग है एक वायरस मन के माध्यम ले या तुरंत या गला ला पहुंचते और माने यह तुरंत पशु के शरीर में आक्रामक हो जाती। अब पशु के बहुत ही जल्दी अब सोच सकत है कतका फैलावे कि 24 घंटा के भीतरी में पशु के मौत हो जाते। तो ये ला देखत भैया हो हम प्रयास करी कि ऐसे संक्रामक रोग मान ले अगर हमला रक्षा करना ही पशु मन ला बचाना ही तो एकर बा टीकाकरण हमला बहुत ही जरूरी है। अभी तुरंत हमला टीकाकरण करवा लेना है। एक भैया वो देखा बीक्यू ब्लैक क्वार्टर जिन लंगड़ी के रोग कहे जाते। लंगड़ी रोग यानी पशु मन लंगड़ा बर धरते। कभू कभू देखिए ओहर अचानक इहर बुखार आते पशु मन ला बुखार आए के बाद मा पैर जो है एक टंगिया के रोग घले लगा था। लंगड़ी रोग या एक टंगिया रोग एक ठो टांग ला खींच दी ही और लंगड़ा के चले पशु चले ही नहीं सके। अब बाद में अगर हम इला अगर देखा था का कर देथन तो भैया पशु के गोड़ में सूजन हो जाते और सूजन होए के बाद में फिर ओला चीरा लगाए बर पड़ते और चीरा लगा के ओला घाव टाइप में ओला सुखाना पड़ते। तो भैया पशु के कतका नहीं कतका परेशानी है। पशु पूरा कमजोर हो जाते और काम के लायक नहीं रह जाए। तो भैया यहू और एक बहुत ही खतरनाक और संक्रामक रोग है। तो यहू ला बचाए बर आज टीकाकरण एकर आगे है। तो यहू टीकाकरण ला हम अलग करवा लेना है। एक रसम भैया हो देखा ये हो गया आप मन के गलघोटू हो गए ये लंगड़ी के रोग हो गए और एक संग और एक ठन ये खुरहा चपका के रोग गला देखा। जैसे जैसे अभी पशु मन अभी बरसात के बखत मा ये मन आनी बानी के जगह ला इमन ठौर मन ला जाही और जाए के बाद मा मन के पैर गीला होते। गीला होए के बाद मा कई किस्म के जीव छोटे छोटे जीव रहते हैं जिन मन पनपे पर धरते हैं। अब यही यार रोग के कारक बन जाते हैं विषाणु मन के कारक हो जाते हैं। अब भैया वो जब उमन के पैर में ज़्यादा मात्रा में गीला होते तो एकर ले ये मतलब खुरहा चपका गला दोनों होए के संभावना हो जाते। तो एक रूप पर गला टीकाकरण हमला करवाना है और एकर पर आपन ध्यान रखा कि टीकाकरण ला सही वक्त में हम करवाबो तभी जा करके काम करते। अगर समय चूक जाते और कराबो तो एकर ले हमला कोनो लाभ नहीं मिल सके। तो भैया हो आप मन ऐसने जतका भी संक्रामक रोग मन है तो एकर ले पशु ला अगर बचाना ही तो टीकाकरण हमला कराना बहुत ही जरूरी है। आप मन टीकाकरण अगर पशु मला नहीं कराए हैं तो अभी के वक्त माँ बरसात के पहली अब बरसात तो अब चालू हो गए समझा लेकिन कतका संगवारी अभी देखा थे कोनो कोनो अंग वर्षा नहीं हुई और कतका अंग चालू हो गए। तो आप मन अभी के वक्त में घला जिन पशु मला टीकाकरण नहीं लगे है तो संगवारी सबो बूता काम ला छोड़ करके आप मन ये टीकाकरण ला कराओ और पशु मन ला ये संक्रामक रोग ले बचावा। तो संगवारी हो देखा ये तो हो गए हमार नसीहत के कोट। एक संग एक ठन संदेश चला और सुन लेबो ओकर बाद में फिर गोट करबो।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ, संगवारी देखा ये हो गए संदेश और एक संग फिर गोट करबो। आज के टिप में हमार गोट के विषय है भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश वृक्षारोपण। संगवारी देखा हमला निवेश करना ही तो ये बहुत ही बढ़िया साधन है कि अगर हम वृक्षारोपण में अगर हम अपन के लागत लगा देथन और ये में एक बार अगर आज निवेश अगर लगाथन तो संगवारी हो अवैया 10 साल में कतका नि कतका हमला एकर ले लाभ मिल सकत है। भैया वो आज ऐसने ऐसने माने पौधा ही जैसने माहुगनी के पौधा संगवारी वो माहुगनी आज अतका कीमती पौधा ही अगर एला एक बार आप लगावत हो तो सबसे ज़्यादा यार इमारती में सबसे कीमती लकड़ी माना गई से। और जैसे शीशम के है, ये मां सागौन के है, तो ये सब बोला।

0: एक बार अगर हम लगा लेते हैं तो संगवारियों निश्चित 10 साल के बाद माँ नीलगिरी है, नीलगिरी घर कतका आज दवा बना थे, एकर बीज ले तेल निकला थे, अब आनी बानी की दवा औषधि ये सब बनाए जाते तो एकर मांग आज ज्यादा रूप में ही। तो भैया हो अगर हमारा निवेश करना है तो हम ऐसे चीज में हम निवेश करी कि ओहर अवैया बखत में हमला बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओकर ले हमला लाभ मिले। अब भैया हो अगर हम निवेश ऐसने ऐसने जगह में करत हैं जेमा हमला कतका संगवारी आज जेमला जानकारी नहीं है, अगर एक बार कहीं ले भी हमला पैसा मिल जाते तो संगवारी कहीं भी हो रुपया पैसा ले हमें लगा दे थे, ये मतलब पता नहीं है कि ये कंपनी कैसे है का है। अब भैया वो देखा था कि वो कंपनी ही डूब गई, अब वो चल दे ओकर बाद में फिर हम धरे रह जाते हैं कतका संगवारी आज अपन के पुरखोती जमीन बाड़ी की आज गए आज पैसा ले मन रखे हैं और उमन निवेश करे हैं लेकिन वो पैसा हर आज ऐसे ही खत्म हो जाते। तो भैया हो आप मन पैसा ला हमला यहाँ वहाँ नहीं करना है, अगर जमीन बाड़ी के मार्फत ले पाए हैं तो हम या तो हम जमीन बाड़ी लेके रखें या फिर ये ला हम निवेश करबू तो हमला वृक्षारोपण में हम निवेश करी ऐसने ऐसने ठौर मर मर लगा दी। आज कई भूया ही जेनर ऐसे ही पड़े बंजर पड़े ही जे माँ कछु चीज नहीं हुआ थे, संगवारी यहू जगह माँ अगर हम चाहबो तो आज वृक्षारोपण करके एकर ले हम वो बंजर भूया ला भी हम उपजाऊ बना सकत हन और ओकर ले एक बहुत ही लाभदायक खेती हम कर सकत हन। भैया वो देखा पौधा लगात हन तो एकर ले फल मूल पाबू, इमारती लकड़ी मिली, हमला पर्यावरण के शुद्धिकरण होही, पर्यावरण साफ होही, शुद्ध हवा मिली, तो ये सब आज कतका नी कतका लाभ है जेला हम कल्पना नहीं कर सकन। खबर हमार जीवन अगर सार्थक तबे हो सकी जब हमार करा रुक राही मन ज्यादा होही, अगर आज रुक राही मन ला काटबू तो अवैया बखत में हमला श्वास लेबर संगवारी में हमला शुद्ध हवा नहीं मिल सके। तो ये सब ला ध्यान रखत हमला आज वृक्षारोपण ला ज्यादा ले ज्यादा करना ही, और अगर निवेश भी अगर हमला करना ही तो वृक्षारोपण में ही हमला निवेश करना ही संगवारी हूँ, और एकर ले हमला भविष्य भर सबसे सुरक्षित और सबसे बढ़िया निवेश है जिनला एक बार अगर बचा लेथन संगवारी हो तो अवैया बखत में हमला कोई रोक नहीं सके कर ले अच्छा आमदनी लेबर। तो भैया हो गोर देखा बैठ की माँ करत रहन लेकिन माझा माझा माँ सुग्घर सुग्घर लोकगीत अगर हम नहीं सुनबो तहुले बैठ के मजा नहीं आए, तो चला एक ठन फिर सुग्घर अकन ये लोकगीत सुन ली।
1: दही बात

हाँ त संगवारी हो देखा घमनी के तार मा और देखा तो तर तर हुआ था संगवारी हो अब पानी थोकन नहीं आए है अब कतका संगवारी अंगा थे लेकिन ये वक्त में आप मन जाना कि दही के बासी दही बासी संग भाजी के जिन मीट है एला कहीं नहीं जा सके संगवारी हो अतका सुग्घर गीत और ये गीत ला गाय रही ने भगत साहू जी के स्वर में रहीस ऐसने सुग्घर सुग्घर लोकगीत सुनथन त हमर मन पर चराहा होते और बैठकी में हमर जेन मन ही इहर हमें सब बने रही थी संगवारी वेकरी संग हम गोट करवो आप ही सो या घर की जिम्मेदारी योग से पूरी होगी हर तैयारी संगवारी वो आज योग एक हमर मुख्य जेन हमर कहना चाहिए संगवारी वो हमर हर प्रकार की जतका भी हम बूता काम करत हन वो सबो बूता काम मा एक बखत हमला निकालना ही योग बर चाहे साझा बेरा हो चाहे बिहाना हो संगवारी वो हमला हमेशा योग करबो तभी जा करके हमर जन देह हाथ पांव रही यह ठिन्ना रही चोखा रही और अगर हमर स्वास्थ्य बढ़िया रही तब भैया वो हर प्रकार के बूता काम चाहे ऑफिस के हो चाहे घर के हो सब बूता काम हमारा ठिन्ना हो ही तब भैया वो कैसे कर सकबो जब हम योग करबो हमर देह हाथ पाँव ठिन्ना रही एकर बाद हमर जेन भी बूता करत हन ओमा न तो हमला थकावट आए और न ही हमला कोनो किस्म के कोई रोग व्याधि सताए तब भैया वो आपन प्रयास करे कि हमेशा योग ला एक मुख्य धारा ले हमला जोड़ना ही संगवारी में हमला एक मुख्य धारा कहे के मतलब ये है कि हमला प्रतिदिन अतका वक्त में हमला योग करना ही हमर जेन देह पर हमला एक समय ओमा लगाना आवश्यक है अब इला देख करके भैया हो आज योग घर घर में आज करे के प्रेरणा आज दिए जाते अब योग ही ऐसने एक साधन है संगवारी हो जेला करके हम अपन स्वास्थ्य ला तंदुरुस्त और बढ़िया हम रख सकत हन चाहे कतका भी हम सुंदर खाना खा ली चाहे कतका भी बढ़िया हम कपड़ा पहन ली चाहे कतका भी बढ़िया हम घर में एसी वाला में भी अगर हम रहत हन लेकिन अगर स्वास्थ्य हमार बढ़िया नहीं है तो भैया वो सब चौपटे तो एक बार हमार सबसे बड़े धन कहेगी से कि स्वास्थ्य धन ले बढ़ करके दुनिया में कोई धन नहीं है तो भैया वो ये धन हमला तभी मिले सकी जब हम ये देह के पर कुछ एक ऐसने प्रयास करबू और एक बखत देबू समय देबू और योग ला हमला करबू तब जाकर के योग करे के बाद में जतका रोग रही यानी योग ले ही रोग ला हम भगा सकत हन कोई रोग आज हमर देह में आक्रमण नहीं कर सके तो संगवारी हो आप मन हमेशा प्रयास करें जिन भी बखत आप मन के खाली है और वो बखत में अगर मान लो आप मन के खाना पीना हल्का है और आप मन ला बखत मिला थे तब भैया वो योग हमला करना है और हमेशा हम

प्रयास करें, अपन समय देख के आहार विहार और खान पान ला देख कर के योग करना है। अगर कतका संगवारी योग करत हैं तो मन ला बखत के पता नहीं है, वो मन ला खा पी करके योग करत हैं भैया, अगर पेट पेट ले हम खा के योग करबो तो एकर ले हमन ला उल्टा ओकर परिणाम मिलते, ओकर ले हमन ला स्वास्थ्य में एकर दुष्प्रभाव होते भैया। हो अगर हम प्रयास करी योग करत हन खाली पेट में करी, बढ़िया ले हम बाहर ले आ जात हन नहा धो के पहली हम योग कर सकत हन, शाम के हम जैसे ही हम अपन ऑफिस ले आत हन तब भी हम बखत निकाल के आधा घंटा एक घंटा हम योग करी, ओकर बाद में फिर हमला पूजा पाठ में बैठना है और ओकर बाद में फिर खाना पीना करना है भैया। बिहाना बतर में अगर हम रोजे उठत हन 4 बजे तार, अब पहली हमार दादा बाबा मन रही ने ओमन तो रोजे दिन ओमन 3:30-4 बजे रात ले उठ करके बूता काम करें, लेकिन आज संगवारी वो देखा बखत ऐसने उलट पलट हो गए है कि कतका संगवारी 12 बजे सूता थे बूता काम के चक्कर में। अब एकर ले स्वास्थ्य आज माँ बहुत ही आज गलत प्रभाव पड़ा थे, अब एकर ले हमार जन देह माँ नाना किस्म के रोग व्याधि मन के आक्रमण हुआ थे। लेकिन अगर हमार देहला स्वास्थ्य रखना ही अगर तो एकर बर योग अगर हम अपनाथन तो कोई भी रोग आज हमार देह मा आक्रमण नहीं हो सके, हमार हाथ पांव सबो ठिन्ना रही और हमार जतका भी बूता काम घला सबो हर चोखा होही। तब भैया हो एला आप मन चेत राखा और हमेशा योगला एक अपन दिनचर्या मा मुख्य धारा ले आप मन जोड़ लेवा। तब भैया हो देखा ये तो रही से गोट के विषय, एक संग फिर आज एक ठो आओ गोट के विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 23वां किस्त के हस्तांतरण। आज हमार भारत देश के जिन हमार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संगवारी हो आज किसान सम्मान निधि योजना के 23वां किस्त ला आज जो है देखा 3:45 मा इमन आज सब हमार किसान संगवारी मन के खाता में ट्रांसफर करीन है। आईमा 18,880 करोड़ रुपया आज राशि जो है 9,44,00,000 किसान मन के खाता में सीधा ट्रांसफर आज हुए ही। तब भैया हो हमार जेन भी आज किसान सम्मान निधि योजना ले हमला लाभ मिला थे, तब भैया हो इहर हमार सम्मान है तो एला हम सही रूप में हम एकर उपयोग करी हमार खेती किसानी में लेकर के हमार स्वास्थ्य ला लेकर के जतका भी जिनिस में एक उचित रूप में हमार लेकर उपयोग करना ही एकर लाभ लेना ही और ये सम्मान आज प्राप्त जेन हुआ थे भैया वो आज किसान होए के नाते हमला मिला थे तो एकर हमला दुरुपयोग नहीं करना है, एकर सदुपयोग करके हमला आज पूरा खेती किसानी ला मन लगा करके और ध्यान दे करके और अच्छा ले अच्छा उत्पादन करना है ये ला हम संकल्प करी और एकर ले हम खेती किसानी मा अग्रसित हो जाए। तब भैया वो देखा ये तो हो गए गोट, एक संग एक और एक ठन विषय बता दी आप मल्ला कि आज हमार गोट के विषय है लेजर लेवलर तकनीक अपनाओ खेत बचाओ अभियान। संगवारी आज खेती किसानी करत हन तो खेत डोली मन आज उबड़ खाबड़ हुआ थे और उबड़ खाबड़ होए के बाद मा कत एमा हमला नुकसान का होती, पानी के जिन सही मात्रा है इहर फसल ला नहीं मिल सके और जतका भी पोषक तत्व मन है पोषक तत्व मन घलो फसल ला सही मात्रा मा नहीं मिल सके। तो ये ला देखत हमला जमीन ला भुइयां ला यानी जिन हमार खेत डोली है ये ला समतलीकरण करना है और एला ही हमला एला लेजर लेवलर तकनीक एला बताएगी से यानी भूमि के समतलीकरण करना, हमेशा हमला लेवल में करना ओला समतल करना और समतल करके ही कोई भी बीज हम डाला थन वो बीज के बुआई करना। तब भैया वो प्रयास करबो हमार खेत डोली जतका भी है एला हम आज नाना किस्म के आज जिन विधि विधान है मशीन मन आगे है ये मशीन पे मन के उपयोग करके आज हमला हाथ मा एला सम करे के जरूरत नहीं पड़े, कतका सुंदर हम मशीन मन के माध्यम ले आज एला समतलीकरण कर सकत हन और समतलीकरण करके आज ज्यादा ले ज्यादा हम खेती किसानी मा उपज पा सकत हन और उपज अगर ज्यादा हो ही
तो हमन

अब फायदा घलो ज्यादा होही संगवारी हो, खेती किसानी जब हमार मुख्य हमार धंधा ये मुख्य जेन आज हमार खेती हर ही, तो ये ला हम अच्छा ले अच्छा करबो बढ़िया ले बढ़िया करबो तो एकर ले लाभ हमारा निश्चित ज्यादा मिलही और ज्यादा मिलही तो हमार विकास के रद्दा जेन ही ये हर अग्रसित होही। तो ये ला देखत आज हमारा लेजर लेवलर तकनीक अपना करके भुइयां ला हमला समतलीकरण करना ही और खेत के बुआई करना ही। तो संगवारी हूँ एक ठन औचाला गीत सुन लेबो ओकर बाद फिर गोट करबो।

हाँ तो संगवारी देखा कतका सुघर गीत अभी रही से। अब ये गीत माँ स्वर दे रही है अमचिरी बाई और रातू कुमार के रही से। संगवारी देखा ऐसने सुघर सुघर गीत सुनत आज देखा हमार बखत हर पता नहीं चले। और एक संगवारी थोकन हमार गोट के और विषय है परंपरागत कृषि विकास योजना और संगे संग हमार विश्व आज प्रवासी और शरणार्थी दिवस जिनला आज मनात हन। संगवारी जतका भी बाहर ले आज अवैया जे मन हमर आज भारत देश मा शरणार्थी होकर के आज शरण लेकर के आज हमर भारत देश मा निवास करत है तो भैया यमन के जेन मानव अधिकार है यमन के ये सब ला जागरूकता लाए बर आज ये दिवस ला मनाए जाते। संगवारी ये दिवस मनाए के मुख्य उद्देश्य यही है कि एमन ला समानता के अधिकार एमन ला दिलाना एमन के हक दिलाना और एमन ला एक मानव श्रृंखला ले जोड़ना यानी एमन हक जब एमन ये मुख्य धारा ले मन ला जोड़ना ही। संगवारी हो ये जिन आज विश्व शरणार्थी दिवस जिन मनाया जाता है एकर घोषणा ला 4 दिसंबर 2000 के संयुक्त राष्ट्र के महासभा माँ एक निर्णय ले गए रही से और निर्णय लेहे के बाद माँ इला 20 जून के दिन ला ही आज हमें दिवस के रूप में मनात हन। और इला मनाए के जिन अभी आप मतलब बताएं संगवारी हो जतका भी हमार आज प्रवासी हैं जिन मन के शरणार्थी रूप में आज जिन मन निवास करते हैं भारत में रहते हैं और रहते हुए एमन ला ओमन के मूल अधिकार ला एमन ला जानकारी देना और एमन ला मुख्य धारा ले जोड़ना ताकि यहू मन आज अपन के जीवन ला सुखमय एमन बिता सकें और एमन ला हर प्रकार की जिन योजना ही ओकर ले घले एमन ला लाभ मिल सके तो एकर बर ये एक मुख्य धारा ले जोड़ना ही एमन ला मूल उद्देश्य है। तसंगबारी हो आज हर प्रकार के दिवस मनाए के कुछ न कुछ रहस्य रथे तो ये ला हमला जानना ही समझना ही और सबो जीव के ऊपर आज हमला दया भाव राख करके हमला सम भाव मा काम करना ही कोई भी किसी के हमला आपस मा द्वेष नहीं करना ही कोई ला जलन नहीं करना ही न काकरो भी ऊपर मा संगवारी हमला ऐसने कोई चीज हमला नहीं सोचना चाहिए गलत विचार नहीं लाना चाहिए काबर दूसर बढ़ी संगवारी हम आगे बढ़बो दूसर घला आगे बढ़े यही हर हमार उद्देश्य रही। और एक संग आज देखा हमार गोट के संगे संग बैठकी के आज जाए के बेरा हुआ थे। संगवारी हो अवैया बैठकी में फिर आप मन ले भेंटा पड़बू ता देवा विदा अपन संगवारी धवल किशोर गुप्ता ला राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक बंधुओं का कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुहू ग्रेसिया और साथियों की आवाज़ में सरदुल राठौर की लिखी हुई ये गीत, दिलीप सेन के संगीत निर्देशन में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: इसी के साथ कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए राजा भैया इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की युगल आवाजों में। बोल हैं समीर के और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है जीना सिर्फ मेरे लिए। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजों में, नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में, समीर की लिखी हुई गीत।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च 1 विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
6: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

Sharma. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की।

0: 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद हुर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का

0: नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सभी

0: कंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
1: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
0: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है लता।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था त्रिशूल। कार्यक्रम का अगला गीत नौशाद साहब का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, और ये फिल्म है साथी।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था साथी। इसी आवाज को सुनिए, फिल्म का नाम है लव इन टोक्यो। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये था हसरत जयपुरी का लिखा गीत, स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था यकीन। लता मंगेशकर की आवाज है फिल्म उलझन के लिए।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था उलझन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है यादों की बारात। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: This is All In Radio's special series, 12 Years of Trust Development and Public Welfare. Listen today to All India Radio correspondent Kamal Kumar Prajapati's special conversation with Sanjay Jajaju, Secretary, Ministry of Development of Northeastern Region, on the rapid development and new possibilities of Northeast India.
1: Hello, listeners. The last 12 years have seen a very important phase of development in Northeast India. We have seen new milestones. In this regard, we bring you a special conversation on this program today. Joining us on the program is Mr. Sanjay Jajut, Secretary, Ministry of Development of Northeastern Region. Welcome, sir.
2: Thank you.
3: First, we'd like to know from you the changing picture of Northeast India that we have seen over the past 12 years. How do you view this changing picture, and how has it been made possible? What steps have made this possible?
2: So the main reasons for the development in Uttar Northeast India are sustained financial commitment, target program delivery, and the strong institutional coordination and with all this work, no single scheme tells the whole story. It's the cooperation of multiple initiatives that we select this visible change as ours. The 10% rules budgetary support mechanism implemented by 55 ministries and departments of the Government of India has also seen significant progress OOD. This year, these ministries spent approximately 1 lakh crore in the Northeast. There are also several flagship programs, particularly national highways, where approximately 4,800 kilometers of work was completed under.
4: जो उनकी और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है. जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम. कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था. माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है. उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है. और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने. लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए. एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है. बहुत काम उन्होंने किए. देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है.
5: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक. आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी, अब गिरेगी, अब गिरेगी, यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कम्प्लीट कर लिया.
4: देखिए, हमारे कहते ना अंगूर खट्टे हैं. इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है. और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते. अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए. उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसके आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया. ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया. इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है.
5: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है.
4: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा समझते थे. आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है. आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है.
5: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुंचाया है?
4: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंस मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
5: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
4: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया। हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और अभी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हो, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
5: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
4: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं और वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना

0: राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1 लाख करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहां देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी एक मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए। सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती है, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो है मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात

0: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीते थे, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है। जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवा डांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे कहा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हैं, यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी IAS अधिकारी और सभी MP सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा, यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे, बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन देनी पड़ती थी, आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं, या पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट

0: कर दिया। एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है, वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश स्थिति है, उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे हैं। हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 30वें पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, ये सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है, ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है, और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबीक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं, और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था, और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और CEO विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी, और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल

0: इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते, आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वो ऐसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुआ।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा।

0: ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: अभी आप सुने थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर संस्कृति थीम पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं 100 डेज। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, दिलीप ताहिर के बोल हैं, संगीत है राम लक्ष्मण का।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम देवी संगीत में लीजिए सुनिए उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में चिरा पुरी का कलाम, उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन के संगीत निर्देशन में।
8: ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया।

0: अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में परवीन साकिर का कलाम, रफ़ीक हुसैन और गुलाम अली के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम बीवी संगीत में अंत में आइए सुनते हैं आप आए बाहर आई फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत।
1: Thank you.

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम विवि संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राग बिहाग धमार ताल में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। पखावज पर संगत कलाकार हैं पंडित रमाकांत महापशेखर।

0: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के राग विहाग में बांसुरी वादन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है।

0: सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।